जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहाने की। और दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत न तो सोना है, न चांदी और ना ही शोहरत। असली दौलत वो है जब किसी के चेहरे पर कोई मुस्कान ला दे, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला

करने की काबिलियत कोई रखता हो, अगर हमारी वजह से किसी का दिन बेहतर हो जाए, किसी का दिल हल्का हो जाए या किसी को जीने की नई उम्मीद मिल जाए, तो उससे बड़ी कामयाबी और भला क्या हो सकती है। इसी खूबसूरत इंसानी जज्बे को अमर बना देता है फिल्म अनाड़ी का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक फलसफा है। यही हमें सिखाता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ ले, वही इंसानियत का असली मतलब समझता है। इसी गीत को अपनी दर्द भरी, सादगी से भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज में अमर बनाया है मशहूर और मारूफ गायक हम सबके चहेते मुकेश साहब ने। उनके सुर सीधे दिल तक पहुंचते हैं और गीत के हर एहसास को जीवंत कर देते हैं। गीत के कालजयी बोल लिखे हैं महान गीतकार शैलेंद्र ने। उसके शब्द इतने सरल हैं लेकिन उनके मायने इतने गहरे हैं कि हर पीढ़ी उन्हें अपने जीवन से जोड़कर महसूस करती है। यही वजह है कि ये गीत आज भी उतना ही खूबसूरत, उतना ही प्यारा है जितना उस दौर में था।

हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति में हर दिन कुछ न कुछ हमें प्रकृति सिखाती है। बहती हुई नदी कभी रास्ते की चट्टानों से शिकायत नहीं करती, वो रुकती नहीं, थकती नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती हुई मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है। चलते रहिए, क्योंकि ठहराव नहीं, निरंतर प्रयास ही सफलता की पहचान है। इसी गहरे जीवन दर्शन को बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है फिल्म सफर का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये गीत हमें बताता है कि समय की तरह जीवन भी लगातार आगे बढ़ता है। जो बीत गया उसे अफसोस करके नहीं, बल्कि तजर्बा बनाकर अपने साथ रखिए। हर नया दिन, हर नई चुनौती और हर नया अवसर हमें कुछ बेहतर बनाने का मौका देता है। ये गीत अपनी गंभीर और मधुर प्रभावशाली आवाज से अमर बनाया है। इस गीत को मन्नाडे साहब ने, उनकी गायकी में ज्ञान, सादगी और आत्मविश्वास का ऐसा संगम है जो गीत के संदेश को, गीत के पैगाम को और भी असरदार बना देता है। तो आइए हम भी इस नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नगमा।

इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त 2026 सुबह के 5:53:35 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़े कि आज इस सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके पश्चात 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान और इसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 23 जिसे लेकर आपके दरमियान रहेंगी सुनीता चौहान। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में

ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, सीधा प्रसारण आप सुनेंगे 9 बजे तक। नौ बजे का समय होगा हिंदी में समाचारों का।

0: 9:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। तो ये थे अभी से लेकर 9 बजे तक के प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इन कार्यक्रमों को विस्तार से सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार

संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:12 हो चले हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण लेकर साथ हूँ आपके मैं सुनीता, और आज हम अपना 80वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। जी हाँ, आज हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी के इस भाव से भरा है आज हमारा दिल। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, सुप्रभात।

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: रूमी ने कहा, मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब उसका अधूरा अनुवाद है।

0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:36 और 58 सेकंड आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुनीता के साथ।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान और अभी आपने सुना अयोध्या कांड से एक अंश। और अब समय हो चला है समाचार का। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शन वाहिनीनां कृते 12 निमेष परिमितां विज्ञापनावधि सीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चलें।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव, श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस, नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और

0: भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहाँ से आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरव वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है, जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहां से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्या हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
0: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन है, एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत

0: चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी।

0: कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
1: अपनी

0: संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर

0: आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे। इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: सरना पुलिस बंद करो, बचो।
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियाँ यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफ़ेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफ़ेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियाँ है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
2: जी, और जैनेन्द्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियाँ इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
1: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने

देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की, अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे।

140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस मैं डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो

सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है, वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं।

0: विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में
1: इन

पावर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए, हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्य वेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा,
सारी दुनिया भर की अफवाहें।

लाकर के भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा।
और पंजाब

पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए।
डिजाइन से लेकर मैन्यू

इंजीनियरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और

हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत

की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत

अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं
जो खेले।

0: वो खिले।
1: जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में

3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है।

आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों साणन में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आगे करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग

लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती है। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर

तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास

0: प्रदर्शित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हो, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान

0: बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और

0: किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
2: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
6: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
6: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था।

0: सोचा नहीं था संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्य ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होइस्ट नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at

0: accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: Aaj jab hum desh ke log वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदर पूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
0: He said internet users increased by nearly

0: fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need, and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
1: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai, aur isliye hame cheap ho AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी. एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
0: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
1: Desh azad hone ke baad vishwa mein to semiconductor ki charcha ho chuki thi. Hamare yahan bhi baatein hoti thi, lekin semiconductor ka koi bada plan hum aage nahi badha paaye. Aur आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है, और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो. भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका.
0: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
1: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए. दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है, और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है.
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे, और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
0: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
1: हमने पिछले दिनों AI impact summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य. मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिले जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौमे आजादी तकरीबात की कयादत की। वजीर आजम की लाल किला आमद पर पहली मर्तबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वजीर आजम ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियां निछावर की गईं। इस साल की यौमे आजादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली मर्तबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासिर हुए। वजीर आजम ने सभी मुतासर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत जो कभी 5 कमजोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ।

0: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: वजीर आजम ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मंसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदामात से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वजीर आजम ने कहा कि नागरिक देवोभवा के नजरिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछली दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर इतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है जहां पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मवाक़े पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने मुल्क की बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मवाक़े का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वजीर आजम ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की ताकत और सलाहियत के साथ हुकूमत मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगी और मुल्क को नए हदफ हासिल करने के काबिल बनाएगी। वजीर आजम ने पहली धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज मईशत और समंदरी मईशत है और सप्त धारा की 7वीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में

0: कहा कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई जहानत के आलमी शोबे में क़यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: वजीर आजम ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांव, शहरों और स्कूलों में खसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरक खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वीं यौम आजादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज़मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
3: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आज़ादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की 6 सुर्खी है। सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज 7 निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: Aaj jab hum desh ke log Vande Mataram ke 150 varsh mana rahe hain, to isse bada uttam avsar kya ho sakta hai? Pichle dinon देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम

0: पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
0: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: Prime Minister Modi also announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore of rupees of middle class family in coaching classes. In men's cricket, India won the toss and elected to bat against host Sri Lanka in the first test of 2-match series at Gale International Cricket Stadium. The series is part of the ICC World Test Championship 2025-27 cycle. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार।
1: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। श्री मोदी ने कहा, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 5 नए रिएक्टर स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। भारत ने फिर कहा, जम्मू कश्मीर

0: कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका के गाले स्टेडियम में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हजारों की संख्या में अनुपालन खत्म किए, सैकड़ों पुराने कानून खत्म किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचागत विकास को एक नई ताकत दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में बहनों और बेटियों का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बेटियां हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ावा मिला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में सूर्यपथ तिरंगा पहल के तहत राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने

0: फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। कल राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए।
1: Let me say that the whole of
2: पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
1: फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के अफगानिस्तान के साथ दीर्घकालिक रिश्ते हैं और वो इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड में एक रैली में कहा कि जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को आधिकारिक रूप से अमरीकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इससे पहले भी दावा किया था कि अमरीका का होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है और ईरान के साथ इस रणनीतिक मार्ग को फिर से खोलने के बारे में रुकी हुई बातचीत के बावजूद वो इसकी देखभाल करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका का पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि ट्रंप की टिप्पणी के फौरन बाद ईरान ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि रणनीतिक जल मार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे फिर से खोला नहीं जाएगा। इंडोनेशिया में आज 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे घरों और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। फ्लोरेंस द्वीप के अधिकांश हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी नुसा तेंगारा, दक्षिणी सुलावेसी और दक्षिण पूर्वी सुलावेसी प्रांतों के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की और निवासियों से समुद्र और नदी तटों से दूर रहने का आग्रह किया। भारत और श्रीलंका के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ये श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल उपकप्तान हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत 5वें और श्रीलंका 6ठे स्थान पर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। श्री मोदी ने कहा 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 5 नए रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से बड़े पैमाने पर नुकसान। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका के गाले स्टेडियम में जारी। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सरबजीत कौर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. New Delhi reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh are inalienable and integral part of India. 7.7 magnitude earthquake hits ocean near Indonesia, damaging homes and public buildings. And in cricket, India win toss and elect to bat first.

0: against Sri Lanka in first test at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
1: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति

0: न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी काफी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन इंडिपेंडेंट गुड मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं दिल का मेलबॉक्स, जहां सबसे पहले स्वीकार कीजिए स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ कीजिए मुझसे वादा कि आज दिल का मेलबॉक्स में लगेगी देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की झड़ी, नहीं करेंगे देर और जल्दी से ईमेल भेजेंगे fmgoldairdelhi@gmail.com पर और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868 6875 3 पर। और इसी के साथ जैसा कि ईमेल्स आने शुरू भी हो गए हैं तो चलिए कर लेते हैं प्रोग्राम में पहला ईमेल शामिल, जो कि आया है सीधा चंडीगढ़ से। लिखा है, आजादी का पर्व आ गया और तिरंगा लहराएंगे, भंवरे भी आज वतन के लिए मस्ती से गुनगुनाएंगे, जज्बाए जोश भी है साथ में रहेगा मधुर संगीत, गोल्ड के पिटारे से निकलेंगे आज प्यारे प्यारे गीत। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने ये मैसेज भेजा है चंडीगढ़ से और पूजा खटक, बिमला देवी, शंभु दयाल खटक जाखोद राजस्थान से शामिल हैं इस मैसेज में और जिस गीत को सुनने की इन्होंने फरमाइश की है उसी गीत को सुनना चाहते हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल और सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से।
1: मेरे भारत ने

हवाओं को बता देना कि चिराग जल रहे हैं, शहीदों के खून से ये चमन खिल रहे हैं। जरा अदब से संभाल कर रखना इस आजादी को, क्योंकि बड़ी मन्नत और शहादत के बाद ये दिन मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है दोस्तों कि आज के दिन को बस एक छुट्टी का दिन हरगिज मत समझिएगा, बल्कि इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर जरूर पढ़िएगा और महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा उस संघर्ष को, उस बलिदान को जो इस आजादी का मूल था। और अब रुख एक बार फिर आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस का। ये पावन पर्व स्वतंत्रता का लाया खुशियों की सौगात है, शीश झुकाकर नमन करें हम, आज शहीदों की बात है। वीर सपूतों के बलिदान पर इस माटी की हर सांस है, भारत माँ के वीर लाडलों हमें तुम्हारी शहादत पर नाज है। वीरता शांति और खुशहाली का इसमें छुपा राज है, शीश उठाकर शान से कहें हमें अपने तिरंगे पर नाज है। ये खूबसूरत मैसेज हमें भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डेनी।

पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और दिव्या ने। और दोस्तों, अब जो अगला सॉन्ग आप सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश हमें कई श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, जिनमें से कुछ नाम अब मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। रोहित जोशी, कृतिका जोशी, राघव जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से, रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश परभड़ी महाराष्ट्र से, बोधराज खोरवाल, कमला भानु प्रकाश, जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु उत्तम नगर दिल्ली से, और साथ ही संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता और संतोष शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से इस गीत की फरमाइश आई है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गाना।

0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार।

0: मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वागत है आपका एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आप भेज रहे हैं मैसेजेस और ईमेल्स लगातार, जिनमें है देशभक्ति अपार। जी हां, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने भी भेज दिया है मैसेज। और इससे पहले जो नाम मैंने शामिल किए थे, उन्होंने मैसेज किया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। लिखते हैं कि आज आज़ादी के खुले आसमान में हम उन जवानों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरा सल्यूट उन जवानों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, और साथ ही अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। और दोस्तों, इसी के साथ अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं सतवीर सिंह बिजारनिया का। देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या इस मैसेज में शामिल है। गांव खारिया ढाड़ी, जिला सिरसा, हरियाणा से ये मैसेज हमारे पास आया है। और इसी के साथ अगला मैसेज आया है राधे श्याम शर्मा जी का। इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा भी इनके साथ शामिल हैं। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा से ये मैसेज आया है। और जो ये गीत सुनना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और इसकी फरमाइश हमें और भी कई श्रोताओं ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला गाना और फिर जल्दी से वापस बात करते हैं।

सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार सरवद, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी ने भी भेज दिया है मैसेज और किसी भी देशभक्ति गीत में शामिल होना ये चाहते हैं। तो देखिए, हमने शामिल कर लिया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से आया है मैसेज। और अभी जो आपने गीत सुना, ये वही गीत सुनना चाहते थे। और इसी के साथ अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ कृष्णा पार्क दिल्ली से, जो कि आया है सुखविंदर सिंह जोड़ा ने ये मैसेज भेजा है। और इन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भेजी है जिसे हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए और स्वतंत्रता दिवस की इतनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं भेजने के लिए। अगला मैसेज उमंग मलिक का है। आकांक्षा मलिक, माही मलिक इनके साथ शामिल हैं, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा भी शामिल हैं। सतना मध्य प्रदेश से आया है ये मैसेज और अपना फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है। मुंबई से भी आ गया है मैसेज अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा जी का सप्रेम नमस्ते भेज रहे हैं। और एक और मैसेज हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं जो कि आया है हमारे पास सलीम अख्तर साहब जी की ओर से। रेशमा बेगम भी इनके साथ शामिल हैं, बेहतरीन सॉन्ग्स चल रहे हैं, इन्हें पसंद आ रहा है कार्यक्रम और ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। नाम शामिल कर लीजिएगा, ये इनकी ख्वाहिश है। अलीगढ़ से आया है ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अगला मैसेज मुझे नज़र आ रहा है लाल गिरी जी का और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर

सुंदर राजस्थान से ये मैसेज आया है। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ इस मैसेज में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि घड़ी कर रही है इशारा कि आज दिल के मेलबॉक्स का सफर यहीं पर हमें थामना होगा। मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 11:10 पर। उससे पहले जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़े समाचार, और फिलहाल सुनिए एक और जबरदस्त ट्रैक और जानिए वो सब विच हैपन्स ओनली इन इंडिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो।

0: देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी अपना झंडा बुलंद किया है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर चैनल बहुत हद तक विज्ञापनों पर निर्भर हैं। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। कल राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उड़ीसा में लगातार हो रही वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बैतरणी, मधुबलंगा और जालका नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच गाल में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ये श्रृंखला 2025 से 27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty. He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal.

मैं दिल्ली हूं और आज आपको आजादी की कहानी सुनाती हूं। मैंने देखे हैं वो दिन भी जब मुगलों के परचम लहराते थे। मैंने झेली है वो बेरहम रात भी जब फिरंगी कोड़े बरसाते थे। सन 57 की वो गूंज याद है जब मेरठ से बागी आए थे। बहादुर शाह के नेतृत्व में सबने आजादी के ख्वाब सजाए थे। हां, इसी दिल्ली की सड़कों पर शहीद

शहीदों का लहू बहा था, पर उस वक्त भी हर एक जुबाने इंकलाब जिंदाबाद कहा था। वक्त बदला, सदियां बदली और आया वो सुनहरा साल। गुलामी की टूटी जंजीरें और दिल्ली का मुखड़ा हुआ लाल। शाहजहानाबाद की प्राचीर से जब आजाद हवा का झोंका आया, तो कश्मीरी गेट से लेकर मेहरौली तक हर शख्स ने जश्न मनाया। आज सालों बाद भी वही 15 अगस्त की सुबह आई है, दिल्ली की हर गली तिरंगे के रंग में नहाई है। तो दिल्ली की इन्हीं ऐतिहासिक गलियों में घूमेंगे और लुत्फ उठाएंगे कुछ सदाबहार नगमों का भी, क्योंकि आपके फेवरेट प्रोग्राम तस्वीर का हो चुका है आगाज और मैं हूं आपके साथ नाज।

0: कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई
0: अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे

हिंदुस्तान की दिल दिल्ली की हो रही है सैर और प्रोग्राम का नाम है तस्वीर। दिल्ली यानी वो शहर जिसने आजादी की पहली सुबह का इस्तकबाल किया और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर विकास की ओर बढ़ते भारत की हर तस्वीर का गवाह ये शहर रहा है। भारत देश की राजधानी दिल्ली के भ्रमण यानी यहाँ घूमने की ख्वाहिश तो यकीनन हर किसी की होती है, और यकीन मानिए यहाँ बहुत कुछ ऐसा है घूमने चखने और एक्सपीरियंस करने के लिए जिसे आप ताउम्र कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले सवाल ये कि दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? तो जनाब जवाब बहुत ही आसान है और सीधा भी है। बाय एयर आप लैंड करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश के हर कोने से के साथ साथ पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। बाय ट्रेन शहर के चार बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार भी देश के लगभग हर शहर से जुड़े हैं। बाय रोड कश्मीरी गेट और आनंद विहार दो ऐसे टर्मिनल्स हैं जहां के लिए आपको कहीं से भी बड़ी आसानी से बस या फिर टैक्सीज का साथ मिल जाएगा। शहर के अंदर घूमने के लिए यहां की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो में सफर जरूर कीजिएगा जनाब, जो आपको बिना ट्रैफिक जाम में फंसाए आपकी हर डेस्टिनेशन तक बड़े ही आराम और सहूलियतों के साथ आपको पहुंचाएगी। बातों का सिलसिला थमेगा नहीं, यूं ही रहेगा जारी, लेकिन अभी आ गई है एक और खूबसूरत गाना सुनने की बारी।

सुना था वैसा ही पाया, आपको देखा तो यकीन आया, अगर फिरदौस बर्रवे जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
5: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
6: NCRPEE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: दिलवालों की दिल्ली पहुंच गए हैं आप मेरे यानी नाज के साथ और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच का मौसम बेस्ट है वैसे दिल्ली घूमने के लिए, क्योंकि तापमान इन दिनों न बहुत ज़्यादा कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बसंत के दौरान यानी मार्च के आसपास भी आप दिल्ली का प्लान बना सकते हैं, जब दिल्ली के कई खूबसूरत पार्क्स जैसे लोधी गार्डन, मुगल गार्डन रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं और आप होली के त्योहार के साथ साथ दिल्ली फ्लावर शो का भी लुत्फ उठा सकते हैं। देश की राजधानी होने के साथ साथ ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर जनसंख्या के मामले में जापान के टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है।

3 करोड़ से भी ज्यादा। तो भीड़ भाड़ से घबराइएगा मत और दिलवालों की इस दिल्ली की यूं ही करते रहिए सैर मेरे यानी नाज के साथ। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना।

जी बिल्कुल, यूं ही साथ चलते चलते हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, जहां अब बात यहां मौजूद उन ऐतिहासिक इमारतों की करेंगे जिनके

जिक्र के बिना दिल्ली की तस्वीर अधूरी है। सबसे पहले बात लाल किले की, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने साल 1638 से 1648 के बीच करवाया था। लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने होने की वजह से ही ये लाल किला है, जिसका आर्किटेक्चर मुगल, फारसी और हिंदू शैली का खूबसूरत मेल है। किले के अंदर है दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और बाहर की ओर नहरे बहिश्त भी आपको दिखाई देती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इस किले को मिला हुआ है और हर स्वतंत्रता दिवस पर यानी आज के दिन देश के प्रधानमंत्री इसी किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं।

लाल किले के बाद आइए चलते हैं इंडिया गेट, जिसकी पहचान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में होती है। ब्रिटिश सरकार ने इस स्मारक का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए लगभग 84,000 सैनिकों की याद में करवाया था। साल 1931 में सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था और तब से लेकर आज तक इंडिया गेट न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे इंडिया की पहचान बना हुआ है। इसी तरह पुराना किला भी एक ऐसी जगह है यहाँ जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की जगह पर यह किला मौजूद है। हालांकि इसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल यानी 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। किले के अंदर किलाए कोहना मस्जिद और हुमायूं का पुस्तकालय शेर मंडल मौजूद है। और इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के एक ऊंचे चबूतरे पर मौजूद है मशहूर जामा मस्जिद भी, जिसे बनने में पूरे 6 साल लगे थे। बड़े से आंगन में एक साथ लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग एक ही समय में नमाज अदा कर सकते हैं यहाँ। और भी बहुत कुछ है दिल्ली में घूमने और एक्सपीरियंस करने के लिए, जिनके बारे में जरूर होगी बात, लेकिन इस अगले गाने को सुनने के बाद।

दिल्ली के मशहूर मीना बाजार का जिक्र आपने इस गाने में सुना, तो ये जान लीजिए कि जब बात दिल्ली के मीना बाजार की होती है तो असल में यहाँ दो बाजारों का जिक्र आता है। एक जुलाल किले के बिल्कुल अंदर मौजूद मुगल कालीन मूल बाजार है और दूसरा जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास नीचे की ओर लगता है। मुगल काल का ये असली और ऐतिहासिक बाजार 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया जब मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे बाजारे मुस्तकाफ यानी छत वाला बाजार या फिर छत्ता चौक के नाम से बसाया। उस जमाने में यह बाजार मुख्य रूप से शाही परिवार की रानियों और राजकुमारियों के लिए सजाया जाता था, जो कि आज हम सब के लिए खुला है। इसके अलावा दिल्ली की खारी बावली, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है, सदर बाजार, सरोजनी, लाजपत नगर और जनपथ जैसे अनगिनत ऐसे बाजार यहां पर हैं जो शॉपिंग हब के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही आजादपुर मंडी भी है यहां, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी के रूप में जानी जाती है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां आप कर रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ देश की राजधानी और देश के गौरव दिल्ली की सैर। हुमायूं का मकबरा, जिसे फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ ने डिजाइन किया था जब मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो भी दिल्ली में ही है। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से खूबसूरत संयोजन आप यहां पर देखते हैं, और माना जाता है कि इसी मकबरे से प्रेरणा लेकर बाद में आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ था। इसके बाद कुतुब मीनार एक और ऐसी जगह है जो दिल्ली की शान और पहचान के रूप में जानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1197 में इसे बनवाने की शुरुआत की थी, और बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया। खासियत यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से ये मीनार बनी है, और इस मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है। कुतुब परिसर के अंदर ही आप 4वीं शताब्दी का वो मशहूर लोहे का खंभा भी पाते हैं, जिस पर सदियों बाद भी जंग नहीं लगी है। साथ ही भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम भी आप यहीं पर देखते हैं।

0: बाद में देखेंगे ना।
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो जो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना
1: हाँ।
0: चल बेटा।

कैनॉट प्लेस, जिसे आम बोलचाल में सीपी भी कहा जाता है, दिल्ली का धड़कता दिल है, जो एक बिजनेस हब होने के साथ साथ दिल्ली का सबसे पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट भी है। ब्रिटिश शासनकाल में इस जगह को रॉबर्ट टो रसेल ने डिजाइन किया था और इसकी बनावट पूरी तरह से गोलाकार है। दो मेन रिंग्स, इनर रिंग और आउटर रिंग में ये जगह बटी हुई है और यहीं पर अंडरग्राउंड पालिका बाजार भी शॉपिंग के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जनाब। बीच में मौजूद है सेंट्रल पार्क, जहां भारत का तिरंगा शान से लहराता है। ।1986 में बने लोटस टेंपल भी आप जरूर होकर आइएगा, जिसका आकार हूबहू खिलते हुए कमल के फूल जैसा है, जिसमें सफेद संगमरमर से बनी 27 पंखुड़ियां हैं। इसके साथ ही अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी आपको जरूर जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और हमारी भारतीय वास्तुकला का ये एक अनोखा उदाहरण है। मेन अट्रैक्शंस हैं यहाँ की कल्चरल नाव की सवारी और एग्जिबिशन, साथ ही शाम के समय होने वाला म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ ही नेहरू प्लेनेटोरियम में होने वाला बेहद रोमांचक 2D और 3D शो भी जरूर देखिएगा। अंतरिक्ष में छुपे हर राज से ये शो पर्दा उठाता है और इसी परिसर में आप घूम सकते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय भी, जो आपकी मुलाकात देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से करवाता है।

दिल्ली को अगर देश की फूड कैपिटल भी कहा जाए तो ये भी शत प्रतिशत सही बात होगी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों के मुगलई स्वाद से लेकर साउथ दिल्ली के फैंसी कैफेज तक आपको आपके टेस्ट बर्ड्स और बजट के हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। मशहूर स्ट्रीट फूड्स में शामिल हैं दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे, चांदनी चौक की पराठे वाली गली के गर्मा गर्म पराठे और साथ में चटपटी चाट भी। और दिल्ली के लगभग हर नुक्कड़ पर मिलेंगे आपको यहाँ के स्पेशल फ्लेवर वाले तंदूरी मोमोज। मीठे में दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट जरूर ट्राई कीजिएगा, जो सिर्फ सर्दियों के मौसम में यहाँ दिल्ली की गलियों में आपको मिलेंगी। साथ ही गर्मा गर्म गाजर का हलवा और ठंडी ठंडी फ्रूट कुल्फी आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरे साथ दिल्ली का ये सफर आपने जरूर पसंद किया होगा। फिलहाल आज की मुलाकात बस इतनी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए आज का ये खूबसूरत दिन। जाने से पहले एक बार फिर स्वीकार कीजिए मेरी और एफएम गोल्ड की ओर से इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के

0: पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्ज्वल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examination.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
2: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम के आज खासम खास शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ आपके साथ दीपा।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
2: और श्रोताओं, मेरी ओर से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: दोस्तों, सबसे बड़ी आज़ादी वो नहीं जो हमें मिली है, बल्कि वो है जिसे हम हर दिन सही सोच, सही कर्म और सही निर्णयों के जीवित रखते हैं। आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा, बल्कि हर उस दिल में भी लहरा रहा है जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।
1: और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल आपके लिए कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत मतलब क्या है? अपनी पसंद से जीना, अपने फैसले खुद लेना या फिर कुछ और? जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख भेजिए, अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। तो आइए देशभक्ति, उमंग, दिल को छू लेने वाले गीत और मुस्कान से भरे इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना दुल्हन चली, फिल्म थी पूरब और पश्चिम, गायक थे महेंद्र कपूर।
1: और आज भारत अपनी आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे करके 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है दीपा जी, और हर तरफ उत्सव का माहौल है, हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में गर्व है और हर सांस में देशभक्ति की महक है। गलियों से लेकर शहरों तक तिरंगे की शान लहरा रही है, देशभक्ति के गीत हवा में गूंज रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की प्रस्तुतियां हो रही है, घरों में मिठाइयां बांटी जा रही है और हर ओर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जय हिंद।
0: बिल्कुल मंजुला, लेकिन मैं तो कहूंगी अपने श्रोताओं से कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने, अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आजादी दी।
1: और शायद दीपा जी, आजादी का सबसे खूबसूरत जश्न सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं बल्कि उस भारत को आगे बढ़ते हुए देखने में है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी बेटियां बड़े सपने देख रही है, युवा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, नए विचार और नई तकनीक देश की तस्वीर बदल रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लोग अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना रहे हैं और अपने देश की मिट्टी, हुनर और उत्पादों के प्रति सम्मान भी बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला, तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न नहीं उस भारत का भी जश्न मनाएं जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। आज जब हम अपने देश को बदलते हुए देखते हैं तो सचमुच बहुत खुशी होती है। भारत बदल रहा है और ये बदलाव केवल बड़े शहरों या बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच में दिखाई दे रहा है। आज के भारत में महत्वाकांक्षा भी है, अपनी जड़ों से जुड़ाव भी है और देश के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा।
1: क्या बात है दीपा जी, तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न मनाएं, उस भारत का भी जश्न मनाएं जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश को बेहतर बनाने का सपना किसी एक पीढ़ी का नहीं है, हम सबका है। तो ना मिट्टी से रिश्ता टूटे, ना सपनों की उड़ान रुके, भारत की नई सुबह में हर आंख का अरमान खिले, जो मिला है पूर्वजों से उसे और संवारना है, ये देश हमारा है इसे थोड़ा और निखारना है।
0: वाह,

0: ये देश है वीर जवानों का, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी नया दौर और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और बलवीर।
1: और अब बात कुछ जिम्मेदारी की। हम अपने देश को सिर्फ बेहतर देखना चाहते हैं या उसे बेहतर बनाने में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं, क्योंकि नागरिक होना सिर्फ अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं है, अपने आसपास की दुनिया के प्रति जवाबदेह होना भी है।
0: बिल्कुल सही बात है मंजुला, और हम संकल्प लें कि जहां संभव हो एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को सिर्फ सलाह नहीं अवसर देने की कोशिश करेंगे, किसी लड़की की शिक्षा, किसी महिला की आर्थिक स्वतंत्रता या किसी युवा के हुनर को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान देंगे।
1: बहुत सही कहा। और देश घूमने निकले तो सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं आएंगे, जिस जगह जाएंगे उसे साफ रखेंगे, स्थानीय संस्कृति और लोगों का सम्मान करेंगे, स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और कारोबार को बढ़ावा देंगे, अपने देश के अनदेखे खूबसूरत हिस्सों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना भी देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार में योगदान देना है।
0: आज हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी डिजिटल दुनिया में है। सोशल मीडिया हमारी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, तो इसका इस्तेमाल ज्ञान बांटने, अच्छे कामों को सामने लाने, भारतीय कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्यों ना करें। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को भी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सीखने, काम आसान करने और नए अवसर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर मत जिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम भारत को सिर्फ ऑनलाइन सराहेंगे नहीं, उसे जमीन पर भी बेहतर बनाने में योगदान देंगे, और अपनी आजादी का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए भी करेंगे, क्योंकि देश हमसे कोई असाधारण काम नहीं मांगता, बस जहां है वहां थोड़ा बेहतर नागरिक बनने की अपेक्षा करता है। मेरी आजादी मेरी जिम्मेदारी।

0: जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी सिकंदर आजम और गायक थे मोहम्मद रफ़ी।
1: और मेल्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हमारा आज का सवाल है, सबसे पहले मैं वो बता दूं कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है आपके लिए, वो आपको बताना है। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो सबसे पहला मेल मैं पढ़ रही हूँ, ऐना लिख रही हैं कि अपनी ज़िंदगी के फैसले, खुद लेने की आज़ादी और अपने सपनों को बिना डर के जीने का हौसला। मेरे लिए आज़ादी सिर्फ बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी के अपने तरीके से को चुनने का हक है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा संदेश था मंजुला। और हमारे साथ आदित्य शर्मा जुड़ चुके हैं। उनके हिसाब से मेरे लिए, वो लिखते हैं कि स्वतंत्रता का सबसे ब्यूटीफुल मतलब जो अर्थ है, उन्होंने लिखा है कि अपने निर्णय खुद लेना और अपनी पहचान बनाना।
1: बिल्कुल। तो अनन्या श्रेष्ठा लिखती हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ है अपनी पसंद से जीने का अधिकार, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान का भी ख्याल रखना। असली आज़ादी वही है जिससे हम अपने अपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। बहुत ही अच्छा लिखा है। और अगला कौन सा
0: हाँ,
1: है?
0: जो आदित्य
1: अगला है, हाँ, एक अनिल मेहता जी भी लिख रहे हैं कि बिना किसी डर के सोचना, सच बोलना और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सम्मान से जीने का अवसर देना। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने भी। और आगे साधना गोयल जी लिखती हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता का सबसे सुंदर अर्थ है गुलामी से मुक्त होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी से जीना ही स्वतंत्रता है।
0: और मेरे पास रमीशा जैन जी कहती हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर अपने मन के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं बिना भय, अपराध बोध अथवा किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए अपने निर्णय स्वयं ले सकूं और सपने अपने जो सत्य को कहने, अपनी सीमाएं निर्धारित करने और जहां सम्मान ना मिले वहां बिना संकोच पीछे हट जाने का साहस है। क्या बात है,
1: बहुत ही अच्छे मेल्स सारे जो आंसर्स हैं, हाँ, वो आए उसको पढ़कर यही लगा कि हमारा देश सही में बदल रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, इसका सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है।

0: अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम रूप कुमार राठौर को फिल्म बॉर्डर से।
1: और मंजुला, जो सावन आता है ना, तो सावन आते ही जैसे पूरा वातावरण ही बदल जाता है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम फुहारें, पेड़ों पर झूले और मन अपने आप उमंग से भर जाता है। क्या कहना है तुम्हारा?
0: बिल्कुल सही। और आज एक खास दिन है, हरियाली तीज, जब सावन सिर्फ मौसम नहीं एक एहसास बन जाता है। हरियाली तीज नाम में ही जैसे पूरी ऋतु का रंग समाया हुआ है। यह पर्व केवल श्रृंगार का नहीं, प्रकृति के साथ हमारे उस पुराने रिश्ते का उत्सव भी है, जिसमें बारिश का स्वागत है, हरियाली के लिए आभार है और जीवन में सुख समृद्धि की कामना है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, हरियाली तीज और मधुश्रवा तृतीया एक ही पर्व के दो नाम हैं। मधु का अर्थ है मधुरता या आनंद और श्रवा का आशय है प्रवाह, यानी श्रावण मास की वो तृतीया जब प्रकृति अपनी पूरी हरियाली, ताजगी और मधुरता के साथ जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है।
0: बिल्कुल सही। और परंपरा में हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।
1: बिल्कुल मंजुला। और हरियाली तीज की सबसे सुंदर बात यह है कि गांव हो या शहर, हर जगह उत्सव का माहौल बन जाता है। पेड़ों पर झूले सजते हैं, महिलाएं सावन के लोकगीत गाती हैं, हरे रंग के वस्त्र चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी रचाती हैं। ऐसे में सावन और हरियाली तीज की पूरी तस्वीर ही जैसे इन पंक्तियों में उतर आती है। हरियाली तीज का त्योहार है, गुजियों की बहार है, पेड़ों पर पड़े हैं झूले, दिलों में सबके प्यार है।
0: और तीज की एक और सुंदर तस्वीर है सखियों का साथ, एक साथ सजना, झूला झूलना, गीत गाना, हंसी मजाक करना, पुराने किस्से सुनना। तीज हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ की तारीखें नहीं होते, वे रिश्तों को फिर से जीने के बहाने भी होते हैं।
1: और इस अवसर पर दोस्तों, घेवर, मालपुआ, खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और परिवार तथा सहेलियों के साथ मिल बांटकर उसका आनंद लिया जाता है।
0: तो इस हरियाली तीज पर हरे रंग को सिर्फ अपने कपड़ों में नहीं, अपनी सोच में भी उतारिए। एक पौधा लगाइए, प्रकृति के लिए कुछ कीजिए और अपने रिश्तों में हो वो हरियाली बनाए रखिए, जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, सम्मान हो और साथ हो। क्योंकि आखिर तीज का असली उत्सव क्या है? प्रकृति हरी हो, रिश्ते हरे भरे हो, मन में उम्मीदें हरी रहे और जीवन में खुशियों के पींगे कभी ना रुके। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

0: प्यारा गीत था हरे कांच की चूड़िया, और फिल्म भी थी हरे कांच की चूड़िया, गाया था आशा भोसले ने।
1: और आज का दिन 15 अगस्त की सुबह हवा में लहराता तिरंगा, और जैसे ही राष्ट्रगान का धुन बजता है कुछ पल के लिए हम सब की पहचान एक हो जाती है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी आज़ादी की कहानी है, हमारे वीर जवानों का साहस है, करोड़ों भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है।
0: आज़ादी का अर्थ है अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार, अपने सपनों को जीने का साहस, और अपनी विविधताओं के साथ एक होकर आगे बढ़ने की शक्ति। और शायद इसीलिए तिरंगे का सम्मान करना सिर्फ एक नियम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।
1: इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान हम सबको ये संदेश देता है कि तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर ही नहीं, बल्कि हर घर, हर दिल और हर भारतीय की चेतना में पूरे सम्मान के साथ लहराना चाहिए। जब हर घर तिरंगे के रंगों से सजता है तब पूरा देश एक परिवार की तरह एक सूत्र में बन जाता है।
0: और दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों को देखिए, केसरिया साहस, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, सफेद शांति, सत्य और ईमानदारी का संदेश देता है, हरा रंग समृद्धि, प्रकृति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है, और बीच में बना अशोक चक्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र की प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना ही जीवन है।
1: तो इस 15 अगस्त एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने, और उत्सव समाप्त होने पर भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। और अंत में एक विशेष बात, और इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय आयोजन मनाया जा रहा है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, और पूरे एक साल तक इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा, साहस और एकता का स्वर बनी। आज भी वंदे मातरम सुनते ही मन में वही गर्व, वही श्रद्धा और वही राष्ट्र प्रेम जाग उठता है।

0: वंदे मातरम। ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी आनंद मठ और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दोस्तों, आज तिरंगे को सिर्फ देखिए मत, भारत को महसूस कीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा भारत जहां सुबह आसाम की चाय की खुशबू से शुरू हो सकती है और शाम कर्नाटक की कॉफी की महक में घुल सकती है, कहीं पहाड़ों पर बारिश बादलों को छूती है, कहीं रेगिस्तान में हवाएं रेत पर कहानियां लिखती हैं, कहीं समुद्र की लहरें हैं, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, और इन सब के बीच एक देश हमारा भारत। कश्मीर की कश्मीरी भाषा सुनिए, पंजाब की बोली में अपनापन महसूस कीजिए, बंगाल की मिठास सुनिए, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, आसाम की असमिया, भाषाएं बदलती है लेकिन भाव वही रहता है, अपनापन।
0: और भारत की संस्कृति तो जैसे एक चलता फिरता उत्सव है, कहीं गरबा की थाप है, कहीं बिहू का उल्लास, कहीं भांगड़ा की ऊर्जा, कहीं कथक की नजाकत, कहीं भरतनाट्यम की गंभीरता, कहीं छऊ के मुखौटे, तो कहीं राजस्थान की कठपुतलियां।
1: बिल्कुल दीपा जी, एक तरफ कच्छ की कढ़ाई, दूसरी तरफ कश्मीर के पश्मीना, कहीं मधुबनी की चित्रकारी, कहीं वारली की कला, कहीं पट्ट चित्र, कहीं गोंद कला। सोचिए, इतनी अलग अलग कलाएं, इतने अलग अलग रंग, फिर भी सब मिलकर भारत की एक ही तस्वीर बनाते हैं। अब जरा भारत की थाली में आइए दीपा जी, आप बताइए।
0: बिल्कुल बताती हूँ। कहीं सरसों के तेल की खुशबू, कहीं नारियल और करी पत्ते की महक, कहीं बाजरे की रोटी, कहीं अप्पम, कहीं ढोकला, कहीं लिट्टी चोखा। भारत में भोजन सिर्फ स्वाद नहीं है, ये हमारी संस्कृति की स्मृति है। किसी घर में त्योहार पर गुजिया बनती हैं, कहीं पोंगल, कहीं ओणम की दावत, कहीं बिहू के पकवान, कहीं ईद की सेवैयां। त्योहार अलग हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने की हमारी आदत बहुत पुरानी है।
1: और ये विविधता हमें बांटती नहीं, हमें एक दूसरे को जानने का मौका देती है। इस 15 अगस्त पर आइए अपनी इस विविधता को सिर्फ स्वीकार नहीं, उसका उत्सव मनाएं। हम अलग अलग नदियां हैं लेकिन बहते सब एक ही देश में हैं। हम अलग अलग रंग हैं लेकिन जब साथ आते हैं तभी तिरंगा पूरा होता है।

0: अभी हम सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर को, फिल्म थी फना, और लग रहा है मेल
1: मेल आई हुई है, जिसको लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। और ये लिखते हैं कि हमारी ओर से आपको और घर आंगन परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अपने भारतवर्ष के प्रति सच्चा प्रेम रखना स्वतंत्रता का खूबसूरत अर्थ है इनके साथ।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। और दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि देश का विकास केवल सरकारों या बड़े उद्योगों की जिम्मेदारी, लेकिन सच्चाई यह है कि विकसित भारत की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंद से होती है। जब हम किसी भारतीय बुनकर की बुनी हुई साड़ी या खादी का कुर्ता पहनते हैं, तो केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी का सम्मान करते हैं।
1: और जब हमारी रसोई में हल्दी, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और देशी मसालों की खुशबू महकती है, तब हम केवल स्वाद नहीं बल्कि भारत के लाखों किसानों के परिश्रम को अपनाते हैं। जब हम मिट्टी के बर्तन, बांस की कलाकृतियां, पीतल के दीपक, लकड़ी के खिलौने या हाथ से बने हस्तशिल्प चुनते हैं, तब हम किसी कलाकार के हुनर और सपनों को नया जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हम हर बार, आप जब भी किसी भारतीय उत्पाद को चुनते हैं, तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि रोजगार, उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें कि जहां भी संभव हो स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और अपने भारतीय उत्पादों को इतना बेहतर और लोकप्रिय बनाएंगे कि वे देश के हर घर से लेकर दुनिया के बाजार तक अपनी पहचान बनाएं। आइए मिलकर कहें, स्वदेशी अपनाएं, समृद्धि बढ़ाएं।

0: अभी हम सुन रहे हैं महेंद्र कपूर को फिल्म उपकार में।
1: और इसी के साथ आज के विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक जिम्मेदार हो, हर सपना सम्मान पाए और हर दिल में तिरंगे के लिए गर्व हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मंजुला और
0: दीपा भूषण को इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को

आए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ मैं हूं संगीता आप सभी के साथ लेकर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। भारत की आज़ादी का दिन और इसी दिन 1947 में पश्चिम बंगाल के रानाघाट में एक बहुत प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम रखा गया राखी मजूमदार। किसे पता था कि आज़ाद भारत के पहले ही दिन जन्मी ये लड़की आगे चलकर हिंदी सिनेमा में ऐसी पहचान बनाएगी जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। राखी का फिल्मी सफर किसी फिल्मी परिवार से नहीं शुरू हुआ था। उन्होंने बंगाली सिनेमा से शुरुआत की और 1967 में मधुबरण में नजर आई। फिर आया 1970 का साल और फिल्म जीवन मृत्यु। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म ने राखी को हिंदी सिनेमा के दशकों तक पहुंचाया। लेकिन लोगों ने जिस चीज को नोटिस किया था वो था उनका अभिनय। उनके चेहरे पर भाव बहुत सहज आते थे। वो संवाद बोलती थीं तो लगता था कि किरदार बोल रहा है, अभिनेत्री नहीं। और फिर आई फिल्म कौन सी, शर्मिली। शशि कपूर के साथ इस फिल्म में राखी ने दोहरी भूमिका निभाई। एक ही अभिनेत्री के दो बिल्कुल अलग अलग रूप, एक तरफ शर्मीली और संकोची लड़की, दूसरी तरफ आत्मविश्वासी और आधुनिक युवती। यहीं से साफ हो गया राखी को सिर्फ खूबसूरत चेहरा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो अभिनेत्री थी, बेमिसाल कलाकार।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं बहुत ही कमाल की अदाकारा राखी को। 70 का दशक राखी के करियर का बेहद महत्वपूर्ण दौर था। शर्मिली के बाद राखी की लोकप्रियता बढ़ी और फिर उन्होंने ऐसी फिल्में की जिनमें उनका अभिनय लगातार निखरता चला गया। 1973 में आई दाग अ पोएम ऑफ लव, यश चोपड़ा की फिल्म। राखी ने यहाँ सिर्फ एक प्रेम कहानी का हिस्सा सिर्फ राखी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने किरदार की जो भावनात्मक जटिलताएं थी उनको बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पुरस्कार मिला था। लेकिन राखी सिर्फ मुख्य धारा के सिनेमा तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों में भी काम किया। 27 डाउन इसका उदाहरण है, और फिर 1976 में आई फिल्म तपस्या। ये फिल्म जो है राखी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो अपने

परिवार के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। राखी ने इस किरदार में ऐसा भाव भरा कि दर्शक उनके साथ रोए, उन्हें महसूस किया। जो पर्दे पर जिस दर्द तकलीफ को दिखाया उसे दर्शकों ने महसूस किया और इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आज है 15 अगस्त, हमारी आज़ादी का दिन, और आज का दिन तो हम सब की ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है। लेकिन एक अदाकारा हैं जिनकी ज़िंदगी में ये दिन बहुत ख़ास रहता है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और जिस बेमिसाल अदाकारा का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है राखी। तो राखी को अगर हम सिर्फ ऐसी गंभीर भूमिकाओं के लिए याद करें या त्यागमयी भूमिकाओं के लिए याद करें, तो ये मुझे लगता है ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनके करियर का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा था रोमांटिक सिनेमा। और जब बात आती है राखी की रोमांटिक भूमिकाओं की, तो कभी कभी को भला कैसे भुलाया जा सकता है। 1976 में आई यश चोपड़ा की ये फिल्म, और अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर से और वहीदा रहमान भी थी इस फिल्म में। फिल्म की कहानी प्रेम, विवाह, बीते हुए रिश्तों और समय के साथ बदलती जिंदगी की कहानी थी। राखी ने जो भूमिका निभाई, एक ऐसी स्त्री की भूमिका जिसके जीवन में प्रेम भी था और सामाजिक जिम्मेदारियां भी। और राखी की खूबी ये थी कि वो अपने किरदार को बहुत ऊंची आवाज में नहीं निभाती थी। उनका दर्द, उनकी तकलीफ उनकी आंखों में दिखाई देता था, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती थी, और उनकी मुस्कान के पीछे छिपी भावनाएं दर्शक अपने आप समझ जाते थे। जैसे वो घर का कोई सदस्य हो जिसके अनकहे को आप समझ लेते हैं, उसी तरह का कुछ दर्शकों का जुड़ाव राखी के साथ भी था। और यही वजह रही कि राखी के किरदारों में एक ख़ास तरह की गरिमा भी दिखाई देती है। तो चलिए हम कभी कभी फिल्म से सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

यूं कभी कभी तो मेरे दिल में भी ख्याल आता है कि इतनी खूबसूरत और कमाल की आवाजें नहीं होती तो हमारी जिंदगी कितनी बेरंग और बेजान होती। नहीं, चलिए हम याद कर रहे हैं राखी को। और ये वो दौर था ना जब राखी की निजी जिंदगी भी एक मोड़ से गुजरी। उनका विवाह हुआ गीतकार कवि और निर्देशक गुलजार से। दो रचनात्मक व्यक्तित्व एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और आगे चलकर उनकी प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मेघना, मेघना गुलजार, जो आगे चलकर निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया और लगातार कर रही। इसके बाद तो राखी की कई सारी फिल्में आईं, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, जुर्माना, काला पत्थर जैसी तमाम फिल्मों का जिक्र कर सकते हैं जिसने राखी को लोकप्रिय बनाया, एक मकाम तक पहुंचाया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन राखी के करियर की सबसे बड़ी खूबी थी वो ये कि एक ही तरह के किरदार में वो कभी भी बंधकर नहीं रहीं और अब उनका सिनेमा एक नए दौर में प्रवेश करने वाला था। क्या वो हम आपको बताएंगे इस कमाल के गीत के बाद।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज हम याद कर रहे हैं राखी को। हिंदी सिनेमा में एक अभिनेत्री के लिए सबसे मुश्किल बदलावों में से क्या होता है, और वो होता है नायिका से माँ का किरदार। लेकिन राखी ने इस बदलाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि माँ के किरदार को ही अपनी नई ताकत बना लिया। 1982 में आई फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राखी, ये सिर्फ अपराध और पुलिस की कहानी नहीं थी, ये कैसे पिता और बेटे के बीच टकराव की कहानी थी, और उस टकराव के बीच खड़ी थी एक माँ। राखी ने माँ को सिर्फ रोने बिलखने वाला किरदार नहीं बनाया, वो पति और बेटे के बीच एक पुल थी, भावनात्मक पुल थी। उनकी आंखों में अपने परिवार को बचाने की बेचैनी थी, और यही राखी की खासियत थी। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने माँ के किरदार को भी एक नई ऊंचाई दी, एक नया व्यक्तित्व दिया।

आपको पता है, राखी के जरिए हिंदी सिनेमा ने एक ऐसी माँ देखी जिसका एक संवाद आने वाले वर्षों तक याद रखा जाने वाला था। क्या था वो संवाद? मेरे करण अर्जुन आएंगे।

0: शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

एक फिल्म का जिक्र किए बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है, वो है करण अर्जुन। सलमान खान और शाहरुख खान अपने युवा स्टारडम के दौर में थे, लेकिन फिल्म की भावात्मक आत्मा बनी राखी, दुर्गा सिंह, दो बेटों की माँ जिन्हें वो खो देती हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं खोती। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये सिर्फ फिल्म का संवाद नहीं रहा, ये हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले संवादों में शामिल हो गया। राखी ने इसे जिस विश्वास के साथ कहा, उसने किरदार को यादगार बना दिया। इसके पहले 1993 में भी बाजीगर में राखी ने शाहरुख खान की मां का किरदार निभाया था, एक ऐसी मां जो अपने बेटे के अतीत और वर्तमान के बीच खड़ी है। राखी की यही खूबी थी, वो नई पीढ़ी के सितारों के साथ भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती थी।

और अब तो वक्त हो चला है इजाजत लेने का, लेकिन जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो अनकही रह गई, जो बहुत कुछ कहना चाहती थी मैं या बहुत सारे गीत सुनवाना चाहती थी पर वो कुछ अनकहा रह गया। हाँ, वो किस्सा ही क्या जो पूरा हो जाए तो कभी इसे फिर इत्मीनान से बैठेंगे और इस किस्से को पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आने वाले समय में कुछ और अच्छी फिल्में आप करें। तो एक बार फिर से राखी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए संगीता को, हम आपसे फिर मिलेंगे। 2:30 पर बने रहिएगा हमारे साथ, संगीत.com लेकर आएंगे। और फिलहाल आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौम आजादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अहम मादनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकतदार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाईं। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोश व खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर आज़म ने मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरका गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद

0: भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वजीर आजम की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माय भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फजाइया के कुल 2,500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माय भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खुसूसी मेहमानों ने यौम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मेयारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वजीर आजम ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले 1 साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनअतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ।
2: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में COVID-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़े का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की इस घड़ी में कुछ मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और कीमियाबी खाद को हथियारों के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया।
2: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के काम और नज़रियात से हमेशा तहरीक हासिल करती रहेगी। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तमाही प्रोग्रामों की खबरें मौसूल हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हज़ारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान ख़ानदान यौम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते के आवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्पा कैम्बुले ने तिरंगा लहराया।

0: इस मौके पर 2500 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे, कौमी तराना और वंदे मातरम पेश किया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के 22 इमारतें मुनहदिम हो गईं, मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफो हरास फैल गया। 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है, जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है, जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और मुआसलाती निज़ाम में खलल की वजह से बचाव और इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां योम आज़ादी जोश खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक उसके साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ योम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today with enthusiasm. Prime Minister Narendra Modi leads the nation by hoisting the national flag at Red Fort in Delhi. Vande Mataram rendered for the first time at Red Fort. In his address, Prime Minister announces free online coaching for poor and middle-class families and training in AI skills to 1 crore youth in next 1 year. Prime Minister says India is emerging as a trusted global partner in critical minerals, with agreements being signed with several countries. Mr. Modi expresses dismay over some nations trying to weaponize resources to flaunt their dominance, crediting India's spirit of Atmanirbharta in meeting the challenge. Indian missions abroad celebrate Independence Day with patriotic fervor. At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast. And in cricket, India 101-1 at lunch against host Sri Lanka in first test of the 2-match series at Gaul. And now the news in detail. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. A report.
2: After the arrival of Prime Minister Narendra Modi, a combined inter-services and Delhi Police Guard presented general salute to him. Thereafter, the Prime Minister inspected the Guard of Honour. The hoisting of the national flag was synchronized with the 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. After the flag hoisting, flower petals were showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, cadets of Army, Navy and Air Force, and My Bharat volunteers participated in the celebrations. Around 5,000 special guests from different walks of life witnessed the celebrations at Red Fort today. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi, taxi drivers of Bharat Taxi, urban sanitation workers under Swachh Bharat Mission, and youth innovators under National Innovation Programs. With Anand and Dipendh, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे

0: 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said, the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests, but unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
1: Duniya apne paas jo kuch bhi hai usko weaponize karne mein lagi hai. Resource ka weaponize, petrol, diesel, fertilizer, dawaiyan, technology ki cheap, itna hi nahi, bhubhag ko bhi weaponize kiya ja raha hai. Aur aise samay agar hum aatmanirbhar ke mantra ko lekar 10 saal sahi disha mein na chale hote to hum kalpana kar sakte hain ki aisi chunautiyon ka majbooti se muqabla kaise kar. Aur hamari taiyariyan nirantar badhti ja rahi hai.
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in the parliament and state assemblies without making it a political fight.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है

0: कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।

0: है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार

लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था, इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक एक विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:30 और हो चुके हैं 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है संगीत.com और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। 15 अगस्त एक खास दिन, एक खास एहसास होता है इस दिन, और देश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी तिरंगा लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है। और इस वक्त की अगर बात करें ना तो स्पेन के मैड्रिड में तिरंगा फहराया जा रहा है, जब हम एक अभियान लेकर निकले कि हर घर तिरंगा, और हमें फ़ख्र है अपने देश पर, अपने तिरंगे पर। और जब हम रेडियो पर बैठे हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एहसास को गीतों के ज़रिए बयां कर सकें, गीतों के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। और जब गीतों की बात आती है ना और हम गीत सुनते हैं तो इन गीतों के ज़रिए जवानों की बहादुरी याद आती है, कभी खेतों में मेहनत करता किसान दिखाई देता है, कभी सरहद पर खड़ा सैनिक, और कभी घर पर इंतज़ार करता हुआ उसका परिवार दिखाई देता है। कभी ये एहसास कि दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, अपना देश तो अपना ही होता है ना। तो चलिए इस गीत से हम शुरू करते हैं संगीत.com का ये खूबसूरत सा सफ़र।

अगर आपने इस गाने पर गौर किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि ये सिर्फ जवानों की तारीफ में लिखा गया गीत नहीं है, इसमें उस दौर के हिंदुस्तान की तस्वीर भी दिखाई देती है जहां गांव है, खेत है, मेहनत है और सबसे बढ़कर साथ मिलकर आगे बढ़ने का जज्बा भी है। और अब जो हम अगला गीत सुनने वाले हैं ना, उसमें देशभक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं है, यहाँ देश की मिट्टी और किसान को सलाम किया गया है। आप समझ गए कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मनोज कुमार की फिल्म उपकार की बात कर रहे हैं, जहां किसान और जवान दोनों को देश की ताकत के रूप में रखा गया है। और जब भी ये गीत आता है ना, सच में एक बड़ा अजीब सा एहसास होता है। कई बार ना ऐसा होता है ना कि शब्दों से खेलने वाले भी या उस जज्बात को उस तरह से कह नहीं पाते हैं जो कहना चाहिए। तो चलिए हम सुनते हैं इस गीत को।

0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, संगीत.com कार्यक्रम है और आज हम कुछ देशभक्ति के गाने सुन रहे हैं। देशभक्ति का ना एक दूसरा भी चेहरा है, और वो चेहरा क्या है? इंतजार। जब हम इस गीत को सुनते हैं ना, तो हमें सरहद पर खड़ा जवान ही नहीं, उसका घर भी याद आता है। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए घर से दूर है, और उधर घर वाले उसके खत का, एक फोन कॉल का, एक खबर का इंतजार करते हैं। ये गाना अपना सा इसलिए लगता है कि सिर्फ इसमें कहानी युद्ध की नहीं है, इसमें एक रिश्ते की कहानी है, यादों की कहानी है, घर लौटने की उम्मीद की कहानी है।

ये भी एक सच्चाई है जिंदगी की। और जो अगला गीत हम सुनाने जा रहे हैं ना, उसमें देशभक्ति थोड़ी अलग तरह से महसूस होती है। गाना कौन सा है? स्वदेश का, ये जो देश है मेरा। इस गीत में ना कोई नारा नहीं है, कोई जोशीला भाषण जैसा नहीं है, बस एक खूबसूरत सा गहरा एहसास है अपने देश, अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से जुड़ाव का। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत दूर चले जाते हैं, दूसरे शहर, दूसरे देश, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अचानक कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई याद हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। और शायद यही इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

इस गीत को सुनते हुए लगता है कि देश सिर्फ नक्शे पर बनी एक जगह नहीं, देश वो जगह है जहां हमारी यादें हैं।

दोस्तों, देशभक्ति हमेशा एक ऊंची आवाज में, एक बुलंद नारे में हो, ये जरूरी नहीं। देशभक्ति दिखाई देती है जवान की वर्दी में, किसान के पसीने में, कभी किसी माँ के इंतजार में, और कभी विदेश बैठे किसी इंसान के दिल में एक हूक उठती है और अपने वतन की याद में वो कह उठता है, अपना देश आखिर अपना ही होता है।

अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपसे कहना यह है कि आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। और आज का दिन खास है, इसे खास बनाए रखिए और अपने दिल में इस देश प्रेम के खूबसूरत एहसास को जगाए रखिए। संगीता को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन एफएम गोल्ड पर कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो आपसे कहना यह है, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और नमस्कार। लेकिन हाँ, जाते जाते आपसे कहना यह है कि मेरे बाद शिव प्रकाश आपके साथ होंगे लेकर कार्यक्रम। और फिलहाल संगीता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज कर रहा है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अपील की कि वे इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं और भारतीय उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों को परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर

0: देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। दक्षिण लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से इमारतें ढह गईं और भूस्खलन हुआ। गोल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 143 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying, "The modern technology depends entirely on critical minerals, and India is actively working to secure its position in this sector." He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests. But unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
2: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. In Jammu and Kashmir, the 80th Independence Day was celebrated across the union territory with patriotic fervor and enthusiasm. Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag at the Bakshi Stadium and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was regrettable. He said that after 8 years of independence, the decision to be a part of India has proved to be right. Along with the rest of the nation, Assam today celebrated the 80th Independence Day with enthusiasm. At the state-level function held at Khanpada in Guwahati, Chief Minister Dr.

0: Dr. Hemanta Biswa Sarma hoisted the national flag. At least 20 people were killed after a magnitude 7.7 earthquake struck off Indonesia's Flores region early today, collapsing buildings, triggering landslides and causing widespread panic. Six people were injured and two remained missing. The quake prompted a tsunami warning that was later lifted after monitoring showed no significant sea level changes. Power outages and communication disruptions hampered rescue and damage assessments. The IMD has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh and Uttarakhand. Parts of Northeast India, Chhattisgarh, East Rajasthan, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. And that is the end of this news bulletin.
1: Uttar Purv, Adbhut, Romanchak aur Manohari. उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारे संवाददाता की सिक्किम से भेजी इस रिपोर्ट के साथ। दरअसल हाल ही में ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार शुरू हुआ है। 6 वर्षों बाद ये व्यापार शुरू हो रहा है, तो इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
3: प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा नाथुला दर्रा लंबे समय से सिक्किम और तिब्बत को व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क से जोड़ता रहा है। 6 साल बाद नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार फिर शुरू होना इस ऐतिहासिक मार्ग के महत्व को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026 के व्यापार सत्र की शुरुआत भारत और चीन के सीमा द्वारों के बीच नो मैंस लैंड में आयोजित समारोह से हुई। इस दौरान सिक्किम सरकार और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम शेरथांग ट्रेडमार्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया मुख्य अतिथि रहे, जबकि क्षेत्रीय विधायक सह सलाहकार पामीन लेपचा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। मंत्री टीटी भूटिया ने नाथुला व्यापार की बहाली को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली से यह क्षेत्र व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
4: The resumption of it is the reopening of new opportunities of our traders, entrepreneurs, transporters, local businesses and the people of Sikkim. It is also a symbol of friendship, cooperation and progress. Nathula has always been an important part of Sikkim's history. For centuries, it connected people, cultures and trade across Himalayas. Today, we are adding another important chapter to that proud history. The government of India has given special attention to the development of the Northeast region and border areas under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Initiatives such as the Act East policy, PM Gati Shakti and the vision of Viksit Bharat have improved infrastructure, connectivity and economic opportunities across the region. These initiatives are helping border states like Sikkim become important centers for trade, tourism एंड इन्वेस्टमेंट।
3: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी यूत्सो ने बताया कि 6 साल के अंतराल के बाद व्यापार फिर शुरू हुआ है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार की बहाली से क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और स्थानीय कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही नाथुला और शेरथांग को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और लोगों को इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक कचरा अपने साथ वापस ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
5: वी हैड अ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड खदास बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द टिबेट ऑटोनोमस रीजन व्हिच टुक प्लेस एट नाथुला गेट जस्ट अ मोमेंट अगो एंड दिस मार्क्ड अ फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द न्यू ट्रेड सीजन आफ्टर अ गैप ऑफ 6 इयर्स।
3: कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों को बॉर्डर ट्रेड पास और कैफेटेरिया आवंटन आदेश वितरित किए गए। नाथुला सीमा व्यापार की बहाली से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और सिक्किम के व्यापार एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
2: त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खानपान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
6: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3 शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी

0: और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघों के इस राज्य यानी मेघालय में एक विशेष पहल के तहत शिलोंग में एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नागालैंड की समृद्ध विरासत संस्कृति का प्रदर्शन किया गया और साथ ही नागालैंड की मौखिक परंपरा के विषय में नई पीढ़ी को जागरूक किया गया। तो आइए हमारी संवाददाता अनुमिता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: नागा समाज का इतिहास पीढ़ियों से बुजुर्गों की सुनाई कहानियों, लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता आया है। यही परंपराएं उनकी समृद्ध संस्कृति और पहचान को आज भी जीवित रखे हुए है। इसी विषय पर बनी वीव्स ऑफ एम्पैथी, अ जर्नी इनटू नागा ओरल हिस्ट्री नाम की डॉक्यूमेंट्री का हाल ही में शिलोंग में प्रदर्शन किया गया। 25 जुलाई को असम राइफल्स ने लैथकोर स्थित अपने महानिदेशालय मुख्यालय में इसका आयोजन किया। यह डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट एम्पैथी की प्रस्तुति है। यह एक सामाजिक संस्था है जो असम राइफल्स और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर शिक्षा, कला, कहानी और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में संवेदनशीलता, भावनात्मक स्वास्थ्य और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। COVID-19 के दौरान शुरू हुई यह संस्था स्कूलों, कॉलेजों और समाज में सहानुभूति का संदेश फैलाने का काम कर रही है। संस्था कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, इनमें से एक नागा ओरल हिस्ट्री स्टोरीज ऑफ एम्पैथी है। इसका उद्देश्य नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह छात्र अपने माता पिता और दादा दादी से बातचीत कर उनके जीवन के अनुभव और यादों को रिकॉर्ड करते हैं। इससे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संवाद बना रहता है और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। इस फिल्म की परिकल्पना प्रोजेक्ट एम्पैथी की संस्थापक विवा लेखड़ा ने की है और इसका निर्देशन पराशर बरुआ ने किया है। इसमें नागा समाज की परंपराओं, संघर्ष, जीवन के अनुभवों और मूल्यों को बुजुर्गों तथा युवाओं की आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म सहानुभूति, मेल मिलाप और आदिवासी विरासत के संरक्षण का संदेश देती है। यह परियोजना बताती है कि मौखिक इतिहास केवल अतीत को याद रखने का माध्यम नहीं है। यह नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से सीखने, सवाल पूछने और उनके अनुभवों को समझने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के दौरान असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के गायक दल ने पहली बार वॉक विथ मी गीत प्रस्तुत किया। इसे एम्पैथी एंथम भी कहा जाता है। यह गीत करुणा, हौसले और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का साथ देने का संदेश देता है। इस अवसर पर मौखिक इतिहास को सुरक्षित रखने और कहानी सुनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विवक्ताओं ने कहा कि जब युवा अपने बुजुर्गों की बात सुनते हैं और समझते हैं, तभी संस्कृति और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचती है। अनुमिता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के

हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

जी हाँ श्रोताओं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। जी हाँ, आज हम पूरे देश के साथ मिल करके सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। और आकाशवाणी दिल्ली के हमारे सारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। और ये जो वक्त होता है, ये वक्त होता है मन भावन का। आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश। आप सभी मेरा प्यार भरा अभिवादन स्वीकार करें और आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमारा जो ईमेल का पता है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने संदेशों के माध्यम से, वो है fmgoldair@delhi.gmail.com। और व्हाट्सएप का नंबर है 9868868753। आपके बहुत सारे संदेश हमसे जुड़े हुए हैं और आ रहे हैं लगातार हमारे पास। उन संदेशों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि क्या क्या संदेश हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश आया है। इन्होंने कहा है कि आपको प्यार भरा नमस्कार। आपको भी प्यार भरा नमस्कार। साथ ही हमारे पास एक संदेश आया उत्तम नगर दिल्ली से। ये हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। इन्होंने फिल्म काबुलीवाला का गाना सुनना चाहा है और देखते हैं कि वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे संदेश। हमसे जुड़े हुए हैं और ये गाना हम कोशिश करेंगे मन्ना डे साहब की आवाज में है आप तक पहुंचाएं। कुछ संदेश हम और शामिल करना चाहते हैं। उनमें हमारे पास संदेश आया हुआ है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेरा जहां भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास एक संदेश आया हुआ है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार का। और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं कि 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्होंने एक फरमाइश भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन भी जुड़े हुए हैं। आइए मन्ना डे साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना देशभक्ति को समर्पित

0: जी हाँ दोस्तों, हम मना रहे हैं 80वां स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन देश में ही नहीं और पूरी दुनिया में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। और इस समय आइसलैंड के रेकियाविक में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। और हमारे देश में तो मनाया जा ही रहा है, जहाँ भी देखो हर जगह तिरंगा लहला रहा है। तिरंगा आसमान में यूं ही लहलाता रहे और हमारी शान आन बान को ऊंचा उठाता रहे। तो एक देखिए कि ये समय समय पर पूरे देश में जहाँ भी, मतलब इस समय जैसे भारत में समय हो रहा है 3:35, और वैसे ही इस समय आइसलैंड का जो समय है वो दिन का है, सुबह है, करीब 10 बजे का समय है। और इस समय 9:30 का समय है। आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक, वहाँ पर ये मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान, और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आप लोगों तक आपके संदेश तो हम पहुँचाएंगे, लेकिन एक छोटा सा विराम लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप बने रहे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
1: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आपके पैगाम हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे पास और भी पैगाम लगातार आ रहे हैं। जिन साथियों के, जिन दोस्तों के पैगाम पहले आ गए हैं, उनसे निवेदन है कि जो शामिल हो चुके हैं वो बार बार पैगाम ना भेजें, ताकि आपके ही कुछ और मित्रों के पैगाम भी शामिल हो जाएं, आराम से हो जाएं, दिक्कत ना आए। तो आपसे एक निवेदन था मेरा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास भवरपुर बसना से राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन का संदेश आया हुआ है, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने भी हमें संदेश भेजा हुआ है, और हमारे पास जी हाँ, आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से पैगाम आया हुआ है। स्वाति, किशु और किशन वजनानी, नीलम, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और मेरठ कैंट से भी एक पैगाम आया हुआ जो हमने पहले शामिल कर लिया है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का ये पैगाम आया हुआ है। साथ ही हमारे पास कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुंभार जी का संदेश आया हुआ है। कृष्ण की नगरी मथुरा से संदेश भेजते हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी अंजलि भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। उमेश कुमार खयाला से, विष्णु गार्डन से जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार, राकेश कुमार भी इनके साथ हैं। इन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है वो गाना हमने ले लिया है, और कई फरमाइशों में ये गाना शामिल है। साथ ही हमारे पास अनूप कुमार झारखंड से ये संदेश आया हुआ है। इन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा है, और इन्होंने एक फरमाइश भी भेजी है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान।

दिया ताहिरा भी जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहणकर, राही सरिता जी हैं, प्रणीता सिद्धांत हैं, प्रिंस एकांश हैं और टुक टुक भी इनके साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा भी जुड़े हुए हैं। और ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, 80th मतलब 80वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। रविंद्र कुमार लखेड़ा, पूजा, यश और नायरा सिरसा हरियाणा से जुड़े हुए हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है, बहुत प्यारा देशभक्ति गीत है, मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की गूंजती आवाज़ आप तक अब पहुँचेगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। ओपी नैयर का संगीत है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। उन संदेशों

को तो हम शामिल कर ही रहे हैं और अभी हम करने भी वाले हैं। और आपसे आगे बढ़ने से पहले हम एक सवाल आपसे साझा करना चाहते हैं जिसका उत्तर आप लोग हमें देंगे ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए। हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और किसने लिखा था? इसका उत्तर आप लोग हमें भेजेंगे और आप लोगों के उत्तर आने के बाद जो सही उत्तर है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और सही उत्तर भेजने वालों के नाम भी अभी हम इसी कार्यक्रम में आपसे साझा करेंगे। तो आप तक हम पहुंचाते हैं आपके कुछ संदेश। जी हाँ, गुरमीत सिंह मीता जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई से अनु जुड़ी हुई हैं, शमशुल खान, अनुराज बिनारा, और साथ ही हमारे पास शमशुल कमर राही का गंज डोंडवारा से आया हुआ पैगाम, शाहिन फातिमा, अदनान, फैजान, अनु, उस्मान, कलीम, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी, मनीष, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और जी हाँ, हमारे पास देखिए उत्तर भी आ गया अनु और शमशुल अनुराज का। ये कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और भी जो बात इन्होंने कही है बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब सही है, आप मुंबई से अनु, शमशुल और अनुराज हैं। पूरा जवाब मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है कि अभी कुछ लोगों को जवाब देने का अवसर दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवसाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हुए हैं, और अनु जी ने सही जवाब भेजा है। और साथ ही हमारे पास रविंद्र कुमार लखेड़ा जी का फिर से ये पैगाम आ गया। आप लोग बार बार ना भेजें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास सही जवाब है तो ज़रूर भेजें। फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है कि प्यारी प्यार, इसकी फरमाइश इन्होंने भेजी है। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण और कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे पास सनावत से शेख मूसा मोहसिन जुड़े हुए हैं, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी जुड़े हुए हैं, और भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हमारे पास संदेश आया हुआ है। लाम से नाना, लाम से मीना, लाम से तेजस, जय, हर्षिता, और इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुरेश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विराज, स्वीट स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी का भी ये संदेश आया हुआ है। और साथ ही रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुर्शित खुशी गोस्वामी का भी ये संदेश आया हुआ। आप कई लोगों ने हमें एक फरमाइश भेजी है, फिल्म पूरब पश्चिम का ये नगमा आप लोग सुनना चाहते हैं और देशभक्ति के जज्बे को भर देने वाला बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
6: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, अब घड़ी कह रही कि हमें चलना होगा, चलने का वक्त करीब आ गया है, मन भावन से विदा लेना होगा। वैसे हम बने रहेंगे आपके साथ, 5:10 पर हम आप तक पहुंचाएंगे गाते गुनगुनाते और भी एफएम गोल्ड का ये जो सिलसिला है, ये 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ खुशबू बिखेरता रहता है, संगीत की खुशबू, जानकारियों की एक अनूठी सौगात आप तक पहुँचाता रहता है। तो जैसा कि हमने आपसे सवाल पूछा था, आपके बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, जिन संदेशों के जरिए आपने हमें जवाब भेजा है, और सही जवाब भेजने वालों के नाम तो हमें शामिल करने ही करने हैं, और कुछ फरमाइश भी आ रही है। सतीश धाकड़ जुड़े हुए हैं नायमा से, रंजूबाई धाकड़ हैं, युवराज सिंह हैं, शिवांगी धाकड़ हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमें पैगाम भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान हैं, इन्होंने राष्ट्रीय गान किसने लिखा था वो लिख के भेजा है। सही जवाब, मतलब आपकी जो बात है वो सही है, लेकिन सवाल हमारा कुछ और था। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हुए हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भी इनके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यवतमाल महाराष्ट्र से विदर्भ से जुड़े हुए हैं संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय जुड़े हुए हैं उत्तम नगर दिल्ली से, इनके साथ सचिन और अमन भी हैं, दीपांशु भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, और कब लिखा था वो भी लिखा है इन्होंने, सही जवाब है आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इदरिश सैफी का हमारे पास संदेश आया है, इन्होंने हमें भेजा है जवाब, कोशिश की है लेकिन कुछ सही कुछ गलत, पूरी तरीके से सही नहीं है, तो चलिए चलते चलते सही जवाब हम आप तक पहुंचा देते हैं। सही जवाब है कि इस हमारे राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को, लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी चटर्जी, दोनों बातें हम लोग कहते हैं, और उन्होंने लिखा है इसको, और कब लिखा है और इस के बारे में और भी बातें, 7 नवंबर 1975 को उन्होंने लिखा है इसको। बाद में उन्होंने साल 1982 में ये गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया इस गीत को। और इसी बात के साथ अब हमारे चलने का वक्त हो गया है, चलते चलते एक बार

फिर से आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड के साथ, और ऐसे ही देश आप सब के साथ, हम सब के साथ तरक्की करता रहे और नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अपील की कि वे इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं और भारतीय उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रकवि, राष्ट्रवादी और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रारब्ध और मानव परिवर्तन की असीमित संभावनाओं में श्री अरबिंदो का विश्वास आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों

0: Jammu and Kashmir, Ladakh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the next days. And that is the end of this news bulletin.
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: लीजिए सुनिए फिल्मी नगमा। फिल्म है अभिमान और स्वर है लता मंगेशकर और मनहर का।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोताओं, हम आप तक कुछ फिल्मी तराने पहुंचा रहे हैं, साथ ही हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। और अभी हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं कि इस समय आज 15 अगस्त है और हम मना रहे हैं 80वां स्वाधीनता दिवस, और हर घर तिरंगा अभियान देश में ही नहीं विदेश में भी मनाया जा रहा है। इस समय लगभग इसी समय ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। और ये एक संदेश है हम सबके लिए कि देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा देश प्रेम का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। अगला नगमा फिल्म बॉबी से और आप सबके लिए है। इसमें जो स्वर है वो शैलेंद्र सिंह और साथियों का है।

0: Finance and Chief Accounts Officer, Executive Engineer Electrical, Chief Medical Record Officer, Supervising Medical Social Service Officer, Security Officer, Accounts Officer, Assistant Stores Officer, Private Secretary, Assistant Engineer for Vigilance Cell, Manager, Supervisor, Gas Officer, CSSD Supervisor, Chief Pharmacist, Senior Pharmacist, Pharmacist Grade 1 and Sanitation Officer. The post carry pay levels ranging from level 6 to level 14, with the number of vacancies vary by post and subject to change according to the institute's requirement. The maximum age limit is 58 years for medical superintendent and 56 years for all other posts as on the closing date. The last date for receipt of applications is 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility, qualification, experience, terms and conditions and the application format, kindly visit the official AIIMS Rishikesh website. That is at www.aimsrishikesh.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अनुसंधान वैज्ञानिक कुल पदों की संख्या 14, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 2, परियोजना वैज्ञानिक बी कुल पदों की संख्या 8, परियोजना एसोसिएट ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 4, परियोजना एसोसिएट 2 कुल पदों की संख्या 18 और कनिष्ठ अध्येता कुल पदों की संख्या 2। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए कृपया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट www.nrsc.gov.in। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना। राष्ट्रीय बाल भवन में वेतन स्तर 7 में सहायक लेखा अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है, उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in।

0: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय
2: समाचार सेवा प्रभाग से। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, यही तिरंगा है जो आज हर भारतीय के मन में गर्व जगाता है। यही तिरंगा है जिसकी छाव में हमारी विविधता एकता बन जाती है और जिसकी आन के लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र भारत की 80वीं वर्षगांठ। आज का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ये उस संघर्ष की याद है जिसने हमें स्वतंत्र भारत दिया। ये उन अनगिनत बलिदानों को नमन करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम अपने सपनों को अपनी राह दे सकते हैं, और ये उस संकल्प को दोहराने का दिन है कि भारत की प्रगति में हम भी अपना योगदान देंगे। आज जब देश का तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है, तो आइए हम सब भी अपने भीतर वही ऊर्जा, वही विश्वास और वही देश प्रेम महसूस

0: आज का भारत नया भारत है, नई संकल्प है, नई मंजिलें हैं और नए सपनों को साकार करने का नया आत्मविश्वास है। तो इसी गर्व, उमंग और सकारात्मक संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज की विशेष परिक्रमा। आज उस भारत के नाम जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान को सशक्त बना रहा है और भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी स्वतंत्र भारत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एंड टू यू ऑल्सो वैष्णवी। वेल, दिस इज मी शगुन चोपड़ा विद वैष्णवी टुडे। एंड यस, मे द ट्राइकलर ऑलवेज फ्लाई हाई। Freedom in our mind, faith in our words, and pride in our souls. Independence Day 2026. Well, yes, Independence Day. Whether you are connecting with family members, expressing gratitude to colleagues, or sharing patriotic updates, well, having the right words makes all the difference. And there were countless ordinary people who set aside their personal comforts to contribute to the struggle for freedom. That is why, upon seeing the tricolor today, one feels not only pride and proud, but also a sense of responsibility, especially, which is to further strengthen through our own actions the freedom that was won at such a great cost. And well, yes, we are united, and let's also salute the martyrs for the freedom we enjoy today. Jai Hind.
0: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नजर डालते हैं आज की क्या प्रमुख हेडलाइंस रही हैं शगुन।
1: यस, बिगिनिंग नाउ, नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे विद एंथुसियाज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स द नेशन बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली।
0: लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: एंड इन हिज एड्रेस The Prime Minister announces free online coaching for poor and middle class families and training in AI skills to 1 crore youth in next 1 year.
0: Pradhanmantri Modi ne kaha mahatvapurna khanijon ke kshetra mein Bharat ek vishwasniya vaishvik saajhedar ke roop mein ubha raha hai. Kai deshon ke sath samjhauton par hastakshar kiye ja rahe hain.
1: Mr. Modi expresses dismay over some nations trying to weaponize resources to flaunt their dominance, crediting India's spirit of Atmanirbharta in meeting the challenge.
0: Videshon mein sthit Bharatiya dutavason mein bhi Swatantrata Divas manaya gaya.
1: At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast.
0: Aur Gale mein Sri Lanka ke saath pehle cricket test match mein दोनों के बीच मुकाबला जारी।
1: सो वैष्णवी, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड व्हाट एल्स वुड इट बी अबाउट? इट्स इंडिपेंडेंस डे टुडे।
0: श्रोताओं, जिस आजादी का जश्न हम आज मना रहे हैं उसके पीछे वर्षों का संघर्ष है।
1: True.
0: अनगिनत बलिदान है और लाखों दिलों की एक ही पुकार थी, भारत आजाद हो। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना जीवन, लेकिन देश की आजादी के सपने से कभी समझौता नहीं किया। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आसमान में शान से लहराया, तो उसके साथ उन हर आंखों के सपने भी पूरे हुए जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में आजादी का उजाला देखा था। आज हम उसी उजाले में जी रहे हैं, इसलिए इस तिरंगे को सलाम करते हुए उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें ये दिन देखने का सौभाग्य दिया।
2: हमारा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक रहा है।
3: हम चलते हैं 1947 में 14 और 15 अगस्त की गौरवान्वित मध्य रात्रि तक, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत ने अपनी नियति से साक्षात्कार किया। उस भाषण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी समापन का गौरव और उल्लास था।
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए महत्वाकांक्षी परिकल्पनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
4: और पब्लिक सर्वेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टू शेड देयर रोल एज रूलर्स एंड हैव टू बिकम ट्रू सर्वेंट्स ऑफ द पीपल दैट देयर कंपीयर्स आर इन ऑल फ्री कंट्रीज। द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑन देयर साइड हैव टू गिव देम देयर ट्रस्ट एंड अश्योर देम कंडीशंस ऑफ सर्विस इन कीपिंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल in whose midst they have to live and serve. We welcome the Indian states which have acceded to India, and to their people we offer our hands of comradeship. To the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them. We trust they will follow the example of the King of England and become constitutional rulers. They would do well to take as their model the British monarchical system, which has stood the shock of two successive world wars when so many other monarchies in Europe have toppled down. To Indians settled abroad in British colonies and elsewhere, we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare. To our minorities, we give the assurance that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected.
2: भारत अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के आदर्शों पर चलता रहा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन समर्पित किया और निष्ठापूर्वक विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवारत रहे। आज अपार शक्ति सामर्थ्य से संपन्न भारत अपनी विशाल आर्थिक क्षमता और मानव पूंजी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
3: आइए हम एक साथ मिलकर संविधान सभा में सुचेता कृपलानी के अमर स्वर में गुंजित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ें।
1: Well, yes. So the grand celebrations at the Red Fort, they have already unfolded with Prime Minister Narendra Modi hoisting the national flag and thereby addressing the nation from the historic ramparts. And this year, there was a special first. For the first time since independence, Vande Mataram echoed from the Red Fort before the flag was hoisted. We have a detailed report. We'll now listen into it. It's a special report from our correspondent.
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर

0: आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सो लिसनर्स, वंदे मातरम आवर नेशनल सॉन्ग, इट कैरीज द मेमोरी ऑफ अ मूवमेंट। So as we mark 150 years of Vande Mataram, a song written in the era of India's freedom struggle, once again became part of the nation's Independence Day celebrations, and this happened for the first time.
2: जी, और शगुन, आज जब हम स्वतंत्रता की उस ऐतिहासिक विरासत से आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है, आने वाले भारत की दिशा कौन तय करेगा? जवाब है आज का युवा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। स्वामी विवेकानंद का यह अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज के युवाओं के उत्साह और आत्मविश्वास में दिखाई देता है।
1: इंस्पायरिंग वर्ड्स। And this year, youth, technology, innovation, entrepreneurship, indigenous capabilities and sustainable development, they have been placed firmly at the heart of the celebrations, Vaishnavi.
2: 6G और artificial intelligence से लेकर semiconductor तक, green hydrogen और solar energy से लेकर स्वदेशी defense technology तक, देश आगे की ओर देख रहा है।
1: And in fact, for the first time ever, the equipment used at the Red Fort ceremony was indigenously built. And this gives a strong message of Atmanirbhar Bharat, right?
2: बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल 1 crore युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। साथ ही 5 से 15 वर्ष के बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट हंट की पहल की भी बात की गई है।
1: एंड वैष्णवी, अ डेवलप्ड इंडिया विल नॉट ओनली नीड इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल्सो साइंटिस्ट, एथलीट्स, क्रिएटर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ड्रीमर्स, एंड वेल, इंडिपेंडेंस डे कैन रियली बी लिमिटेड टू वन सेरेमनी इन दिल्ली, राइट? नो,
2: बिल्कुल नहीं शगुन। हर घर तिरंगा से लेकर माई गॉव की गतिविधियों तक, स्कूलों, कॉलेजों से लेकर समुदायों और सरकारी संस्थानों तक, देश भर के नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस को एक जन उत्सव में बदल दिया है।
1: एंड वैष्णवी, द सेलिब्रेशंस हैव ट्रैवल्ड फार बियॉन्ड इंडिया टू, एंड इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे मार्क द ओकेजन विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, cultural programs also follow and community gatherings. So in Singapore, Beijing and Hong Kong, members of the Indian diaspora came together to celebrate their connection with India, the Independence Day celebrations thereby.
2: इसका मतलब यही हुआ कि तिरंगे की पहचान सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। वैश्विक नेताओं ने भी बधाई संदेश भेजे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित किया। वहीं अमेरिका के विभिन्न राज्यों के नेताओं और सांसदों ने भारतीय अमेरिका समुदाय के योगदान की सराहना की।
1: एंड आवर प्रोग्राम विच यू आर लिसनिंग टू लिसनर्स राइट नाउ इज कॉल्ड परिक्रमा। सो ऑन इंडियाज मोस्ट स्पेशल डे, How could we not take a parikrama of India? So well, let's begin with me and Vaishnavi, Meesha Gun Chopra and Vaishnavi. Well, we are bringing you the spirit and celebrations of Independence Day from across the nation. First, let's start with Assam. The focus was on infrastructure, flood rehabilitation and a long-term vision 2047 with major investments planned in roads, schools and rural and urban development.
2: और अब हमारी ये परिक्रमा पहुंचती है कर्नाटक, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तकनीक और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया। छठी कक्षा से एआई की शिक्षा, कोडिंग पहल, सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए खेती का सर्वे और रोजगार के नए अवसर, यानी युवा शक्ति को भविष्य की तकनीक से जोड़ने की कोशिश।
1: लेट्स गो नाउ टू छत्तीसगढ़। इंडिपेंडेंस डे कैरीड अ पर्टिकुलरली पावरफुल मैसेज फ्रॉम बस्तर। Villages that had once been affected by Maoist violence hoisted the tricolor, with many doing so far for the first time since independence, for the first time.
2: और अब आगे बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ। तो मिजोरम में विकास को संतुलित और समावेशी बनाने पर बल रहा। वहीं तेलंगाना में विविधता में एकता को केंद्र में रखते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी का संदेश दिया गया।
1: हेडिंग नाउ टू त्रिपुरा। More than 1,300 students, teachers and alumni came together for Vande Mataram in 1,000 voices, Nagaland, Vande Mataram was rendered for the first time during the state-level Independence Day celebrations alongside a strong message of peace, unity and development there.
2: वहीं पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे की शान को देखने को मिली, जबकि हुसैनीवाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के सभी 10 जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह हुए और श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम

0: मुख्य आयोजन का केंद्र रहा। वहीं हरियाणा से तमिलनाडु और झारखंड से पश्चिम बंगाल तक अलग अलग राज्यों में इस अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकास और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए।
1: Now I'm about to present a beautiful idea. India does not celebrate freedom in just one language or one culture or one tradition. Right?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शगुन।
1: We celebrate it in hundreds of voices while standing beneath one tricolor. So Mahatma Gandhi once said, "The future depends on what you do today." And that brings us to the India of today. An India looking back at the sacrifices of its freedom fighters while looking ahead towards 2047.
0: बिल्कुल शगुन, जैसा आपने कहा, हमारे देश की सबसे खूबसूरती यही है, विविधता में एकता। और इस पूरे सफर को देखते हुए एक बात तो साफ है, भारत की आजादी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी भी है। और शायद आज हम सबके लिए एक सवाल जरूरी है, अपने भारत को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजादी का इतिहास लाखों लोगों ने मिलकर रखा था और आने वाले भारत का इतिहास भी हम सबकी भागीदारी से ही लिखा जाएगा। भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
1: जय हिंद। नाउ मूविंग ऑन, इट्स आल्सो हरियाली तीज, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एज वेल।
0: सावन की बारिश के साथ जब प्रकृति का रंग बदलता है, पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है और त्योहारों की रौनक बढ़ने लगती है, तो वातावरण में एक अलग ही उमंग महसूस होती है। झूलों की सजावट, हाथों में मेहंदी और लोकगीतों की गूंज, ये सभी मिलकर हरियाली तीज के आगमन का संकेत देते हैं।

0: beautiful. So there is something truly magical about Indian festivals. Everybody knows that. And every season brings its own celebration, its own colors, its own traditions, and its own beautiful story. Hariyali Teej captures the very spirit of the monsoon greenery, devotion, love, and togetherness.
1: और हरियाली तीज के इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ सावन की हरियाली नहीं है शगुन, अगर हम देखें तो उसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि इस पर्व की कथा में हमें सीधे देवी पार्वती और भगवान शिव की तपस्या और समर्पण की ओर ले जाती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की। इसी अटूट साधना और उनकी दृढ़ संकल्प की स्मृति हरियाली तीज की परंपरा से जुड़ी हुई है।
0: Well, true Vaishnavis, according to tradition, goddess Parvati performed intense penance to win Lord Shiv as her husband. And it is believed that she undertook this spiritual journey through 108 births. And in her final birth, as the daughter of King Himavan, she gave up the comforts of the palace and devoted herself completely to penance.
1: पार्वती की तपस्या के सामने परिस्थितियां भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी पवित्र मिलन की स्मृति में हरियाली तीज मनाई जाती है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है।
0: And married women, they observe the fast and pray for the well-being and longevity of their husbands and for a happy married life. Unmarried women seek the blessings of Goddess Parvati for a loving and devoted life partner.
1: और इस पर्व की पहचान इसके रंगों और रीति रिवाजों से भी होती है। महिलाएं हरे रंग के परिधान और चूड़ियां पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और सजे हुए झूलों के आसपास उत्सव का आनंद लेती है। 16 श्रृंगार की परंपरा भी इस अवसर को विशेष बनाती है।
0: And in many regions, married women exchange bangles, sindoor, sweets and gifts. This tradition is associated with Sindhara, adding another layer of warmth and togetherness to the festival. Jaipur's Hariyali Teej is exceptionally famous due to its grand royal procession, also vibrant Lahiriya traditions and deep cultural tribute to monsoon greenery and marital devotion. And Vaishnavi, it stands out because of the iconic Shahi Sawari, the royal procession of Teej Mata, the festive culinary wave of Ghevar, and centuries-old heritage rituals. And well, yes, we will continue.
1: Jai Rajasthan.

0: आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोकगीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी।
1: सावन के साथ प्रदेश में चढ़ा लहरिये का रंग अब तीज के उल्लास में बदल गया है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर पारंपरिक पचरंगी और मोठड़ा लहरिये के साथ आधुनिक डिजाइन तथा गोटा पत्ती वर्क वाले परिधान पहनकर शहर के बाग बगीचों और पार्कों में सजाए गए झूलों का आनंद ले रही हैं। हाथों में मेहंदी रची है, चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है, पायलों की झंकार और लोकगीत तथा मल्हार गूंज रहे हैं। वहीं तीज की रील बनाकर भी युवतियां और महिलाएं मॉडर्न ट्रेंड में कहीं भी पीछे नहीं हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आज राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकल रही है। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी भी निकाली जाएगी। हरियाली तीज से एक दिन पहले कल सिंजारा पर्व पारंपरिक उत्साह आधुनिक रंगत के साथ मनाया गया। सिंजारा दूज यानी श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार नवविवाहिता का पहला सिंजारा ससुराल से आता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
2: मे द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती ब्रिंग ऑल द फर्स्ट हैप्पीनेस एंड वार्म विशेस टू एवरीवन ऑन हरियाली तीज। टुडे लिसनर्स, इट्स ऑल्सो नवरोज एंड इन इंडिया न्यू ईयर डजंट ऑलवेज अराइव ऑन जनवरी द फर्स्ट। डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स वेलकम द न्यू ईयर ऑन डिफरेंट डेज, वन ऑफ विच इज नवरोज।
0: शगुन, जैसा ही हम पहले चर्चा कर ही रहे थे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरत मिसाल उसके अलग अलग पारंपरिक नववर्ष भी हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी इन पर्वों के साथ नई शुरुआत और नए वर्ष का स्वागत करने की परंपरा जुड़ी हुई है।
2: So Vaishnavi, why don't we turn our attention to another fascinating New Year tradition, which we've already told you. It's Navroz, the Iranian and Persian New Year, celebrated with great enthusiasm by Zoroastrians, including the Parsi community in India. So Navroz is inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity, reflecting its significance as a shared cultural tradition.
0: तो आज नवरोज के अवसर पर इस पर्व से जुड़े एक बेहद खूबसूरत विचार को याद करते हैं। नया दिन यानी नई शुरुआत, नई उम्मीद रखने का दिन, बीते हुए को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन और आने वाले कल का स्वागत करने का दिन। तो नवरोज मनाने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नवरोज मुबारक। और अब समय हो चला है क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज क्या कुछ खास है उनके पास।
2: सो वैष्णवी, देयर इज अ पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर अक्रॉस द कंट्री ऑन इंडिपेंडेंस डे। एट द महाकालेश्वर टेंपल इन उज्जैन, डिवोशन टू लॉर्ड शिव वाज आल्सो सीन अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म।
3: At the world famous Shri Mahakaleshwar Temple in Ujjain, Madhya Pradesh, Baba Mahakal was given a special tricolor decoration early this morning on Independence Day. During the Bhasma Aarti, a tricolor tripund was made on Baba Mahakal's forehead using saffron, white and green colors. The temple doors were opened early in the morning for the Bhasma Aarti, followed by the Abhishek and worship of Lord Mahakal with Panchamrit. Baba Mahakal was then decorated with tricolor tripund, a silver om and a crown decorated with bilwa leaves and a rudraksha garland. As part of the Bhasma Aarti tradition, Lord Ganesha, Goddess Parvati and Lord Kartike were also worshipped. After this, sacred Bhasma was offered to the Jyotirlinga as per the rituals. A large number of devotees had darshan of Baba Mahakal in his tricolor form. For Parikrama, Abhinav Goyal, Akashvani Bhopal.
0: शगुन, अब समय हो गया है खेल जगत से कुछ खबरें देने का श्रोताओं को, तो क्या कुछ खबर है आज?
2: Well, we have updates from cricket. India were 236 for 2 against host Sri Lanka in the first of the two test series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat.
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। सबसे पहले बात करते हैं सरदार अजीत सिंह के बारे में। जिस दिन देश ने आजादी की पहली सुबह देखी, उसी दिन पंजाब के इस निर्भीक क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली। सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।

0: उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पंजाब में किसानों को संगठित किया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लंबे समय तक निर्वासन में रहने के बाद वे स्वतंत्र भारत की धरती पर लौटे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उनका निधन हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महादेव देसाई के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के अत्यंत करीबी सहयोगी, सचिव और स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। उन्होंने गांधी जी के विचारों और आंदोलनों तक को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1942 में पुणे के आगा खान पैलेस में उनका निधन हुआ।
1: Today we are also remembering Ustad Amir Khan. Well, one of the greatest and most influential Indian classical singers of the 20th century. He founded the famous Indore Gharana. He was deeply loved for his deeply spiritual, slow and meditative style of singing.
0: बिल्कुल, उस्ताद आमिर खान की गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई, ठहराव और आत्मिक अनुभूति का अद्भुत संगम था। आइए आपको सुनाते हैं उनके सुरमई विरासत की एक झलक।

0: कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विदेश में बाघों के संरक्षण के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे और प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक बने। उनके प्रयासों ने भारत के बाघ संरक्षण को एक संगठित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग मैक्सवेल रोच, द जैज ड्रमर एंड कंपोजर, अ पायनियर ऑफ बीबॉप। He worked in many other styles of music and is generally considered one of the most important drummers in history.

0: आज के दिन जन्मे अरबिंदो घोष का जीवन भारत की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक चेतना दोनों से गहराई से जुड़ा रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में रहे और बंदे मातरम जैसे पत्रों के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता का विचार सामने रखा। बाद में श्री अरबिंदो ने पुदुचेरी में आध्यात्मिक साधना की और समग्र योग का मार्ग विकसित किया। आज रामदरस मिश्र की जयंती है। रामदरस मिश्र ने कविता, कहानी और उपन्यास तथा साथ ही आलोचना हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। ग्रामीण जीवन और आम आदमी की संवेदनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द अनफॉरगेटेबल राखी गुलजार। A cinematic journey in the world of Indian cinema, few names shine as brightly as Rakhi Gulzar. And well, we know her for her incredible talent and versatility.
0: दाग, तपस्या, राम लखन, करण अर्जुन और सीमा जैसे फिल्मों में उनके अभिनय को विशेष सराहना मिली। उन्हें पद्मश्री और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं उसी दौर का एक संगीत।

आज जयंती है लोकप्रिय गीतकार इंदिवर की, जिन्होंने गीतों को अपने शब्द दिए। इंदिवर का वास्तविक नाम वैसे तो श्यामलाल बाबू राय था। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक लोकप्रिय गीत दिए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी कलम से निकला एक यादगार गीत।

खूबसूरत गीत के साथ आज की कार्य परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और उज्जवल भारत का निर्माण करें। जय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है।
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरविंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, श्री अरविंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना FASTDS नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। ये योजना कल से लागू होगी और इसके अंतर्गत ब्यौरा दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 दिसंबर है। गॉल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 239 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। FIH हॉकी विश्व कप में भारत का मुकाबला वेल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,

जी आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और वक्त है गाते गुनगुनाते का। हम आपसे जुड़ गए हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे संगीत को लेकर के। जी हाँ, आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही 80वें स्वाधीनता दिवस पर बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। दिल की गहराइयों से वो भावनाएँ जो बहुत ही अप्रतिम है और बहुत ही खूबसूरत है, दिल चाहता है कि देश बहुत आगे बढ़े, हम सभी मिलकर देश को बहुत आगे बढ़ाएं और बहुत ही प्रेम से मिलजुल कर रहें और देश की खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती चली जाए। एक बड़ा ही प्यारा सा नगमा हमने लिया है, फिल्म है शहीद भगत सिंह। यहाँ इस नाम से कई फिल्में बनी और बने भी क्यों ना, क्योंकि इतने बड़े लीजेंड हमारे सरदार भगत सिंह, जिनके बलिदान को फिल्मों क्या, किताबों क्या, शब्दों के जरिए बयां करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। उन्हीं के किरदार पर बनी ये फिल्म। इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा, आवाजें हैं रूप कुमार राठौड़ की, हरभजन और मोहम्मद सलामत इस भगत सिंह फिल्म के गाने में हैं। और ये जो गाना है ये उसी जमाने का गाना है जो खुद सरदार भगत सिंह गाया करते थे, इसी देशभक्ति के नगमे को।

जी हाँ, सरदार भगत सिंह पर एक और फिल्म बनी थी, कई फिल्में बनी जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था। एक और फिल्म का नगमा हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उस फिल्म का नाम था द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, और ये जो पिछली फिल्म थी ये थी शहीद भगत सिंह। दोनों एक ही साल में आई थी, 2002 में। और इस फिल्म का यानी लीजेंड ऑफ भगत सिंह के जो मुख्य किरदार थे, कलाकार थे, वो थे अजय देवगन जो भगत सिंह की भूमिका में थे, सुशांत सिंह, अखिलेंद्र मिश्रा, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह, ये तीनों भूमिकाएं इन तीनों की थी। अजय देवगन भगत सिंह की भूमिका में थे। डी संतोष, अमृता राव, और फिल्म का जो संगीत था वो ए आर रहमान का था। एक अच्छी फिल्म, एक सुपरहिट फिल्म, फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए, एक अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सम्मानित किया गया। फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी, फिल्म का जो संगीत हमने आपको बताई दिया कि ए आर रहमान साहब का था, बहुत ही शानदार संगीत था, बहुत ही सुपरहिट ये फिल्म थी। और इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, हम आज स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और हर घर पे, हर इमारत पे तिरंगा लहला रहा है। और ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, ये हमारे देश में तो हम मना ही रहे हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में इस हर घर तिरंगा अभियान की धूम मचा रहे हैं। जी हाँ, अभी जो है इस वक्त 5:30 बजने वाले हैं और इस वक्त जो समय होगा जॉर्ज टाउन में, जो गुयाना का एक शहर है, वहाँ की राजधानी है, इस वक्त वहाँ सुबह के 8 बजने वाले हैं और सुबह 8 बजे का जो वक्त होगा वो हर घर तिरंगा अभियान का वक्त होगा जॉर्ज टाउन में। तो आप सभी लोग इस देशभक्ति के जज्बे को खूब दिल में बसाएं और इस जज्बे के साथ देश के लिए काम करें, खुद के लिए काम करें, तभी ये देश सबके एक साथ चलने से आगे बढ़ेगा। अगला नगमा फिल्म कर्मा से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में। ये जो फिल्म थी, इसमें दिलीप कुमार, नूतन, अनुपम खेर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई और फिल्म का संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुक्ता आर्ट्स का बैनर था। बहुत ही शानदार फिल्म थी, एक सुपरहिट फिल्म थी अपने ज़माने की और आज तक इसका संगीत लोगों के दिलों में बसा हुआ है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

जी हाँ, गाते गुनगुनाते इस सफर में आपके साथ हूं मैं शिव प्रकाश। 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और आप तक पहुंचा रहे हैं आज हम कुछ देशभक्ति के वो तराने जो बेहद यादगार हैं, जो हिंदी सिनेमा में जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। एक बेहतरीन नगमा फिल्म बॉर्डर से है, और इसमें जो स्वर है वो शंकर महादेवन और सोनाली राठौड़ का है। एक बहुत ही शानदार फिल्म जेपी दत्ता ने बनाई। जिस तरीके की वो फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही फिल्म जैसे उन्होंने गुलामी बनाई। ये फिल्म भी राजस्थान में शूट की गई थी, गुलामी भी राजस्थान में शूट की गई, और दत्ता साहब ने ही इस पूरी फिल्म को निर्देशित किया, उसका स्क्रीन प्ले लिखा, उसके डायलॉग्स लिखे, उसकी कहानी लिखी, और निर्माता भी खुद ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मेहनती इंसान वो हैं। और फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई थी वो थी सनी देओल की, जैकी श्रॉफ की, सुनील शेट्टी की, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा। एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म, बेहतरीन कमाई इसने बॉक्स ऑफिस पे की। अपनी लागत से लगभग 5-6 गुना इस फिल्म ने कमाया, और फिल्म का जो संगीत था वो था आदेश श्रीवास्तव का। आइए इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा शंकर महादेवन और सोनाली राठौड़ की आवाज़ में।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, एक और नकबा हमने लिया है, फिल्म है 10। ये जो फिल्म थी, ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक ठीक ठाक फिल्म थी। फिल्म ने अपनी लागत से ज़्यादा ही कमाया, लेकिन फिल्म का जो संगीत था वो काफ़ी चर्चा में रहा। जी हाँ, इस फिल्म में एक गाना है जो उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और डोमिनिक की आवाज़ में है। ये गाना खासी चर्चा में रहा। ये शंकर महादेवन इसमें मुख्य, अगर आप देखेंगे तो मुख्य जो गायक हैं वो शंकर महादेवन है, और ये बहुत अच्छा एक सुपरहिट गाना रहा। और इस फिल्म में इस गाने की वजह से इस फिल्म को एक अलग पहचान मिली। विशाल शेखर का संगीत था, बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी, और इसी फिल्म का ये गाना हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। फिल्म में जो सितारे थे वो संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जायद खान, और फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे अनुभव सिन्हा और नितिन मनमोहन इसके निर्माता थे। तो आइए, इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये नगमा आप तक, उदित नारायण, शंकर महादेवन और महालक्ष्मी और डोमिनिक की आवाज़ में।

और अब चलने का वक्त हो गया, और चलते चलते आपको एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर बहुत सारी मंगल कामनाएं, बधाइयां। आप खूब तरक्की करें, देश खूब तरक्की करे, सब खुशियों के साथ मिलजुल कर रहें। इसी भावना के साथ मैं शिव प्रकाश गाते गुनगुनाते के सफर से आज विदा लेता हूं। आप बने रहे FM गोल्ड के साथ, जहां आपसे कुछ ही देर में इस गाने के बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्व

0: महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक 8 होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations at the iconic Red Fort in Delhi.

0: रक्षा बजट और रक्षा उत्पादन में भी दिखाई देता है। तो सवाल है कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता किस तरह मजबूत हो रही है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
1: भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव का एक बड़ा आधार है बढ़ता निवेश। रक्षा बजट में पिछले एक दशक में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था। वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7.85 लाख करोड़ हो गया, यानी रक्षा बजट में 3.1 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में पूंजीगत व्यय 94,587.95 करोड़ था। वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया। इसका सीधा संबंध सेना के आधुनिकीकरण से है। नई तकनीक, नए उपकरण और आधुनिक सैन्य प्रणालियों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात रक्षा उत्पादन की। वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का योगदान 76% था, वहीं निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा। रक्षा निर्यात में भी तेज बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 38,424 करोड़ हो गया, यानी 12 वर्षों में रक्षा निर्यात में 5,500% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। सरकार ने वर्ष 2029 तक हर साल 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केवल बड़े सरकारी संस्थानों पर निर्भर नहीं किया जा रहा है। निजी कंपनियों, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को भी रक्षा क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। वर्ष 2022-23 से रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% हिस्सा उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला गया है। इसका उद्देश्य है कि नई तकनीक देश में ही विकसित हो। इसी दिशा में रक्षा परीक्षण पोर्टल यानी DTP भी काम कर रहा है। इस पोर्टल के जरिए DRDO की 24 प्रयोगशालाओं में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं तक घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और उद्योगों को पहुँच मिल रही है। इससे देश में नई रक्षा तकनीक बनाने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया आसान हो गई है।
0: रक्षा उत्पादन बढ़ाने के साथ यह भी जरूरी है कि देश में बने रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार ने रक्षा खरीद की प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में हमारी अगली रिपोर्ट में।
2: भारत की रक्षा खरीद में स्वदेशी सामान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रक्षा खरीद की सबसे बड़ी संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने DRDO द्वारा डिजाइन और भारतीय उद्योग द्वारा बनाए गए नए रक्षा सिस्टम के लिए 6 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकताओं को मंजूरी दी है। इनमें 62,000 करोड़ के 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा 62,700 करोड़ के 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इन खरीदों से भारतीय कंपनियों को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और काम मिलेगा, साथ ही देश में एरोस्पेस और रक्षा निर्माण की क्षमता भी बढ़ेगी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ने भी स्वदेशी खरीद और देश में रक्षा सामान बनाने पर जोर दिया। इसने रक्षा डिजाइन, विकास और उत्पादन में भारतीय कंपनियों के लिए अवसर बढ़ाए हैं। वहीं रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की नींव रखी है। रक्षा खरीद नियमावली 2025 के जरिए राजस्व खरीद में 1 लाख करोड़ की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसमें जल्द मंजूरी, स्वदेशी परियोजनाओं के लिए कुछ दंड में छूट और लंबे समय के आदेश जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 का मसौदा भी तैयार किया गया है। इसमें खरीद की श्रेणियों को आसान बनाने और देश में डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसमें रक्षा सामान में 60% तक स्वदेशी सामग्री की जरूरत का भी प्रस्ताव किया गया है। रक्षा क्षेत्र में नए विचारों और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए IDEX योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह अदिति योजना के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना नई रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए आर्थिक मदद देती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत रक्षा तकनीक के विकास के लिए 50 करोड़ तक का अनुदान दिया जा सकता है। जून 2026 तक

0: 334 करोड़ की 80 परियोजनाएं लागू की जा रही थी। इन योजनाओं का मकसद है कि देश के युवाओं, स्टार्टअप और कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी बनाने का मौका मिले।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं है। पुरानी तकनीक को आगे बढ़ाना, उसे भारतीय उद्योग को देना और देश में जरूरी सामान बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में तकनीक के हस्तांतरण, स्वदेशीकरण और सैन्य इस्तेमाल पे भी जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी अगली रिपोर्ट में।
2: भारत में रक्षा सामान के स्वदेशीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। डीआरडीओ के विकास सह उत्पादन भागीदार ढांचे के तहत 134 साझेदार कंपनियों को तकनीक हस्तांतरित की गई है। अब तक 2180 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मार्च 2026 तक उद्योगों के इस्तेमाल के लिए 2780 से अधिक आईपीआर खोले गए हैं। इससे भारतीय कंपनियों को नई रक्षा तकनीक पर काम करने का मौका मिल रहा है। स्वदेशी रक्षा सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म भी काम कर रहा है। मई 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक विक्रेता और 270,000 उत्पाद सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने अप्रैल 2026 तक 42,057 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं आकर्षित की थीं। तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने 32,699 करोड़ रुपए की निवेश बोलियां आकर्षित की थी। लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा ने मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है। रक्षा व्यापार को आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। क्षेत्र में एफडीआई की सीमा स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक की गई है। भारत ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 5 लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इनसे इन मिसाइलों की तकनीकी और परिचालन क्षमता की पुष्टि हुई है। वायु रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ ने कुछ लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORADS जैसी प्रणालियों पर काम किया है। अब बात करते हैं समुद्री सुरक्षा की। भारतीय नौसेना ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्शीर सहित 12 युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों को कमीशन किया है। स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इनसे समुद्री निगरानी और सर्वेक्षण की क्षमता मजबूत हुई है। इन उपलब्धियों से पता चलता है कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब केवल उत्पादन और अनुसंधान तक सीमित नहीं है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की यह यात्रा अभी भी जारी है। इसका लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना ही नहीं है, आने वाले वर्षों में नई और जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपनी तकनीकी और औद्योगिकी क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। वर्ष 2047 तक भारत को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बने। वर्ष 2047 की ओर बढ़ते भारत के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ तकनीक, उद्योग, रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा दे सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने ही देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमंत्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्। रक्तदुर्गे पप्रथमतया जातं वंदे मातरमिति राष्ट्रीय गीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमंत्रिणा निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुंबानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामी वर्षे कोट्यधिक युवाभ्यः एआई कौशल प्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैस्सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितम्। संसाधनानां अस्त्रीकरणे प्रधानमंत्रिणा प्रकटिता चिंता, समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्। अपि च इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। देशः अद्य स्वकीयम् अशीतितमं स्वतंत्रता दिवसं समाचरति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिक स्थलात् लाल किला इति रक्तदुर्गात् स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लाल किला इत्यत्र वंदे मातरमिति राष्ट्रीय गीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्रध्वजारोहणावसरे 21 आग्नेयास्त्रध्वनिभिः अभिनन्दनम् अभवत् भारतीय वायुसेनायाः 2 MI-17 उदग्रयानाभ्यां पुष्पवृष्टिश्च संजाता। अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47.5 वर्षं यावत् विकसित भारतस्य निर्माणे तरुण भारतस्य योगदानम् आमानयति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी रक्तदुर्गे वंदे मातरम् इत्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः इत्यवर्णयत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रं महता उत्साहेन नवसंकल्पैः च अग्रे सरति।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी न्यगादीत् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नतशिखरे प्रापयितुं सर्वविधप्रयासान् कृतवन्तः। विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् 12 वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः 4 गुणिता, खादी ग्रामोद्योग उत्पादने 5 गुणिता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्रे 7 गुणिता, आधुनिक रेल निर्माण क्षेत्रे 21 गुणिता अथ च संचार दूरभाष निर्माण क्षेत्रे 33 गुणिता वृद्धि संजाता। सः असूचयत् यत् अंतर्जाल उपयोक्तृणां संख्यायां 4 गुणिता अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च 100 गुणिता वृद्धि अभवत्।
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारी। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतत् एकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति येन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटि रूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि एकस्मिन् वर्षे एककोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते येन ते वैश्विक एआई क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः गुणवत्ता कौशलं चेत्येतेषु त्रिषु मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्।

0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानाम् उपरि आश्रिता विद्यते। भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीय हितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् संकटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्व प्रदर्शनार्थं संसाधनानां अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यंत्रं कृतम्।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: प्रधानमंत्री सर्वेभ्यः दलेभ्यः सविनयं निवेदितवान् यत् ते संसदि राज्य विधानसभासु च राजनैतिक कलहं परित्यज्य महिला आरक्षणस्य क्रियान्वयनाय सहयोगं कुर्युः।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य 80वें स्वातंत्र्य दिने राष्ट्रीय युद्ध स्मारके वीरान श्रद्धांजलिम अददात्। राष्ट्रपति स्मारके पुष्पमालां समर्पयित्वा हुतात्म वीरान श्रद्धांजलिम अर्पितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, रक्षा सचिवः संजय सेठः, रक्षा सचिवः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यम, सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। प्रचंड भूकंपस्य अनन्तरं उद्धारदलानि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रेषु गन्तुं प्रयतन्ते। इति वार्ताः।

0: joining us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil.
1: नमस्कार, आप सभी का मार्केट मंत्रा में स्वागत है. और आज हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
0: वार्म वेलकम शिशिर.
2: थैंक यू, नमस्कार.
1: और श्रोताओं, आप कॉल करने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-4-0481, और तीसरा नंबर है 2371-7106. और इन नंबर से पहले आप 011 लगाना ना भूलें. और फिलहाल मुख्य समाचार.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्स 7-पॉइंट रिफॉर्म फ्रेमवर्क और सप्तधारा फॉर इंडियाज डेवलपमेंट. हाइलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एज की एस्पेक्ट्स अमंग अदर्स. डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क्स डिक्लाइन ओवर 0.5% दिस वीक आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव वीकली गेन्स. And oil prices rise over 4% this week on renewed supply risks.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को गति देने के लिए सप्तधारा का खाका पेश किया. इसमें विनिर्माण, कृषि, प्रौद्योगिकी, हरित और नीली अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया. लगातार 2 सप्ताह की बढ़त के बाद इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज. और आपूर्ति को लेकर नए जोखिमों के बीच इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की तेजी आई.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Upon his arrival, for the first time, the national song Vande Mataram was rendered at the Red Fort. Thereafter, the Prime Minister hoisted the national flag, following which national anthem was sung. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called as Saptdhara. The first stream outlined by the Prime Minister is manufacturing. He said the second power of this Saptdhara is agriculture and food production. The third is technology and innovation. And the fourth is Gati Shakti. The fifth, defense capabilities. The sixth, power is the green economy and blue economy. And the 7th stream of Saptdhara is India's soft power.
3: Main aaj us yug ko bhi yaad karna chahunga jab desh bharat ka samarthya sapt sindhu ke roop mein hum jante the, hum samajhte the, hum sunte the. Ab viksit bharat banane ke liye hame nayi dhara chahiye. Aaj lal kile ki prachir se main desh ke samne shakti ki sapt dhara ka aahwan karta hu. Aane wale 5-7 saal mein jo pichle 5-7 dashak mein nahi hua wo sapt dhara ke samarthya se, shakti se hum desh ko nayi unchai, nayi gati denge aur naye lakshyon ko paar karne wala samarthya denge. Aur iske sath sath desh ki yuva shakti ka samarthya ka bharpur rashtra nirman mein upyog hoga.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5 सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है. प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है, खादी तथा ग्रामीण औद्योगिक उत्पादन करीब 5 गुना हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सफलता 7 गुना तक है. उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक रेलवे कोच तैयार करने की क्षमता 21 गुना बढ़ चुकी है और देश मोबाइल विनिर्माण 33 गुना बढ़ा चुका है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले के मुकाबले 4 गुना हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब तक डिजिटल लेन देन 100 गुना बढ़ा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक भारत करीब

0: 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और भारतीय कारोबारियों के लिए निर्यात करने में काफी आसानी हुई है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उत्पादों की पहुंच पूरे विश्व में हो। इस बीच हमारे साथ में जितेंद्र जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए। जितेंद्र, आप सुन पा रहे
1: हैं?
0: जी, प्रश्न पूछिए।
2: जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा कॉल करें, बिकॉज आपकी लाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जशर, इन द मीन टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड एंड गेव द क्लैरिन कॉल फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस दैट इज एज इट मूव्स फॉरवर्ड टू विकसित भारत 2047। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग from PM's speech on this clarion call?
3: Apart from the seven strength, what we call as the Shaptadhara ki Shaktiyan, he also talked about seven key, what we call as the aspiration, or rather I would say that changing the scale of the ambition or the aspiration. What are those? Number one is the 50 companies in the Fortune 500. So at this moment, we have nine Indian companies. Out of nine Indian companies, five are the PSUs and four are from the private sector. They are part of the Fortune 500. Now he wants that number to be increased to 50. The second thing he talked about, then Indian bank in top global banks. So one of the big problem we always have been talking about, that we are such a big country, we have so many banks, but when we talk about the global banks, none of our bank are featuring in the top 5 or top 10 banks. The third, he talked about an Indian pharma company among the world's top 5. And this is critical, especially when we have become what we call as the pharma hub for the world, or pharma Correct. To the world. The fourth one is that Indian law or rating agency achieving global leadership. Fifth one is an Indian consulting or accounting firm among the world top firms. If you can remember, last year we were talking about Desi firms taking over the top four, big four, what we call as, how they can be groomed into that. So now he is also talking about that. And finally, he talked about that in Indian technology company among the world's top companies. Of course, our technology companies are in what you call, say, 100, 1 to 20 or 1 to 30, but he wants much higher ranking for them. And the final one is that the brand that world recognizes with enthusiasm, where it hears the name India, that is Make in India, Made for the World. So these are the seven, apart from the strength, which is he called as the Saptadhara ki Shaktiyan. These are the seven aspirational achievement or the target which you want to achieve that.
0: Manish हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका।
2: हेलो
0: मनीष, प्रश्न पूछिए आपका।
1: जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई 20 लाख कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और 1.5 साल के बाद उसको अगर 1,20,000 का फायदा होता है, तो वो कैपिटल गेन में क्या रखना पड़ता है, या सिर्फ ये जो प्रॉफिट का जो पोर्शन है 1,50,000 उसको रखना पड़ता है, कौन सा है?
3: देखिए, आप जब घर खरीदते हैं और घर बेचते हैं, उसके बाद आपका जो मुनाफा होता है उसको इनकम टैक्स की धारा 54E के तहत, 54C के तहत उसकी गणना की जाती है, और उसमें आपको ये सहूलियत दी जाती है कि 3 वर्षों के भीतर उसको आप नए घर के निर्माण में जो है वो कर सकें। इन 3 वर्षों के दौरान आपको वो एक विशेष खाता होता है विभिन्न सरकारी बैंक और निजी बैंकों में वो उपलब्ध है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं। और उस 3 वर्ष के भीतर आपको निवेश करना होता है, कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर बना बनाया घर की बात करें। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि ना केवल घर, बल्कि अगर सोने से भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, या फिर अगर आपको शेयर बेचने का भी फ़ायदा हुआ, अगर आप उसको घर में निवेश करते हैं तो आपको कैपिटल गेन से छूट मिल सकता है।
0: शिशिर, आज प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान किया है, उनके लिए ये भी कहा कि आप प्रयास कीजिए, आपको विदेश में मौके मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको निर्यात करने के, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के जो उत्पाद हैं वो पूरे विश्व में पहुँचे।
3: निश्चित तौर पर देखिए, इस समय में अगर हम अपने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की बात करें, जिनकी अगर पूरी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 40% से ज़्यादा का है, निर्यात में उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक है। अब दिक्कत यह है कि ये इनके लिए विश्व बाजार में अपने आप को पैट बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बाद आप क्या करते हो, तो एक उनके लिए क्या कहते हैं कि उनको एक प्रोत्साहित करने की कोशिश है कि आप अच्छा कर रहे हो। आप देखिए कि बीते कुछ समय में, चाहे वो आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप पीएम स्वनिधि की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिससे कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब उनके लिए है कि वैश्विक बाजार में आप और अपनी पहल मजबूत करें। आप अभी जो है केवल बड़ी कंपनियों के लिए आप एक कहते हैं ना कि उनको आप सप्लाई करते हो, लेकिन आप खुद विश्व बाजार में कैसे आप पैठ बढ़ा सकते हो, वो उसका आह्वान है। और यहां पर जो एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, जो उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाजार में, दुनिया के तमाम कंपनियों में जब आप सामान बेचते हैं, वहां पे एक ही चीज जो सबसे ज्यादा देखी जाती है कि आपके गुणवत्ता क्या है, और उसके साथ देखी जाती है कि आपकी प्रतिस्पर्धात्मक लागत क्या है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर आप कम करते हैं, गुणवत्ता अगर आप बेहतर बनाए रखते हैं, तो बाजार में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के संदेश का ये आशय था।
2: We're taking your calls live on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. Do give us a call, as Gopal has called us from Mumbai. A warm welcome, Gopal.
4: Namaskar, Mark Kamal team goes. Azadi ke din ki shubhkamnaye. Sir, mera sawal ye hai ki koi equity agar girta hai to uska koi limit nahi rehta hai. मान लीजिए अभी मेरे पास, मैंने 1800 पे स्टॉक बाय किए, आज वो स्टॉक गिर गिर के 500 तक लुढ़क गया है। अगर मैं टोटल अपना तीन साल पहले 10 लाख रुपए मार्केट में लगाया है, आज मैं अगर स्टॉक बेचता हूँ तो मेरे को 2 लाख भी हाथ में नहीं आ रहा है। स्टॉक जो गिरते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, गिरते ही जाते हैं। 1800 का बाय किया, आज वो 500 पे चल रहा है।
3: गोपाल जी देखिए, रोज के आधार पर, जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर, कि आप कितना नीचे जा सकते हैं और आप कितना ऊपर जा सकते हैं, वो रोजाना आधार पे है। अब ये नहीं है कि अगर आपने देखें कि जो आपने भाव का जिक्र किया कि 1800 का जो था वो 300 पे आ गया या 500 के आ गया, वो हो सकता है और भी नीचे जाए, बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है और भी नीचे जाए, ये बाजार की प्रकृति है। रोज के आधार पर रोकने की प्रवृत्ति जरूर होती है कि एक 5% के ऊपर पहला सर्किट है, फिर 10% है, 15% है, 20% पे फिर ट्रेडिंग रोक दी जाती है, वो सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो रोजाना के आधार पर है। उसमें लगातार अगर 10 दिन तक गिरावट ही होती जा रही है, जो कि कई ऐसे शेयरों में हमने देखा है, हमारे शेयर बाजार में लगभग 7100 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, और इनमें से हम चर्चा अक्सर 30 शेयरों की तो करते हैं जो कि सेंसेक्स के हैं, या उन 50 शेयरों की करते हैं जो निफ्टी के हैं, लेकिन जो बाकी 6000 कंपनियां, उनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम लोग 54 शेयर भी कहते हैं, पेनी स्टॉक्स कहते हैं, उनके भाव, किसी के भाव 20 रुपए थे जो घट करके 10 पैसे पे आ गए। तो ये एक बाजार की प्रकृति है, रोजाना के आधार पर जरूर ब्रेक लगाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसको कहां पे रोकना है ये बाजार तय नहीं करता।
0: जयपुर से जितेंद्र एक बार फिर हमारे साथ में, जितेंद्र जी आपका प्रश्न पूछिए।
5: हाँ सर, ये जैसे पिछले 3 महीने से हम आईटी के निफ्टी 50 के आईटी में जो है ना एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी तो कंपनी है, नाम तो ले नहीं सकते, तो एक दो में कर रहे हैं, और एक प्राइवेट बैंक है निफ्टी 50 में ही है, जिसका दाम काफी गिरा है। अब क्या रीजन से गिरा, हम तो दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, 700 रुपया भाव है, 725 की, मैं उसमें भी एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है?
3: देखिए, आईटी कंपनियों में मुझे लगता है कि जो बीच में एक माहौल बना था कि एआई की वजह से, और खासतौर पे दक्षिण कोरिया और ताइवान में जिस तरीके की तेजी आई थी, उसके बाद आईटी कंपनियों में काफ़ी गिरावट हमने देखी थी, अब वहाँ पर स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। हाँ, रोजाना के आधार पर या अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो कभी कभी उनमें गिरावट भी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि का बना करके चलते हैं, यानी कि 3 से 5 साल का समय लेकर के चलते हैं, तो आईटी क्षेत्र काफ़ी अच्छा मुझे अभी नज़र आ रहा है। दूसरा जो आपका प्रश्न था बैंक को लेकर के, देखिए बैंकिंग में खासतौर पे एक कहते हैं ना कि जब महंगाई दर बढ़ रही है तो ब्याज दर बढ़ने का खतरा है, और ब्याज दर बढ़ेगा तो इससे जो है भले ही आम उपभोक्ता को जो है वो नुकसान हो, लेकिन बैंकों के लिए वो एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर के बाद वो स्थिति शायद आए, तो उस बीच में बैंकों के बीच में हमने देखा कि सरकारी बैंकों की स्थिति अच्छी रही, निजी बैंकों में गिरावट आई है। जैसा कि आपने खुद कहा कि आपने एक सरकारी बैंक के शेयर ले रखे हैं, निजी बैंक के आपने शेयर ले रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको चिंता भी करने नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको समय दे दीजिए। और आपकी बहुत अच्छी रणनीति है कि आप उसमें SIP कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे किस्तों में निवेश कर रहे हैं, और हमेशा हम अपने श्रोताओं को

0: यही कहते रहे हैं कि मुनाफा भी किस्तों में कमाइए और निवेश भी किस्तों में कमाइए, एक साथ सब कुछ लगा देना या बेच देना उचित नहीं।
1: दिल्ली से कन्हैया लाल हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, प्रश्न पूछिए।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
2: हेलो
1: जी, प्रश्न पूछिए आपका।
2: जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा गोल्ड परचेज करके रखा था, अभी बताइए कि इसका गोल्ड को अब सेल करने का कुछ हम सोच सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा आकाशवाणी से है, प्रोग्राम के लास्ट में आप बोलते हैं कि ये
0: देखिए, सोने को लेकर के मुझे लगता है कि सोने को में पिछले दिनों काफी गिरावट हमने देखी, जब 170-180 के भाव से नीचे गिरना शुरू हुआ, 140 तक आ गया, 145 तक आ गया। और सोने को लेकर के ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में जिस तरीके की मजबूती आ रही है, उसके बाद डॉलर में जैसे जैसे मजबूती आ रही है, सोना वैसे वैसे कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं, अगर आपकी मूल से अगर आपको घाटा नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए रखिए। सोना एक ऐसा चीज़ है जो कि एक तय समय के बाद अच्छा खासा मुनाफा देता रहा है, सोने की एक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि दुनिया में सोने की आपूर्ति बहुत ही सीमित है, जितना सोना है उपलब्ध है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें आप समय पे बने रह सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, तो माफी चाहेंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।
3: प्रेम फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ। प्रेम, अ वार्म वेलकम।
4: सर, आप सभी को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
4: सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी माइक्रो लेवल पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी बॉडी, कोई अथॉरिटी जो प्रोवाइड करे, सर किस प्रकार से आने चाहिए?
0: देखिए, ऐसी कोई संस्था तो वैसे नहीं है जो कि बहुत ही छोटे निवेशकों के लिए जो आपकी मदद कर सके। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप उनसे सलाह लेने की बात करते हैं, तो जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल समय समय पर सलाह देता रहा है कि इस समय सोने के भाव में किस तरह का चलन देखने को मिल रहा है, तो उनके कमेंट्री के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा कई बुलियन एसोसिएशन हैं, वो भी टाइम टू टाइम उनके जो कमेंट आते रहते, उनकी कमेंट्री आते रहते, उन पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। और बाकी रहा सवाल कि सोने को लेकर के, जैसा मैं भी कह रहा था कि दुनिया में सोने की आपूर्ति सीमित है, एक तय समय के बाद उसमें एक कहते हैं ना कि एक मुनाफे होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब ये समय कितना लग सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डॉलर जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, सोना वैसे वैसे कमजोर हो रहा है, तो ये भी एक हैरानी की बात है कि जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, उसके बीच में भी सोना कमजोर हुआ है, जो कि आमतौर पे नहीं होता रहा है। तो इस समय में मुझे लगता है कि आप सोने में अगर निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी कर करके एक टाइम होराइजन, अगर आपको जरूरत अभी नहीं है 5-7 साल के लिए लेकर के चले, तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो एक बेहतर विकल्प होगा।
1: और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 सप्ताह की बढ़त के बाद इस हफ्ते भारत के घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। मध्य पूर्व में बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों ने शेयर बाजार में दिलचस्पी कम दिखाई। इस सप्ताह निफ्टी 50 में 0.8% की गिरावट आई और ये 24,366 पर बंद हुआ, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.6% गिरकर 78,009 पर आ गया था। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपया कल अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.42 रुपए पर लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, लेकिन एक सप्ताह पहले के मुकाबले इसमें 0.2% की गिरावट आई। और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ है। शंकर, सवाल पूछिए।
5: नमस्ते मार्केट मंत्री टीम। सर, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी।
5: मेरा सवाल है कि अभी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है 20%, तो उससे हमारा इम्पोर्ट पे इफेक्ट आना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारे बढ़ गए, बट आवर इंपोर्ट बिल इज नॉट रिड्यूसिंग। व्हाट इज द रीजन? एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर फॉरेक्स रिजर्व। जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग दैट वे, एंड डॉलर इज इंक्रीजिंग, रुपी इज फॉलिंग। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्या वजह क्या है कि हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि मार्केट ड्रिवन है मोर और लेस। एथेनॉल के प्रयोग से डोमेस्टिक सप्लाई से हमारा फ्यूल आ रहा है थोड़ा सा 20%, विच इज क्वाइट अ लॉट, बट हमारा इंपोर्ट नहीं गिर रहा, हमारा डॉलर नहीं बढ़, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर नहीं बढ़ रहा, क्या क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये अच्छे से? थैंक यू।
0: शंकर जी, रहा सवाल कि एथेनॉल की आपूर्ति तो बढ़ी लेकिन तेल की खपत भी बढ़ी, आप गाड़ियों की संख्या देखें,

0: However short-lived it may be.
1: I mean, we do not know that what kind of trend will be there.
2: शिशिर, जब भी आपसे बात करना होता है तो घरेलू शेयर बाजार का जिक्र ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है. अगर हम इस अगस्त महीने को ही देखें तो मार्केट में हमने देखा कि पहला हफ्ता थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हुए दिखा, फिर गिरावट आई, फिर उसमें गिरावट आई. अब लगातार ये एक ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी कहीं दिख नहीं रही है. जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि प्रिटेंड नहीं कर पा रहे कि कल क्या होगा.
1: देखिए, कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तो हमारे यहाँ पड़ेगा ही. और बीच में जैसे ये चर्चा बहुत होती थी कि विदेशी निवेशकों ने कितने पैसे निकाले, अभी भी वो स्थिति है. लेकिन हमारे लिए अभी अगर आप देखें, बड़ा एक महत्वपूर्ण जिसको कहे कि घटनाक्रम है कि रिजर्व बैंक ने FCNR(B) डिपॉजिट की बात की और उसको 30 सितंबर तक के लिए उन्होंने रखा था. उसमें करीबन $50 बिलियन से ज़्यादा की रकम आई और उसको कहा गया कि अब हम 31 अगस्त को, यानी कि एक महीने पहले ही उसको रोका गया. तो दो ट्रेंड देखिए कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सवाल डेट इंस्ट्रूमेंट की है या डिपॉजिट की स्कीम की है, वहां पर वो पैसा डॉलर आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन निवेशकों को, इन जमाकर्ताओं को एक ऐसा चाहिए जहां पर मूल और ब्याज दोनों में कहीं ना कहीं एक गारंटी मिले. शेयर बाजार वो गारंटी नहीं देता और उसकी वजह से वो पैसा निकल रहा है. हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने काफी अच्छा निवेश किया है. अपने घरेलू वित्तीय कंपनियों की बात करूं, बहुत अच्छा निवेश किया, और सच पूछिए तो उनकी वजह से बाजार में उस तरीके की गिरावट नहीं हुई जो पहले हम देखा करते थे. पहले कहते थे कि अगर अमेरिका में एक छींक आ गई तो भारतीय शेयर बाजार को बुखार लग जाता था. ये एक पुरानी कहावत चलती थी. इसका मतलब होता था कि हमारी निर्भरता विदेशी संस्थागत निवेशकों पे काफी ज्यादा थी. बदली है, लेकिन अभी हम अकेले कहें कि उसको संभाल के चल लेंगे नहीं है. तो निवेशकों के लिए इस समय सबसे अच्छा यह है कि अभी शेयर बाजार में IPOs कई आ रहे हैं, उनमें अगर वो पैसा लगाएं, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, हर रोज दो दो तीन तीन IPOs खुल रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं तो वो बेहतर रहेगा.
0: In the US stocks, the S&P 500 fell 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average dropped 107 points, or 0.2%, and the Nasdaq Composite lost 0.3%. Shishir, very briefly, is there no silver lining on the horizon which could give market sentiments a boost?
1: Only silver lining is that when we will have peace. Okay. And that is something...
0: So
1: nobody,
0: what is your expectations from the market in the coming week?
1: I think there will be that ups and down will continue. But of course, as I always say, that there are value stocks available at lower price. It's a good time to make investment, but it only in the smaller installment.
2: शिशिर, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी, नमस्कार.
0: Thank you, Shishir, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils a 7-point reform framework, or Saptadhara, for India's development, highlights manufacturing, agriculture, technology, green and blue economy as key aspects among others. Domestic equity benchmarks decline over 0.5% this week after 2 consecutive weekly gains. And oil prices rise over 4% this week on renewed supply risks. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good
2: night. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ. श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है.
5: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन

0: 30 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम सुर्खियों में के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं जया भारती। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक तिरंगा शान से लहरा रहा है और देशवासी स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह और गर्व के साथ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, युवाओं, महिलाओं और 2047

0: लिस्ट तक विकसित भारत के लक्ष्य सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री को, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से वंदे मातरम और देश के उत्साह का उल्लेख किया।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: आजादी की इस यात्रा में अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उनके सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच प्रधानमंत्री ने देश के उन हिस्सों का भी जिक्र किया जो इस समय बाढ़ की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
1: बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: लेकिन भारत की आकांक्षाएं यहीं नहीं रुकती। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, अब देश छोटे सपनों तक सीमित नहीं रहेगा, लक्ष्य होंगे बड़े और संकल्प होंगे उससे भी बड़े।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते।
0: बड़े सपनों को साकार करने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति और बदलती आर्थिक तस्वीर का उल्लेख करते हुए देश की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: विकास की इस रफ्तार को नई ताकत दे रहा है देश का आधुनिक बुनियादी ढांचा। बीते एक दशक में सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए।
1: हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है।
0: तकनीक के क्षेत्र में भी भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का उल्लेख किया और भारत की तकनीकी क्षमता का भरोसा सामने रखा।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: तकनीकी सामर्थ्य से लेकर वैश्विक पहचान तक प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है। भारत को अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने आत्मगौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ना है।
1: आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर सरकार है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
0: विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की बराबर भागीदारी को भी प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बताया। महिला आरक्षण से जुड़े प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों से मिलकर आगे बढ़ने की अपील की।
1: समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए। लेकिन मेरी माता और बहनों को हक दीजिए।
0: और विकास की इस पूरी यात्रा के केंद्र में कौन है? देश का नागरिक।

0: प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भवो के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। सुनिए उनके शब्दों में यह संकल्प।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
0: और अंत में प्रधानमंत्री ने देश के सामने मौजूद अवसरों और संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, भारत के पास आगे बढ़ने का समय है, अवसर है और सामर्थ्य भी। अब समय है भारत का।
1: मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए।
0: प्रधानमंत्री के संबोधन में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर रहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल संसाधन ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मगौरव और अपनी क्षमता पर भरोसा भी जरूरी है। उन्होंने सेमीकंडक्टर निर्माण, हाइड्रोजन ट्रेन, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति में बदलाव जरूरी है। उन्होंने सप्तधारा के माध्यम से विकास की कई दिशाओं पर जोर दिया। तकनीक, गति शक्ति, रक्षा, पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था, समुद्री अर्थव्यवस्था और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब रुख करते हैं देश के अलग अलग राज्यों की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह किस तरह मनाया गया और राज्य में प्रमुख कार्यक्रम क्या रहे, इस पर सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। सुर्खियों में के लिए आकाश वाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: छत्तीसगढ़ से मिली इस रिपोर्ट के बाद अब चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम। विजयपुरम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में क्या खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय साहस, त्याग और अटूट संकल्प की गौरवपूर्ण याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह देश के स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट और पूजनीय स्थान रखता है। ऐतिहासिक सेल्युलर जेल उन अनगिनत देश भक्तों की अदम्य भावना का स्थायी प्रतीक है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अमूल्य बलिदान दिए। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों से राष्ट्र के लिए एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त भविष्य के निर्माण में योगदान देने की अपील की। द्वीप समूह के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
0: और अब चलते हैं मुंबई, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनिए एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयोजित आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और चालू वर्ष की पहली 6 माह में राज्य के आर्थिक विकास का दर लगभग 8.8% रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र को स्थायी रूप से सूखा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुणे स्थित लोकभवन में राष्ट्रीय तिरंगा

0: लहराया। एकता और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के तहत पुणे में शिक्षा प्राप्त कर रहे नागालैंड और मेघालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाया। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं पाठशालाओं में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। सुर्खियों में के लिए मुंबई से निवेदिता।
1: देश की एकता और विविधता के रंग गोवा में भी दिखाई दिए। वहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह कैसा रहा, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: पणजी में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तिरंगा फहराया और पुलिस परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सरकारी सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग के जरिए करीब 3000 युवाओं को नौकरी दी गई है और 2000 और नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। गोवा मानव संसाधन विकास निगम अगले 6 महीनों में 6 से 8000 रोजगार देने की तैयारी में है। जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू होगी, जिसके तहत घर या फ्लैट नहीं रखने वाले पात्र मूल गोवा निवासियों को आवास देने का प्रस्ताव है। वहीं 18 खनन लीज को मंजूरी मिल चुकी है और 6 खदानों में काम शुरू हो गया है। पत्रा देवी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने गोवा की मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बालाराया मापारी, पुरुषोत्तम काकोडकर और अन्य सेनानियों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। स्मारक का पूरा हुआ प्रकल्प 25 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सुर्खियों में के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
1: देश के अलग अलग हिस्सों से मिली इन रिपोर्टों से साफ है कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि देश की एकता, विविधता और साझा संकल्प का उत्सव भी है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके सपनों के भारत का निर्माण करना है। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत का लक्ष्य आज इस स्वतंत्रता दिवस के संकल्प का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी संकल्प, आत्मविश्वास और राष्ट्रहित की भावना के साथ आकाशवाणी समाचार की ओर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण बिक्री भंडारण खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

7:26 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम सांझ ढले, आपके साथ मैं विकास।

0: समझ के जाऊं पिया के देश, हो रसिया में धज धज के।
1: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।

फिल्म का नाम था बूट पॉलिश और गीत में एक शब्द था देश, और आज जो दिन है वो तो इसी देश को याद करने का है। वैसे तो हर दिन इस देश के लिए होना चाहिए, लेकिन आज कहते हैं ना उसकी एक खास वजह हमारे पास है। बचपन की अगर बात करें ना तो वो 15 अगस्त की सुबहें अगर आपको और हमें याद हों, क्योंकि तब हमारे पास इतने सारे साधन नहीं थे एक दूसरे से जुड़ने का, कुछ चीज़ों को देखने का। सिर्फ एक टीवी हुआ करता था, सुबह सुबह नींद खुलती थी और सिर्फ टीवी देखने के लिए। तब टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं था, देश को समझने की हमारी और आपकी पहली खिड़की थी। और इस तरह के दिनों में, चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, आसमान गुब्बारों से भर जाता था और एक के बाद एक एयरक्राफ्ट उड़ते थे और चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा। हम अपने छोटे से कमरे में बैठकर पूरा हिंदुस्तान देख लिया करते थे।

0: उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म का नाम था आरजू और लता जी की आवाज थी। और जब हम आज ये दिवस मना रहे हैं और देश का इसमें जिक्र है, तो ये जो गीत था ये भी आधारित था राग देश पर। प्रोग्राम का आखिरी गीत भी उसी राग देश की बात कर रहा है, उसी की छाया लिए हुए है, और आज की खूबसूरती इस राग के साथ शायद और बढ़ गई हो। वैसे जब मैं थोड़ी देर पहले बचपन की

याद कर रहा था तो बचपन में एक और चीज़ मिलती थी स्कूल जाते हुए इसी दिन, और वो थे बूंदी के लड्डू। बड़े हो गए लेकिन स्कूल का वो लम्हा आज भी लगता है कि इस दिन की खूबसूरती को अचानक से मिठास से भर देता है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का

0: प्रतीक नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुन्दर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना

0: के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एनएस राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। श्री संधू ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा में देश का नेतृत्व करना है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत वीरों के अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहराता तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प है।
2: लहराता हुआ तिरंगा केवल हमारे लिए गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की संकल्प भी है और हमें यह निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का सतत दायित्व भी है। यह तिरंगा हमेशा हमारे लिए गौरव है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसी राजधानी का निर्माण करना है जो स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर हो, जहां नारी शक्ति सशक्त हो, युवाओं के लिए नए अवसर हो, हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुंचे और संस्कृति विरासत विकास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अग्रणी भूमिका निभाएगी।
2: दिल्ली विकसित भारत की इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। दिल्ली भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है और परिपक्व हुए हैं। इन संस्थानों ने राष्ट्र की अंतर आत्मा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री जैन ने कहा कि यह दिन उन अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
3: आज के दिन हम उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं जिनके कारण हमें ये आजादी मिली है। बहुत श्रद्धा पूर्वक मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो उनके सपनों का भारत जो उन्होंने देखा हो, जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत हो, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डुसू चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न छात्र संगठन और चुनाव मैदान में उतरने वाले छात्र नेता विद्यार्थियों के बीच सक्रिय रूप से संपर्क अभियान चला रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के साथ साथ अलग अलग महाविद्यालयों और संकायों में उम्मीदवार छात्रों से संवाद कर अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं को उनके सामने रख रहे हैं। चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने अपनी रणनीति और प्रचार अभियान को भी गति दे दी है। उम्मीदवार छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए विद्यार्थियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। डुसू चुनाव के लिए मतदान अगले महीने 18 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सकलायन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 446 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। अमृत उद्यान जनता के लिए कल से खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन संस्करण का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह उद्यान 15 सितंबर तक खुला रहेगा।
5: अमृत उद्यान के इस संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। देशज पुष्पों के संग्रह में बालसम, गुल मेहंदी, अपराजिता, बट्टम फूल, गोमफ्रेना, कुल्फा, रुक्मिणी, वर्षा फूल, मोरशिखा, दुपहरिया, लाल साग, कलिहारी और नागफना आदि शामिल है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक 1 मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जो

दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार हैं। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया।
इस दौरान विपक्षी सदस्यों का

पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया, जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे, जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के

0: सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयक को पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani, a review of this week's Parliament proceedings read by Akhila. This was the fourth and final week of the monsoon session of Parliament. During this week as well, opposition members in both the houses created a massive uproar over the police action against students protesting NEET question paper leak and the theft of offerings from the Ram Temple in Ayodhya. On Monday, 10th August, the Rajya Sabha passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill was passed by a voice vote following a brief discussion amid a walkout by opposition parties. It has already been approved by the Lok Sabha during the current session of Parliament. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the bill permits banking records to be produced either in physical or electronic form. Sitharaman clarified that digital payments through the Unified Payments Interface or UPI will continue to remain free for consumers. The bill, which has already been passed by the Lok Sabha last week, was approved by the Rajya Sabha and returned by a voice vote following a brief discussion and the Finance Minister's reply. Following repeated adjournments when the upper house met at 2 p.m, Rajya Sabha approved the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. During the debate, a sharp exchange took place between DMK member P. Wilson and AIADMK's M. Thambidurai over Tamil Nadu's finances. The Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 replaces the 5th June ordinance that provided IT exemption to interest income and capital gains paid by foreign portfolio investors from investments in government securities. Meanwhile, in a conciliatory note, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that the Lok Sabha on Monday, 10th August, that Home Minister Amit Shah will respond to the debate on the students' protests over NEET paper leak. Unrelenting opposition MPs trooped into the well, carrying placards and raised slogans. BJP MP Jagdambika Pal, who was in the chair when the House reassembled at 2 p.m., said the government has agreed to the opposition's demand.

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। आज 15 अगस्त है, यानी आज हमारा राष्ट्र मना रहा है 80वां स्वाधीनता दिवस। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नज़र आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज के सिंकफील्ड कप के 5वें दौर में अमेरिका की वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल, खिलाड़ियों की संभावनाओं, खेल के लिए सरकार की भविष्य की योजना और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है,

0: तीन चौथाई हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, तिरंगा लहराता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है, भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाते उन पर ध्यान दें। हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी की। नेदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। मैच के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी करिश्मा राय।
3: 5 दशक के बाद विश्व कप में पदक जीतने के इरादे से उतरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। अपना दूसरा ही विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले 5 मिनट में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे ही मिनट में वेल्स ने भारतीय सर्कल में प्रवेश किया जब फ्रेड न्यूबोल्ड के पास जैक प्रिचार्ड का शॉट गोलकीपर सूरज करकेरा ने बचा लिया। बाद में भारत ने जवाबी हमला शुरू और हार्दिक सिंह ने 7वें मिनट में टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया। दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को संजय राणा ने गोल में परिवर्तित भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को 11वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर कप्तान हरमनप्रीत ने कोई चूक न करते हुए भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार थी। मैच के 42वें मिनट में हरमनप्रीत ने बाईं ओर दमदार शॉट पर अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 3-0 पर पहुंचा दिया। आखिरी मिनट में वेल्स ने अंतर कम करने की भरसक कोशिश की और 56वें मिनट में सेम वेल्स ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हरमनप्रीत को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में ये कहा जा सकता है कि आगाज़ तो अच्छा है और जब शुरुआत अच्छी हो, धमाकेदार हो, शानदार हो तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है ना।
4: जी बिल्कुल अतर, शुरुआत बेहद शानदार रही है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रंट से आज लीड किया और बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है दिखाया है सभी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अहम मौकों पर गोल किए। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, चाहे वो संजय राणा हो या गोलकीपर सूरज करकेरा हो, हार्दिक सिंह, जर्मनप्रीत सिंह। टीम एफर्ट के साथ साथ ये जीत हमको देखने को मिली है। भारत को अपना अगला मुकाबला 17 तारीख को इंग्लैंड से और 19 को पाकिस्तान से खेलना है, तो इसी लय को बरकरार रखते हुए जीत की कामना करेंगे।
1: बिल्कुल, जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए हमारी शुभकामनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं। और बात क्रिकेट की। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पड्डीकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात

0: जयसूर्या ने लिया। इस मैच के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी।
1: भारतीय क्रिकेट इतिहास के 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने देवदत्त पड्डीकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे सत्र की शुरुआत में केएल राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण खेल जारी नहीं रख सके और 162 गेंदों में 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू हुआ। देवदत्त पड्डीकल ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पड्डीकल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं। उनकी पारी में एक छक्का और 12 चौके शामिल हैं। पड्डीकल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला शतक है, जबकि पंत ने 36 गेंदों में एक छक्के और 3 चौकों के साथ 27 रन जोड़ लिए हैं। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष आज पड्डीकल की अगर बात करें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आज की नाबाद पारी में उन्होंने कई नए कीर्तिमान भी बनाए।
2: जी अतर, और आज की देवदत्त पड्डीकल की पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई है और ऐसा करने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन पाए हैं। इसके अलावा इनसे पहले विराट कोहली ने ODI सेंचुरी मारी है 2019 में, और विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस पर 2012 में शतक जमाया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पहला शतक है भारत
0: की। एक तरह से सलामी है ये तिरंगे।
2: जी जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ वो 2024 के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने तीसरे नंबर पर भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाया है। 19 टेस्ट मैच में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद भी भारत को अपना शतकवीर नहीं मिला था, देवदत्त पड्डीकल ने वो करके दिखाया।
0: बिल्कुल,
2: इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जो उन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये शतक लगाया था।
0: अच्छा, भारत की ओर से आज ओपनिंग बल्लेबाज KL राहुल रिटायर्ड हर्ट हुए, अन्यथा शायद भारत का स्कोर और बेहतर होने की संभावना थी।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि KL राहुल जो है बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उनको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के चलते बहुत सारे क्रैम्प से जूझना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपने खेल आगे ना जारी रखने का निर्णय लिया।
0: बिल्कुल, आपने चर्चा की विशेष कि देवदत्त पड्डीकल ने आज ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने शतक बनाया आज के इस मैच में, 15 अगस्त के दिन उन्होंने शतक बनाया, शतकवीर कहलाए। लेकिन विशेष इसके अतिरिक्त भी ये मैच एक ऐतिहासिक मैच है क्योंकि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है, और भारत का अब तक का सफ़र कैसे रहा ये चर्चा मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ।
2: अतर, 1932 में शुरू हुई ये टेस्ट क्रिकेट की जर्नी भारत के लिए अभी बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है क्योंकि शुरुआती 100 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने सिर्फ 10 में से जीत दर्ज करी थी, लेकिन हम अगर अपने आखिरी के 100 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो उसमें से 56 में से हमने जीत दर्ज करी। कुल मिलाकर बात यह है कि 600 मुकाबलों में 186 मुकाबले जीते हैं, 188 हारे हैं और 224 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं।
0: बिल्कुल, उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। एक रिपोर्ट।
3: ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश द्वारा ली गई 228 रनों के विशाल बढ़त से 67 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जैक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 रन बनाकर सिमटी थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष यदि हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया

0: के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की चर्चा करें तो बांग्लादेश इस समय एक सुरक्षित स्थिति में कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल अतर, क्योंकि आज तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी 67 रन से पीछे है, और अगर कल मुकाबला खेला जाएगा तो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, जो कि बांग्लादेश आसानी से लेने की कोशिश करेगा। और आखिरी दिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर भी बनाती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी उसको चेस करने के लिए। तो ये मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें कई सारे कीर्तिमान भी बने विशेष।
1: जी बिल्कुल, अगर हम एक कीर्तिमान की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने एक नॉन विकेट कीपर होते हुए जो रूट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, उन्होंने 218 जो कैचेस का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूट से कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।
0: और अब शतरंज, सेंट लुई में खेली जा रही ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के 5वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के वैसली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली है। प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलती हुई बाजी ड्रॉ कराई। 10 खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही इस प्रतियोगिता में उनके 5 मैच में अब 3 अंक हो गए हैं और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वैसली ने 3.5 अंकों के साथ बढ़त बना रखी है। इस बीच अमेरिका के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कीमर ने सफेद मोहरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समय पर जीत हासिल की। कारुआना ने 5वें दौर में आर्मेनियाई मूल के अमेरिकी खिलाड़ी लेवोन ओरोनियन को, जबकि विंसेंट ने खराब फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को हराया। इस तरह से अब प्रज्ञानंदा, कीमर, कारुआना और मैक्सिम वचियर लग्रेव 3-3 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सानिया वत्स आज पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट वेंडिगो ओपन स्क्वाश के महिला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रेचल ग्रीनहम से 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सानिया को ग्रीनहम से 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। सानिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त जो टेनर को 11-3, 11-1, 11-2 से हराया। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्त धारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुखरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण

0: संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when

0: It moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On nationalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from nationalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at Independence Celebration.

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a special report on the occasion of 80th Independence Day.
1: Good evening, listeners. I'm Akhila. The country is celebrating its 80th Independence Day today. From the national capital, Delhi, to different parts of the country, the tricolor flag is flying proudly and people across the nation are celebrating this national festival with enthusiasm and pride. Prime Minister Narendra Modi today hoisted the national flag at the historic Red Fort and extended Independence Day greetings to the people of the country. In his address, the Prime Minister spoke about India's development journey, self-reliance, energy security, youth, women, national security and the goal of building a developed nation by 2047, among several other important issues. Let us first listen to the Prime Minister, who spoke from the Red Fort on this historic occasion about Vande Mataram and the spirit of the nation.
2: Azadi ke baad 15 August, Lal Kile par pehli baar Vande Mataram gunj raha hai. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: In this journey of independence, countless brave men and women made the supreme sacrifice. Paying tribute to their sacrifice and dedication, the Prime Minister called upon the people to build the India they had dreamed of.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Amid the celebrations of Independence Day, the Prime Minister also spoke about parts of the country currently facing the challenge of floods. Expressing concern for the affected people, he assured them of all possible assistance.
2: Baad ka prakop raha, bhuskhalan ka prakop raha, anek parivar prabhavit huye, unke dukh dard ko hum bhali bhati anubhav karte hain. Pidit parivaron ko main vishwas dilata hun ki hum aur pura desh unke saath khade hain.
1: But India's aspiration do not end here. The Prime Minister made it clear that the country will no longer limit itself to small dreams. The goals will be bigger and the resolve to achieve them will be even stronger.
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते
1: हैं। A strong economy is essential to turn these big dreams into reality. Highlighting India's rapid economic growth and changing economic landscape, the Prime Minister spoke about the country's growing capabilities.
2: Inhi deshvasiyon ka prayas ka parinam hai ki hum kabhi fragile five mein gire jate the. 12 saal ke bhitar hum ek major economy mein fastest growing economy ban gaye hain.
1: Modern infrastructure is giving further strength to this pace of development. Speaking about the expansion of roads, railways, air connectivity and digital connectivity of the past decade, the Prime Minister said,
2: "हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है।
1: India is also reaching new heights in the field of technology. In this context, the Prime Minister mentioned the country's first hydrogen-powered train and expressed confidence in India's technological capabilities.
2: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: From technological strength to a growing global identity, the message is clear. India must move forward in the world with confidence in its own strength, capabilities and national pride.
2: आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर सरकार है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है
3: और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
1: The Prime Minister also underlined the importance of equal participation of women in the journey towards a developed India. Referring to efforts related to women's reservation, he appealed to political parties to work together and move forward.
3: समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: And who is at the center of this entire development journey? The citizen. With the message of Nagrik Devo Bhava, the Prime Minister called for putting citizens at the heart of national development. Let us listen to his words.
3: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: Finally, the Prime Minister drew attention to the opportunities and possibilities before the country and said that India has the time, the opportunity and the capability to move forward. Now is India's time.
3: मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है, आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे, आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए।
1: Self-reliance remained a major focus of the Prime Minister's address, along with the goal of building a developed India. He said that becoming self-reliant requires not only resources, but also self-confidence, national pride and faith in our own capabilities. He highlighted India's progress in areas such as semiconductor manufacturing, hydrogen trains, nuclear energy and energy security. The Prime Minister said that achieving the goal of a developed India by 2047 will require changes in our work culture, our thinking and the pace at which we work. Through the idea of Saptadhara, he also highlighted several important directions for India's development. These include reforms and initiatives like Gati Shakti, self-reliance in defence sector, transforming India into the blue economy and India's soft power. Now let us turn to different parts of the country where special programs and celebrations have been organised on the occasion of Independence Day. Let us first listen to our correspondent's report on how

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत लिए आपके साथ हूं मैं नूपुर। और जब हम इन गीतों को सुनते हैं ना, तो इन्हें सुनते ही हमारे दिल में देश के लिए प्यार और गर्व की भावना है वो जाग उठती है, क्योंकि देशभक्ति जो है वो सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और आज का दिन देशभक्ति के नाम है, तो जब इस भावना को आवाज़ देने की बात आती है तो कुछ ऐसे गीत हैं जो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और इसी फहरिस्त में है पूरब और पश्चिम फिल्म से गीत जो आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म प्रेम पुजारी 1970 में प्रदर्शित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया, नीरज की कलम से निकला, ST बर्मन द्वारा संगीतबद्ध एक देशभक्ति गीत भी है। आइए सुनते हैं।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत एफएम कोल्ड पर, जहां पर आज गीतों के संग है देशभक्ति का रंग। फिल्म भाई बहन से गीत आप तक पहुंचा, आशा भोसले जी का गाया गीत, लिरिसिस्ट राजा मेहंदी अली खां, म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता। साफ जाहिर है कि गीत बता रहे हैं देश से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो प्यार है सिर्फ शब्दों से हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी हम प्यार देश के प्रति दिखा सकते हैं। जैसे कि सड़क पर चलें तो नियमों का पालन करें, पर्यावरण को बचाएं, ईमानदारी से अपना काम करें, दूसरों को सम्मान दें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। ये सब भी कहीं ना कहीं देशभक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है, मुकेश जी की आवाज़ में, म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन, और गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

फिल्म गंगा जमुना से हेमंत दा के स्वर में देशभक्ति गीत आप तक पहुंच रहा है और बस फिल्म संगीत आज यहीं तक, ठीक 10 बजे सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेंस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। भूकंप और उसके बाद आए झटकों से क्षेत्र में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बाद में उत्तरी सुमात्रा में भी 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 163 किलोमीटर नीचे था। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पाडिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and growing role in regional and global cooperation. U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted the strengthening India-U.S. strategic partnership, while Singaporean President Tharman Shanmugaratnam stressed growing cooperation in skill development, digitalization, sustainability, and advanced manufacturing. French President Emmanuel Macron conveyed his warm wishes on India's 80th Independence Day, while Israeli President Isaac Herzog congratulated President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and the people of India in a message shared in Hindi. In Arunachal Pradesh, five army personnel went missing after a flash flood triggered by heavy rainfall washed away two shelters in the Bang Valley district, while four people died in a major landslide on a road construction site in Upper Subansiri district. According to the State Emergency Operations Centre, both incidents occurred last evening. Rescue teams were rushed to the site for the search operation. In Indonesia, the death toll has risen to 47 after a powerful 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The earthquake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst affected areas. In men's cricket, India were 288 for 2 in their first innings at stumps on day one of the first test against hosts Sri Lanka at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया विदेशों में भारतीय दूतावासों ने देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया उगते सूर्य की दिशा में तिरंगा फहराने का वैश्विक रिले जारी विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत और हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FTH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया समाचार विस्तार से राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और देशवासियों को संबोधित किया श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था लेकिन अब वो दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है
2: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके ईंधन गैस डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया और अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है
2: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है इससे भारतीय कारोबार और निर्यात के लिए बड़े अवसर उपलब्ध हुए हैं
2: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं

0: बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
1: विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों से भी 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहे। सिंगापुर में उच्चायुक्त शिम्पक एम्बुले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़कर सुनाया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने भारी वर्षा के बावजूद तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले चल रहा है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया भर में अनूठे ढंग से उत्सव मनाने की पहल है, जिसमें तिरंगा उगते सूरज की दिशा में विश्व की यात्रा कर रहा है। सूर्यपथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत फिजी के सुवा में रात 1:30 बजे हुई, जहां रिले के पहले पड़ाव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। एक रिपोर्ट।
2: फिजी से शुरू हुई प्रतीकात्मक यात्रा उगते सूरज की दिशा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार पहुंची। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि हर मिशन और दूतावास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिससे अलग अलग समय क्षेत्रों और महाद्वीपों में तिरंगे की एक निरंतर दृश्य यात्रा देखने को मिली। आज सुबह 8 बजे तक यह यात्रा बांग्लादेश पहुंच गई थी। इसके बाद तिरंगा भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव पहुंचा और क्षेत्र में भारत के गौरव और एकता का संदेश दिया। इसके बाद यात्रा पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उज्बेकिस्तान और ओमान पहुंची। सुबह 9:45 पर यह संयुक्त अरब अमीरात और फिर 10:30 पर भारतीय समय अनुसार कतर पहुंची। महज 9 घंटे में तिरंगा प्रतीकात्मक रूप से प्रशांत क्षेत्र की सुबह की पहली किरण से पश्चिम एशिया तक पहुंचा। इस दौरान 21 देशों और भारतीय मिशनों तथा दूतावासों को एक साझा राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से जोड़ा गया। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव रणधीर जायसवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस विशेष पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि सूर्यपथ तिरंगा अभियान दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का एक अनूठा तरीका है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और दुनिया भर में लोगों के उत्साह और भागीदारी ने इस यात्रा को विशेष बना दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिकों, मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह तथा भूटान के प्रधानमंत्री त्सेरिंग टोबगे शामिल हैं। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। दक्षिण लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 11 लोगों की

0: मारे जाने की खबर है। लेबनान के राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य देर अल जहरानी गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 घायल हुए हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। विदेशों में भारतीय दूतावासों ने देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। उगते सूर्य की दिशा में तिरंगा फहराने का वैश्विक रिले जारी। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत और हॉकी में भारत ने नीदरलैंड्स में खेले जा रहे FTH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। इसके साथ ये विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अखिला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day. Indian missions abroad celebrate Independence Day with patriotic fervor in a unique move, a global relay of hoisting of tricolor underway following Path of Rising Sun. World leaders extend greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. And in hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in Netherlands. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said, "Over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights."
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Indian Embassies and Consulates marked India's 80th Independence Day today with flag hoisting ceremonies, cultural programs, and community gatherings. Thousands of Indian nationals and diaspora members joined the celebrations in Singapore, China, and Hong Kong, underscoring India's strong people-to-people ties with the region. In Singapore, High Commissioner Shilpak Ambule hoisted the tricolour in front of more than 2,500 diaspora members. The ceremony included the national anthem, Vande Mataram, patriotic songs and excerpts from President Draupadi Murmu's address. In Beijing, Ambassador Vikram Doraiswamy hoisted the tricolour at the Indian Embassy along with a large diaspora gathering despite heavy rain. He later read President Murmu's address and presented prizes to winners of Independence Day competitions. In Hong Kong, the Indian Association hosted a gala attended by Chief Executive John Lee Ka Chiu, Consul General

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 15 अगस्त की आज की ये रात जाहिर है बाकी रातों जैसी नहीं होती। दिन भर तिरंगे की शान, राष्ट्रगान की गूंज, बच्चों की मुस्कान और देशभक्ति के गीतों से सजा वातावरण अब धीरे धीरे शांत हो रहा है माना, लेकिन आजादी का एहसास वो अभी भी हवा में घुला हुआ है। कहते हैं रात जितनी शांत होती है मन उतनी ही गहराई से सोचता है, और आज की रात उन अनगिनत वीरों को याद करने की रात भी है जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने सपनों को खुलकर जीते हैं और अपनी बात बेझिझक कह पाते हैं। कुछ दीप शहीदों के नाम जलाए रखना, कुछ गीत वतन के भी गुनगुनाए रखना, आजादी यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, इस एहसास को हमेशा दिल में बसाए रखना। मैं हूं नूपुर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हर सिंगार। अगले आधे घंटे तक हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जिनमें देश की मिट्टी की महक है, इंसानियत का संदेश है और है मिठास दिलों को जोड़ने वाली। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म लीडर का यह गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

15 अगस्त की रात, अब जबकि शहर की रोशनियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब भी तिरंगा जो है ना वो उतनी ही शान से लहरा रहा होता है जैसे याद दिला रहा हो कि आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी भी है। आजादी सिर्फ सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं, आजादी उस विश्वास का नाम भी है जहां हर भाषा का सम्मान हो, हर धर्म की खुशबू हो और हर दिल में भारत बसता हो। हम अलग अलग सुर हैं लेकिन मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं जिसका नाम है भारत। फिल्म मतलबी दुनिया से गीत पहुंच रहा है आप तक, जय जय भारत देश कहता हुआ, आवाजें तलत महमूद, अमीर बाई कर्नाटकी और साथियों की।

0: मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: माना आज का दिन देश प्रेम का दिन है, लेकिन देश प्रेम क्या सिर्फ तिरंगे में नजर आता है? नहीं, वो तब भी दिखता है जब कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरा करता है, और तब भी जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद को हाथ बढ़ाता है, एक नन्हा सा पौधा लगाता है ताकि वो बड़ा होकर पेड़ बन जाए, और तब भी जब हम अपने देश की अच्छाइयों पर गर्व करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। आज का भारत नई सोच का भारत है, स्टार्टअप्स का भारत है, चांद तक पहुंचने वाला भारत है, दुनिया को डिजिटल रास्ता दिखाने वाला भारत है। लेकिन इस नए भारत की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो उसी आज़ादी में हैं जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने साहस से सींचा था।

भारतीय सिनेमा में ना देशभक्ति के गीतों की एक लंबी परंपरा रही है। कुछ गीत हमें जोश से भर देते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना, और कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो आंखें नम कर देते हैं, जो अभी आप सुनने वाले हैं, और कुछ गीत बस चुपचाप दिल में उतर जाते हैं। मगर अच्छे गीतों की यही खूबी है कि वो हमें जोड़े रखते हैं। फिलहाल आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पहुंच रहा है हकीकत फिल्म से ये तराना, जो आंखें नम कर जाएगा।

15 अगस्त की रात अब विदा लेने को है, मानो कह रही हो तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उम्मीद है इन गीतों ने आपके मन में अपने देश के लिए प्रेम और गर्व का एक दीप जरूर चलाया होगा। देश सिर्फ सरहदों से नहीं, दिलों से भी बनता है जब हर नागरिक अपने हिस्से की रोशनी जलाता है, तभी भारत और भी चकमकाता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का सपना देखें जहां सम्मान हो, संवेदनाएं हो और हर दिल में तिरंगे के लिए वही प्रेम हो जो आज की रात इस हवा में महसूस किया जा रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today, besides taking the main economic and business stories, we'll also be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil.
1: नमस्कार, आप सभी का मार्केट मंत्रा में स्वागत है. और आज हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ है शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
0: वार्म वेलकम शिशिर.
2: थैंक यू, नमस्कार.
1: और श्रोताओं, आप कॉल करने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-4-0481, और तीसरा नंबर है 2371-7106. और इन नंबर से पहले आप 011 लगाना ना भूलें. और फिलहाल मुख्य समाचार.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्स 7-पॉइंट रिफॉर्म फ्रेमवर्क और सप्तधारा फॉर इंडियाज डेवलपमेंट. हाइलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एज की एस्पेक्ट्स अमंग अदर्स. डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क्स डिक्लाइन ओवर 0.5% दिस वीक आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव वीकली गेन्स. And oil prices rise over 4% this week on renewed supply risks.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को गति देने के लिए सप्तधारा का खाका पेश किया. इसमें विनिर्माण, कृषि, प्रौद्योगिकी, हरित और नीली अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया. लगातार 2 सप्ताह की बढ़त के बाद इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज. और आपूर्ति को लेकर नए जोखिमों के बीच इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की तेजी आई.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Upon his arrival, for the first time, the national song Vande Mataram was rendered at the Red Fort. Thereafter, the Prime Minister hoisted the national flag, following which national anthem was sung. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called as

0: Saptadhara. The first stream outlined by the Prime Minister is manufacturing. He said the second power of this Saptadhara is agriculture and food production. The third is technology and innovation. And the fourth is Gati Shakti. The fifth, defense capabilities. The sixth power is the green economy and blue economy. And the seventh stream of Saptadhara is India's soft power.
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5 सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है. प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है, खादी तथा ग्रामीण औद्योगिक उत्पादन करीब 5 गुना हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सफलता 7 गुना तक है. उन्होंने कहा देश में आधुनिक रेलवे कोच तैयार करने की क्षमता 21 गुना बढ़ चुकी है और देश मोबाइल विनिर्माण 33 गुना बढ़ा चुका है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले के मुकाबले 4 गुना हो चुकी है. उन्होंने ये भी कहा कि देश में अब तक डिजिटल लेन देन 100 गुना बढ़ा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक भारत करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है. उन्होंने कहा कि इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और भारतीय कारोबारियों के लिए निर्यात करने में काफ़ी आसानी हुई है. श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उत्पादों की पहुंच पूरे विश्व में हो.
0: जशर, इन द मीन टाइम द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हाइलाइटेड एंड गेव द क्लैरिन कॉल फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस दैट इज एज इट मूव्स फॉरवर्ड टू विकसित भारत 2047. व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग from PM's speech on this clarion call?
3: Apart from the 7 strength, what we call as the Saptadhara ki shaktiyan, he also talked about 7 key, what we call as the aspiration, or rather I would say that changing the scale of the ambition or the aspiration. What are those? Number one is the 50 companies in the Fortune 500. So at this moment, we have 9 Indian companies. Out of 9 Indian companies, 5 are the PSUs and 4 are from the private sector. They are part of the Fortune 500. Now he wants that number to be increased to 50. The second thing he talked about, then Indian bank in top global banks. So one of the big problem we always have been talking about, that we are such a big country, we have so many banks, but when we talk about the global banks, none of our bank are featuring in the top 5 or top 10 banks. The third, he talked about an Indian pharma company among the world's top 5. And this is critical, especially when we have become what we call as the pharma hub for the world or pharma to the world. The fourth one is that Indian law or rating agency achieving global leadership. Fifth one is an Indian consulting or accounting firm among the world top firms. If you can remember, last year we were talking about the Desi firms taking over the top 4, big 4, what we call as, how they can be groomed into that. So now he is also talking about that. And finally, he talked about that an Indian technology company among the world's top companies. Of course, our technology companies are in what you call, say, 100, 1 to 20 or 1 to 30, but he wants much higher ranking for them. And the final one is that a brand that world recognizes with enthusiasm, where it hears the name India, that is Make in India, Made for the World. So these are the 7, apart from the strength, which is he called as the Saptadhara ki Shaktiyan. These are the 7 aspirational achievement or the target which you want to achieve that.
2: Manish हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. मनीष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका.
0: हेलो
2: मनीष, प्रश्न पूछिए आपका.
4: जी, मेरा प्रश्न ये है अगर कोई 20 लाख कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और डेढ़ साल के बाद उसको अगर 1,20,000 का फायदा होता है तो वो कैपिटल गेन में क्या रखना पड़ता है या सिर्फ ये जो प्रॉफिट का जो पोर्शन है 1,50,000 उसको रखना पड़ता है, कौन सा है?
3: देखिए, आप जब घर खरीदते हैं और घर बेचते हैं उसके बाद आपका जो मुनाफा होता है उसको इनकम टैक्स की धारा 54E के तहत 54C के तहत उसकी गणना की जाती है और उसमें आपको ये सहूलियत दी जाती है कि 3 वर्षों के भीतर उसको आप नए घर के निर्माण में जो है वो कर सकें। इन 3 वर्षों के दौरान आपको वो एक विशेष खाता होता है विभिन्न सरकारी बैंक और निजी बैंकों में वो उपलब्ध है जिसको हम लोग कैपिटल गेन अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं और उस 3 वर्ष के भीतर आपको निवेश करना होता है, कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर बना बनाए घर की बात करें। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि ना केवल घर बल्कि अगर सोने से भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर अगर आपको शेयर बेचने का भी फ़ायदा हुआ, अगर आप उसको घर में निवेश करते हैं तो आपको कैपिटल गेन से छूट मिल सकता है।
2: शिशिर, आज प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान किया है, उनके लिए ये भी कहा कि आप प्रयास कीजिए, आपको विदेश में मौके मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको निर्यात करने के, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के जो उत्पाद हैं वो पूरे विश्व में पहुंचे।
3: निश्चित तौर पर देखिए, इस समय में अगर हम अपने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों की बात करें जिनकी अगर पूरी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 40% से ज़्यादा का है, निर्यात में उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक है। अब दिक्कत यह है कि ये इनके लिए विश्व बाजार में अपने आप को पैठ बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के बाद आप क्या करते हो, तो एक उनके लिए क्या कहते हैं कि उनको एक प्रोत्साहित करने की कोशिश है कि आप अच्छा कर रहे हो। आप देखिए कि बीते कुछ समय में चाहे वो आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप पीएम स्वनिधि की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिससे कि सूक्ष्म लघु और मझौले उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब उनके लिए है कि वैश्विक बाजार में आप और अपनी पहल मजबूत करें। आप अभी जो है केवल बड़ी कंपनियों के लिए आप एक कहते हैं ना कि उनको आप सप्लाई करते हो, लेकिन आप खुद विश्व बाजार में कैसे आप पैठ बढ़ा सकते हो वो उसका आह्वान है। और यहां पर जो एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा जो उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाजार में दुनिया के तमाम कंपनियों में जब आप सामान बेचते हैं वहां पे एक ही चीज जो सबसे ज्यादा देखी जाती है कि आपके गुणवत्ता क्या है और उसके साथ देखी जाती है कि आपकी प्रतिस्पर्धात्मक लागत क्या है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर आप कम करते हैं, गुणवत्ता अगर आप बेहतर बनाए रखते हैं तो बाजार में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के संदेश का ये आशय था।
0: We're taking your calls live on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. Do give us a call, as Gopal has called us from Mumbai. A warm welcome, Gopal.
5: Namaskar, Mark Kamal team ko. Azadi ke din ki shubhkamnaye. Sir, mera sawal ye hai ki koi equity agar girta hai to uska koi limit nahi rehta hai. मान लीजिए अभी मेरे पास, मैंने 1800 पे स्टॉक बाय किया है, आज वो स्टॉक गिर गिर के 500 तक लुढ़क गया है। अगर मैं टोटल अपना तीन साल पहले 10 लाख रुपए मार्केट में लगाया है, आज मैं अगर स्टॉक बेचता हूँ तो मेरे को 2 लाख भी हाथ में नहीं आ रहा है। स्टॉक जो गिरते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, गिरते ही जाते हैं। 1800 का बाय किया है, आज वो 500 पे चल रहा है।
3: गोपाल जी देखिए, रोज के आधार पर जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर, कि आप कितना नीचे जा सकते हैं और आप कितना ऊपर जा सकते हैं, वो रोजाना आधार पे है। अब ये नहीं है कि अगर आपने देखें कि जो आपने भाव का जिक्र किया कि 1800 का जो था वो 300 पे आ गया या 500 के आ गया, वो हो सकता है और भी नीचे जाए, बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है और भी नीचे जाए, ये बाजार की प्रकृति है। रोज के आधार पर रोकने की प्रवृत्ति जरूर होती है कि एक 5% के ऊपर पहला सर्किट है, फिर 10% है, 15% है, 20% पे फिर ट्रेडिंग रोक दी जाती है, वो सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो रोजाना के आधार पर है। उसमें लगातार अगर 10 दिन तक गिरावट ही होती जा रही है, जो कि कई ऐसे शेयरों में हमने देखा, हमारे शेयर बाजार में लगभग 7100 कंपनियां सूचीबद्ध हैं और इनमें से हम चर्चा अक्सर 30 शेयरों की तो करते हैं जो कि सेंसेक्स के हैं, या उन 50 शेयरों की करते हैं जो निफ्टी के हैं, लेकिन जो बाकी 6000 कंपनियां उनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम लोग 54 शेयर भी कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं, उनके भाव, किसी के भाव 20 रुपए थे जो घट करके 10 पैसे भी आ गए। तो ये एक बाजार की प्रकृति है, रोजाना के आधार पर जरूर ब्रेक लगाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसको कहां पे रोकना है ये बाजार तय नहीं करता।
2: जयपुर से जितेंद्र एक बार फिर हमारे साथ में, जितेंद्र जी आपका प्रश्न पूछिए।
6: हाँ सर, ये जैसे पिछले 3 महीने से हम आईटी से आईटी के निफ्टी 50 के आईटी में जो है ना एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी तो कंपनी है, नाम तो ले नहीं सकते।

0: तो एक दो में कर रहे हैं, और एक प्राइवेट बैंक है निफ्टी 50 में ही है जिसका दाम काफी गिरा है। अब क्या रीजन से गिरा, हम तो दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, 700 रुपया भाव है, 725 की, मैं उसमें भी SIP कर रहा हूँ, तो क्या ठीक है?
1: देखिए, IT कंपनियों में मुझे लगता है कि जो बीच में एक माहौल बना था कि AI की वजह से, और खासतौर पे दक्षिण कोरिया और ताइवान में जिस तरीके की तेजी आई थी, उसके बाद IT कंपनियों में काफ़ी गिरावट हमने देखी थी। अब वहाँ पर स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। हाँ, रोज़ाना के आधार पर या अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो कभी कभी उनमें गिरावट भी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि का बना करके चलते हैं, यानी कि 3 से 5 साल का समय लेकर के चलते हैं, तो IT क्षेत्र काफ़ी अच्छा मुझे अभी आ रहा है। दूसरा जो आपका प्रश्न था बैंक को लेकर के, देखिए बैंकिंग में खासतौर पे एक कहते हैं ना कि जब महंगाई दर बढ़ रही है तो ब्याज दर बढ़ने का खतरा है, और ब्याज दर बढ़ेगा तो इससे जो है भले ही आम उपभोक्ता को जो है वो नुकसान हो, लेकिन बैंकों के लिए वो एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर के बाद वो स्थिति शायद आए, तो उस बीच में बैंकों के बीच में हमने देखा कि सरकारी बैंकों की स्थिति अच्छी रही, निजी बैंकों में गिरावट आई है। जैसा कि आपने खुद कहा कि आपने एक सरकारी बैंक के शेयर ले रखे हैं, निजी बैंक के आपने शेयर ले रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको चिंता भी करने नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको समय दे दीजिए। और आपकी बहुत अच्छी रणनीति है कि आप उसमें SIP कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे किस्तों में निवेश कर रहे हैं, और हमेशा हम अपने श्रोताओं को यही कहते रहे हैं कि मुनाफा भी किस्तों में कमाइए और निवेश भी किस्तों में कमाइए, एक साथ सब कुछ लगा देना या बेच देना उचित नहीं।
2: दिल्ली से कन्हैया लाल हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, प्रश्न पूछिए
3: जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा गोल्ड परचेज करके रखा था, अभी बताइए कि इसका गोल्ड को अब सेल करने का कुछ हम सोच सकते हैं?
1: देखिए, सोने को लेकर के मुझे लगता है कि सोने को में पिछले दिनों काफ़ी गिरावट हमने देखी, जब 170-180 के भाव से नीचे गिरना शुरू हुआ, 140 तक आ गया, 145 तक आ गया। और सोने को लेकर के ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में जिस तरीके की मजबूती आ रही है, उसके पास डॉलर में जैसे जैसे मजबूती आ रही है, सोना वैसे वैसे कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं, अगर आपकी मूल से अगर आपको घाटा नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए। सोना एक ऐसा चीज़ है जो कि एक तय समय के बाद अच्छा खासा मुनाफा देता रहा है, सोने की एक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि दुनिया में सोने की आपूर्ति बहुत ही सीमित है, जितना सोना है उपलब्ध है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें आप समय पे बने रह सकते हैं। दूसरा, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं था तो माफ़ी चाहेंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।
4: प्रेम फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ। प्रेम, अ वार्म वेलकम।
5: सर, आप सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार
5: साहब
1: जी।
5: सर, मेरा प्रश्न ये है कि माइक्रो लेवल पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी बॉडी, कोई अथॉरिटी जो प्रोवाइड करे, सर किस प्रकार से आने करे?
1: देखिए, ऐसी कोई संस्था तो वैसे नहीं है जो कि बहुत ही छोटे निवेशकों के लिए जो आपकी मदद कर सके। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप उनसे सलाह लेने की बात करते हैं, तो जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल समय समय पर सलाह देता रहा है कि इस समय सोने के भाव में किस तरह का चलन देखने को मिल रहा है, तो उनके कमेंट्री के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा कई बुलियन एसोसिएशन हैं, वो भी टाइम टू टाइम उनके जो कमेंट आते रहते हैं, उनकी कमेंट्री आते रहती है, उन पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। और बाकी रहा सवाल कि सोने को लेकर के, जैसा मैं भी कह रहा था कि दुनिया में सोने की आपूर्ति सीमित है, एक तय समय के बाद उसमें एक कहते ना कि एक मुनाफे होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब ये समय कितना लग सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डॉलर जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, सोना वैसे वैसे कमज़ोर हो रहा है, तो ये भी एक हैरानी की बात है कि जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, उसके बीच में भी सोना कमज़ोर हुआ है, जो कि आमतौर पर नहीं होता रहा है। तो इस समय में मुझे लगता है कि आप सोने में अगर निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी कर करके एक टाइम होराइजन, अगर आपको ज़रूरत अभी नहीं है 5 साल 7 साल के लिए लेकर के चले, तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो एक बेहतर विकल्प होगा।
2: और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लगातार दो सप्ताह की बढ़त के बाद इस हफ्ते भारत के घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। मध्य पूर्व में बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों ने शेयर बाजार में दिलचस्पी कम दिखाई। इस सप्ताह निफ्टी 50 में 0.8% की गिरावट आई और यह 24,366 पर बंद हुआ, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.6% गिरकर 78,009 पर आ गया था। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपया कल अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.42 पर लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, लेकिन एक सप्ताह पहले के मुकाबले इसमें 0.2% की गिरावट आई। और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ हैं। शंकर, सवाल पूछिए।
6: नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। सर, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं।
2: जी, आपको भी।
6: मेरा सवाल है कि अभी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है 20%, तो उससे हमारा इंपोर्ट पे इफेक्ट आना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, बट आवर इंपोर्ट बिल इज नॉट रिड्यूसिंग। व्हाट इज द रीजन? एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर फॉरेक्स रिजर्व। जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग दैट वे, एंड डॉलर इज इंक्रीजिंग, रुपी इज फॉलिंग। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्या वजह क्या है कि हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले? क्योंकि मार्केट ड्रिवन है मोर और लेस। एथनॉल के प्रयोग से डोमेस्टिक सप्लाई से हमारा फ्यूल आ रहा है थोड़ा सा 20%, विच इज क्वाइट अ लॉट, बट हमारा इंपोर्ट नहीं गिर रहा, हमारा डॉलर नहीं बढ़, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर नहीं बढ़ रहा, क्या क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये अच्छे से? थैंक यू।
1: शंकर जी, रहा सवाल कि एथेनॉल की आपूर्ति तो बढ़ी लेकिन तेल की खपत भी बढ़ी। आप गाड़ियों की संख्या देखें, हर महीने जितनी गाड़ियां बिकती हैं, अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं, चाहे वो हम सियाम के आंकड़ों की बात करें या फाडा के आंकड़ों की बात करें, हर महीने लाखों लाख गाड़ियां बिक रही हैं। और गाड़ियों में आपने बिल्कुल सही कहा कि ई व्हीकल की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। ई व्हीकल बिक रहे हैं लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जब खपत बढ़ी हो, जहाँ पर आप पहले एक खर्च खपत कर रहे थे, आप डेढ़ खपत कर रहे हैं, दो खपत कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा एथेनॉल है, तो उससे आपके लिए तो इम्पोर्ट का बिल तो बढ़ेगा। ये भी ध्यान में रखिए कि आज रुपया जो है वो कमज़ोर है, डॉलर के भाव काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके कई देशों के साथ जो आपका भुगतान होता है वो डॉलर में होता है, तो उसका भी असर आपको देखने को मिलता है। अब रहा सवाल कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही खुली किताब की तरह की बाज़ार की शक्तियाँ हैं, और बाज़ार में जितनी ज़्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी उसका असर पड़ेगा। आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन जो कल रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले कल जारी किया है, वो भी $8 बिलियन के ऊपर में है। तो ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही कर रहे हैं कि हमारा रुपया इसलिए कमजोर है क्योंकि उसकी मांग और बाजार की परिस्थितियां उनके विपरीत में हैं।
4: मूविंग ऑन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हैज नोटिफाइड द फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट DS रूल्स 2026. It enables eligible taxpayers to declare certain undisclosed foreign assets, undisclosed foreign income, or undeclared foreign assets on payment of a specified tax or fee. The scheme will come into force from tomorrow, and the last date for filing a declaration under this scheme is December 31, 2026. No declaration can be filed after this date. The Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 is a one-time voluntary disclosure scheme. Also, the US President Donald Trump announced that the US will soon declare the Strait of Hormuz an official American territory following what he described as a near defeat of Iran's weakened military. Trump had earlier claimed that the United States exercised total control over the Strait of Hormuz. However, soon after Trump's remarks, Iran rejected his claims, stating that the strategic waterway remains blocked and will not be reopened until Tehran's conditions are accepted. So where do we stand? This
1: very
4: game
1: difficult
4: continues
1: to very be difficult to say
4: afresh every day.
1: I mean, you can't predict that what is going to happen tomorrow. I mean, when Mr. Trump is talking about something, or when the Iranian president is talking about something, it's really very. From a market point of view, or from even from the economic analyst point of view, every day we come to office and we say, okay, this has happened, and what he is saying. again in the evening or late in the night we come to know that, oh, this is not going to happen, there is no peace talk, we are going to drop a bomb or something like that. So it's a very, very unpredictable situation. Both parties are very, very unpredictable. And the one thing which is very important here, that we do not get official version from Iran on a regular basis, because there are so many restrictions on the internet and the other things. So that is also giving a lot of speculation in the market. And of course, here there we are also finding a lot of changes in the statement. So it's a completely unpredictable situation, and that is affecting the stock prices as well as the crude oil prices.
2: Okay.

0: Oil prices increased 4% week on week as renewed US-Iran tensions, uncertainty over the Strait of Hormuz, and attacks on Libyan energy facilities kept global supply concerns in focus. Brent crude traded at $87.12 per barrel, up 4.27% from last Friday's close. U.S. benchmark West Texas Intermediate traded at $81.52 per barrel, up 4.27% from a week earlier. As you very rightly mentioned, Shishir, the speculation will keep the prices in an uncertain zone. At times it goes up, at times it comes back, or it currently seems that it's going to go up.
1: Yeah, I mean, we have seen that it went down $80 a barrel. Yes. Now we are approaching $90 a barrel. So that's a very difficult situation. I mean, the market is reacting on a day-to-day event kind of thing. So one statement is there, then suddenly you will find that the oil prices are on boil. When there is a something like peace talk kind of thing, that P word also gives some kind of calmness into the oil market. Mm. So
0: however short-lived it may be.
1: I mean, we do not know that what kind of trend will be there.
2: Shishir, jab bhi aap se baat karna hota hai, toh gharilu share baaz का जिक्र ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस अगस्त महीने को ही देखें तो मार्केट में हमने देखा कि पहला हफ्ता थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हुए देखा, फिर गिरावट आई, फिर उसमें गिरावट आई। अब लगातार ये एक ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी कहीं दिख नहीं रही है, जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि प्रिटेंड नहीं कर पा रहे कि कल क्या होगा।
1: देखिए, कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तो हमारे यहाँ पड़ेगा ही। और बीच में जैसे ये चर्चा बहुत होती थी कि विदेशी निवेशकों ने कितने पैसे निकाले, अभी भी वो स्थिति है, लेकिन हमारे लिए अभी अगर आप देखें, बड़ा एक महत्वपूर्ण जिसको कहें कि घटनाक्रम है कि रिजर्व बैंक ने FCNR(B) डिपॉजिट की बात की और उसको 30 सितंबर तक के लिए उन्होंने रखा था। उसमें करीबन $50 बिलियन से ज़्यादा की रकम आई और उसको कहा गया कि अब हम 31 अगस्त को यानी कि एक महीने पहले ही उसको रोका गया। तो दो ट्रेंड देखिए कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सवाल डेट इंस्ट्रूमेंट की है या डिपॉजिट की स्कीम की है, वहां पर वो पैसा डॉलर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन निवेशकों को, इन जमाकर्ताओं को एक ऐसा चाहिए जहां पर मूल और ब्याज दोनों में कहीं ना कहीं एक गारंटी मिले। शेयर बाजार वो गारंटी नहीं देता और उसकी वजह से वो पैसा निकल रहा है। हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने काफी अच्छा निवेश किया है। अपने घरेलू वित्तीय कंपनियों की बात करूं, बहुत अच्छा निवेश किया, और सच पूछिए तो उनकी वजह से बाजार में उस तरीके की गिरावट नहीं हुई जो पहले हम देखा करते थे। पहले कहते थे कि अगर अमेरिका में एक छींक आ गई तो भारतीय शेयर बाजार को बुखार लग जाता था, ये एक पुरानी कहावत चलती थी। इसका मतलब होता था कि हमारी निर्भरता विदेशी संस्थागत निवेशकों पे काफी ज्यादा थी। बदली है, लेकिन अभी हम अकेले कहें कि उसको संभाल के चल लेंगे नहीं है। तो निवेशकों के लिए इस समय सबसे अच्छा ये है कि अभी शेयर बाजार में IPOs कई आ रहे हैं, उनमें अगर वो पैसा लगाएं, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, हर रोज दो दो तीन तीन IPOs खुल रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं तो वो बेहतर रहेगा।
0: In the US stocks, the S&P 500 fell 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average dropped 107 points, or 0.2%, and the Nasdaq Composite lost 0.3%. Shishir, very briefly, is there no silver lining on the horizon which could give market sentiments a boost?
1: Only silver lining is that when we will have peace. Okay. And that is something...
0: So what is your expectations from the market in the coming week?
1: I think there will be that ups and down will continue. But of course, as I always say, that there are value stocks available at lower price. It's a good time to make investment, but it only in the smaller installment.
2: Shishir, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, नमस्कार।
0: Thank you, Shishir, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils a 7-point reform framework, or Saptadhara, for India's development, highlights manufacturing, agriculture, technology, green and blue economy as key aspects among others. Domestic equity benchmarks decline over 0.5% this week after 2 consecutive weekly gains. And oil prices rise over 4% this week on renewed supply risks. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good
2: Namaskar.
0: Night.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश

0: निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं नूपुर और समय है प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा की क्लासिक फिल्म से कुछ क्लासिक सदाबहार नगमे ऐसे। फिल्म है शोला और शबनम, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, एक रोमांटिक ड्यूएट है ये, संगीत खयाम जी का है, पहुंच रहा है आप तक। इसके बाद सुनिएगा ताजमहल फिल्म में इन्हीं दो आवाजों को।

0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं हूं नूपुर और प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत की आखिरी पेशकश आप तक पहुंचाने वाली हूं। फिल्म तुमसा नहीं देखा से एक प्यारा सा तराना आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इससे पहले जो गीत आपने सुना कश्मीर की गली फिल्म का, उसमें भी यही दो आवाज़ें थी। और उससे पहले फिल्म दिल तेरा दीवाना से आपने जो रोमांटिक ट्यूट सुना उसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। तो फिलहाल इतना ही, आइए ये गीत सुनते हैं और उसके बाद ठीक 12 बजे सुनिएगा समाचार। फिलहाल नमस्कार।

देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

सकोगे कह न सकोगे कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, हाँ देखो कसम से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है और परिपक्व हुए हैं। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। फिजी में भारत के उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले ने एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे की भावना को आगे बढ़ाया और दुनिया भर में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा है। दूरसंचार विभाग पुणे में कल से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव है। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। इसमें सार्वभौमिक, सार्थक, किफायती, टिकाऊ और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए ICC इकोसिस्टम विकसित करने, विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तथा डिजिटल कौशल और क्षमता विकास जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has announced that the government will provide free online coaching to youth from poor and middle-class families for various public examinations.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
2: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on the occasion of the 80th Independence Day, the Prime Minister also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in next 1 year. Mr. Modi said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
2: The Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights. He said a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. Prime Minister Narendra Modi urged all parties to support the implementation of the women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. Reports of Independence Day celebrations have also come from all the states and UTs. Chief ministers, governors, lieutenant governors led the celebrations of the state capitals. Special programs were also held. World leaders in foreign missions have extended Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage and growing role in regional and global cooperation. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders for their greetings, including President Macron and Maldives President Dr. Mohamed Nuzu, Nepal's Prime Minister Balendra Shah, his Bhutanese counterpart Chering Tobgay and Slovakian President Peter Pellegrini. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded today, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said in a social media post that Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. The relay ended with a flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. President Draupadi Murmu hosted a state reception at Rashtrapati Bhavan on the occasion of the 80th Independence Day. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, former President Ramnath Kovind, Chief Justice of India Suryakant, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Ministers, diplomats, eminent people from different walks of life and beneficiaries of various government programs attended the reception. Amrit Udyan will be open to the general public from today till the 15th of next month. Our correspondent reports the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. In Indonesia, the death toll has risen to 47 after a powerful 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores yesterday. The earthquake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst affected areas. Hundreds of buildings in the region have been damaged by the quake and the dozens of aftershocks had followed. Officials said people are still believed to be trapped inside buildings in several affected areas. The government

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी। जी हाँ, कहानी। हम सबकी जिंदगी एक कहानी ही तो है। जरा अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, हजारों कहानियां यहां वहां बिखरी मिल जाएंगी, लेकिन कोई कोई कहानी ऐसी भी होती है जो हर दिल में उतरकर अमर हो जाती है। उस जिंदगी की कहानी जो किसी के काम आ जाए, जो किसी पर कुर्बान हो जाए। वो कहानियां ही सही मायने में कहानियां होती हैं। और सच पूछो तो जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए अपने वतन की बेदी से बढ़कर पावन कोई और जगह हो ही नहीं सकती।

भारत की बात, भारत के वीर सपूतों की गाथा दोहरा रहा है भारत देश का हर जर्रा। आजकल हवाएं स्वतंत्रता दिवस की खुशबू से महक रही हैं और आजादी के परवानों के लहू से लाल दिखाई दे रही हैं, जो आजादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हीं परवानों में एक वो दीवाना था जो कह गया, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती ये साहिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना।

वो 1897 का दौर था। भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई कराह रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता के खुले आसमान में सांसें लेने को तरस रहे थे। रह रह कर धीरे से देश के किसी कोने से आजादी की कोई चिंगारी फूटती थी, लेकिन उसका उजाला परतंत्रता के काले साए को पूरी तरह से मिटा पाने में सक्षम नहीं दिख रहा था। उन्हीं दिनों 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के पिता मुरलीधर भगवान राम के भक्त थे। ये बच्चा बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद भगवान ने प्रसाद स्वरूप उनकी झोली में डाला था। सो मुरलीधर ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा राम प्रसाद। इस नन्हे फरिश्ते के आने से मुरलीधर और उनकी पत्नी मूल रानी की जिंदगी में मानो बहार आ गई।

बच्चे के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने बोला, बच्चे की उंगलियों में एक चक्र का निशान है जिससे ये पता चलता है कि ये बालक अल्पायु होगा। हाँ, लेकिन अगर ये लंबे समय तक जिंदा रहा तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह दुनिया में जाना जाएगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनते ही माता पिता के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पहला बच्चा भगवान को प्यारा हो चुका था और अब वो अपने इस जिगर के टुकड़े को खोना नहीं चाहते थे। जब राम की तबीयत खराब हुई तो माता पिता ने हर संभव प्रयास किया अपने लाल को बचाने की। डॉक्टर, वैद्य, कोई कसर ना छोड़ी। आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थना और दुआ कबूल हुई। उनका बेटा राम जब ठीक हो गया तो माता पिता की आंखों में अपने प्यारे बच्चे को लेकर नए नए सपने तैरने लगे। सभी माँ बाप की तरह वो भी यही सोचा करते थे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।

धीरे धीरे वो बालक राम बड़ा होने लगा। बाल सुलभ घृणाएं करना, शरारतें और जिद करना, किसी के भी बागीचे से चुपके से फल तोड़ लाना, ऐसी शरारतें राम की दिनचर्या में शामिल थी। उसका मन पढ़ने से ज्यादा खेलने में लगा रहता था। यूं लगता था कि जैसे वो थोड़े पलों में एक बड़ी जिंदगी जी लेना चाहता हो। माँ अक्सर समझाती, बेटा राम ऐसे मत किया करो, ये गलत आदत है। उस वक्त निसंदेह माँ की सीख का असर राम पर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में उतरता ही रहा होगा। स्कूल में हिंदी की वर्णमाला में जब उसे उल्लू पढ़ाया जाता तो राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो इसका विरोध भी किया करते थे। आखिरकार हार कर उनके पिता ने उन्हें उर्दू स्कूल में दाखिल करवा दिया।

14 साल की उम्र से ही राम चुपके चुपके उपन्यासों और गजलों की किताबें पढ़ा करते थे। शायद यहीं से उन्हें शेर व शायरी लिखने की कला मिल गई। उर्दू में मिडिल की परीक्षा में जब पास नहीं हुए तो अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही पड़ोस के एक पुजारी से पूजा पाठ की विधि भी सीखने लगे। पुजारी एक विद्वान और सुलझे हुए इंसान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी राम के जीवन पर पड़ा। बालक राम जब किशोरावस्था के दहलीज पर पहुंचे तो उनमें अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। सारी शरारती छूट चुकी थी और कमजोर शरीर सुंदर हो चुका था। यही वो समय था जब देश प्रेम से उस किशोर व बालक का दिल धड़कने लगा और क्रांति के लपटें उस परवाने को अपनी ओर खींच

राम जब 8वीं कक्षा के छात्र थे तभी संयोग से आर्य समाज के विद्वान धर्मोपदेशक स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने राम को स्वामी की सेवा में नियुक्त कर दिया और यहीं से राम की जिंदगी की दिशा और दशा बदलनी शुरू हो गई। स्वामी जी राम को अनेक प्रकार के धार्मिक तथा राजनैतिक उपदेश दिया करते थे। इसके साथ ही वे राम को इससे जुड़ी पुस्तकें भी पढ़ने को देते थे। राम के कोमल मन पर स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा और अब उनका संवेदनशील हृदय भारत माता की दास्ता और देश के हालात से आहत होने लगा। उनके हृदय से देश प्रेम के गीत फूटने लगे जो हर क्रांतिकारियों की जुबान बनने लगे।

1961 में जब लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और महान क्रांतिकारी भाई परमानंद की फांसी की सजा का समाचार छपा तो उसे पढ़कर बिस्मिल के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव के पास गए और उन्होंने प्रतिज्ञा के बारे में स्वामी जी को बताया और उनसे इसे पूरी करने का आशीर्वाद लिया। और फिर आखिरकार राम क्रांति की धधकती ज्वाला में कूद पड़े। अब राम प्रसाद बिस्मिल हो चुके थे और क्रांति की आग में तपकर सोना बनने लगे थे। अनेकों वीरों की कुर्बानी से उनका अंतर मन व्यथित हो रहा था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की ठान ली। सर पर कफन बांधकर वो क्रांति की ऐसी राह पर चल पड़े जहां अपने परिवार और अपनी जिंदगी से ज्यादा मायने रखता था अपना प्यारा वतन, वतन में रहने वाले इंसान और बस आजादी।

क्रांति की राह इतनी भी आसान नहीं थी। इस पर चलते हुए वो भारत माँ का लाल अनेकों कठिनाइयों से जूझता रहा। अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि बीहड़ों और जंगलों में अपने साथियों के साथ दिन गुजारने पड़े। ऊसर जमीन पर सोना पड़ा, घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन दिल से देश प्रेम की दीवानगी ना गई। इधर उधर वेश बदल कर भटकते हुए बिस्मिल कुछ दिनों तक अपनी सगी बहन के घर में भी रहे, लेकिन मजे की बात ये रही कि खुद उनकी बहन को भी उनके होने की भनक तक ना लगी। इसी दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में भी शरण ली और कई महीने तक वहां के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गाय भैंसे चराई और यहीं पर इसी हालात में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी उपन्यास लिखा। इसी तरह खाना बदोशों की तरह बिस्मिल कभी इस स्थान पर रहे तो कभी उस स्थान पर, और इधर से उधर भारत माँ के उस बसंती आंचल में छिपते रहे जिसके रंग में रंग जाने की हर वीर सपूत की लालसा।

चौरी चौरा कांड के बाद अचानक जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजादी को लेकर देश में निराशा फैल चुकी थी, जिससे आजादी के अहिंसक प्रयत्नों से बिस्मिल का मोह भंग हो चुका था। अब बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर अंग्रेजों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को पैसे कहां से आए। 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब काकोरी नाम की जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। जांच होने पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को सामूहिक रूप से

जेल में बिस्मिल की माँ उनसे मिलने आई। कैसा रहा होगा उस वक्त उस माँ का हृदय जिसका लाल फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा था। जब वो गोरखपुर जेल पहुंची तो माँ को देखकर राम की आंखें भर आईं। उनकी माँ ने अपनी लाल की आंखों में आंसू देखकर भी धैर्य नहीं खोया। वो एक वीर माता थी। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वो मौत से इतना डरता है। अगर तुझे ऐसे रोकर ही फांसी चढ़ना था तो तूने क्रांति की राह चुनी ही क्यों? इसके बाद बिस्मिल ने अपनी आंखें पोंछ डाली और कहा, ये मौत के डर के आंसू नहीं है माँ, ये माँ का स्नेह है। तुम विश्वास करो, मैं मौत से नहीं डरता। 19 दिसंबर 1927 की वो काली सुबह जब सूरज भी खून के आंसू रो रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर ले जाते समय कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अंतिम इच्छा में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, और बस भारत माँ का ये लाल फांसी के फंदे पर झूल गया। 19 दिसंबर को आज भी गोरखपुर जेल में उस बलिदान स्थली पर मेला लगता है और खिचड़ी गुड़ का प्रसाद वितरित किया जाता है।

तो ये थी आज की कहानी, वो आजादी का परवाना। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज के जरिए बता सकते हैं। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशक रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाक्के किसान के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, देशभक्ति गीत सुने, वीर शहीदों को नमन किया। भले ही दिन बदल चुका है, लेकिन आज़ादी की इस खुशी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ, फिल्म का नाम आनंद मठ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम था आनंद मठ, और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये फिल्म आई थी 1952 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हेमंत गुप्ता ने। ये फिल्म बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ पर आधारित थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, गीता बाली और अजीत

पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की

जो सुल्तानपुरी साहब। चाइना टाउन फिल्म 1962 में आई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इस फिल्म को लिखा था रंजन बोस ने और संगीत से सजाया था रवि ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर और शकीला ने। इस फिल्म में शमी कपूर का डबल रोल था और हेलन इस फिल्म में सहायक भूमिका में थी। और इस फिल्म की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इस फिल्म का संगीत रहा था। अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था कन्हैया, संगीत शंकर जयकिशन का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था संत सिंह पाछी ने और डायरेक्ट किया था ओम प्रकाश ने। इस फिल्म में एक्टिंग की थी राज कपूर, नूतन और ललिता पवार ने। इस फिल्म को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म का संगीत खासा लोकप्रिय रहा था और दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया था। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म असली नकली से।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:39 और 39 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

फिल्म का नाम मुगले आजम और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी। फिल्म मुगले आजम 1960 में आई थी और ये एक ऐतिहासिक क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था कि आसिफ साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे ने। ये फिल्म मुगल राजकुमार सलीम और दरबारी नर्तकी अनारकली के बीच प्रेम संबंध को दिखाती है और सलीम के पिता सम्राट अकबर इस रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ। अगला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ पे।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 88वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा है। पत्र सूचना कार्यालय PEIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाके किसान के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है। एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:03 शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज के साथ।
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

कि चुप रहने से अक्सर बातें अधूरी रह जाती हैं और अधूरी बातें पूरी ज़िंदगी हमारा पीछा करती हैं और पूरी ज़िंदगी हमें उन अधूरी बातों का मलाल रहता है। अगर बात दिल की हो, बात अगर प्यार की हो, तो उसे शेयर कर देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए, क्योंकि बातें कहने से और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और ख़ूबसूरत भी। अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप ही के लिए।

0: मुझे मालूम है आप भी मेरे साथ डांस कर रहे होंगे, आज कोई बहाना नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि आज छुट्टी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, और जब शुरुआत इतनी खूबसूरत है तो अंजाम दूर तक जाएगा। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ है। वैसे एक बात तो सच है, जब ये प्रेम का रोग है ना, ये बहुत अजीब सा होता है, इसमें ना मरीज को दवा की फिक्र होती है ना दुआ की, बस एक दीदार की हसरत होती है कि कैसे भी करके उसका दीदार उसके महबूब से हो जाए। अगर आप भी इस वक्त किसी के ख्यालों में हैं तो ये अगला गीत आप ही के लिए।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा
2: सर।

वैसे गम का भी कोई फसाना होता है? होता है जनाब, जब शिकायत का अंदाज थोड़ा मीठा हो तो रूठने और मनाने का एक अलग मजा होता है।

भाई मौसम मस्ताना तो है पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप हैं मंजू के साथ और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। मैंने तो अपनी चेयर साइड कर ली है और आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि दो डांस नंबर आ रहे हैं अभी के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था ना, तब मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:47 और 27 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सच कहूँ तो इसे कहते हैं प्यार में कन्फ्यूज़न, क्योंकि यही कन्फ्यूज़न वाला जो दौर होता है वही इश्क का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमें रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए। प्यार ना समझी में ही होता है, क्योंकि समझदारी जब हमारे अंदर आती है तो वो प्यार की मासूमियत को हमसे छीन के ले जाती है।

रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। रात सरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगे फिरोज। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है।

0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे 1947 में भारी चुनौतियों का सामना करने वाले एक नए स्वतंत्र देश से भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। PIB ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों और परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों और जनजातीय समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। उन्होंने ये बात ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा और ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस नामक 2 प्रकाशनों को जारी करते हुए कही। नीदरलैंड के एम्स्टेलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये गीत सिर्फ एक गीत, एक लाइन नहीं, बल्कि उन वीर जवानों को सलाम है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी हिफाजत के लिए सरहद पर डटे रहते हैं। कभी कभी वतन से मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होती, एक ऐसा जज्बा बन जाती है जिसके सामने अपनी खुशियां, अपने अरमान सब छोटे लगने लगते हैं। माँ की आंखों में अपने बेटे की राह देखते आंसू हों, सरहद पर खड़े जवान के दिल में अपने घर की याद हो, और फिर भी होठों पर सिर्फ एक ही दुआ हो, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये उन तमाम वीरों को हमारा सलाम है जिन्होंने देश की मिट्टी की हिफाजत के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया ताकि हमारा कल महफूज रहे। उनके लिए वतन सिर्फ सरहदों का नाम नहीं, वतन है माँ की ममता, पिता का गर्व, बच्चों की मुस्कान और तिरंगे की आन। तो आइए आज हम भी, जिस तरीके से सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के उस उत्सव में डूबा हुआ है, आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, हम और आप भी मिलकर इसी जश्न को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही के इस दिलकश महफिल के साथ मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:13 और 24 सेकंड। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, कर्मा फिल्म के इस नगमे के साथ आज के इस बहुत ही खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं जिसका नाम है हमराही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म कर्मा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह बेहद खूबसूरत गीत, ऐसे गीत सुनकर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके सहन में देशभक्ति का वो जज्बा हमेशा पैदा होता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। दोस्तों, कभी कभी किसी एक झलक पूरी शाम को खूबसूरत बना देती है, कभी किसी के चेहरे का दीदार दिल में ऐसी हलचल मचा देता है कि लफ्ज भी कम पड़ जाते हैं। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है ना, सामने कोई हो मगर नजरें झुक जाएं, कुछ कहने को दिल बेताब हो मगर लब खामोश रहें, और बस एक दीदार की तमन्ना दिल में रह जाए। आज के इस हसीन सफर पर आइए हम और आप मिलकर चलते हैं, हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की, इन आवाजों में वो नटखट सी फरमाइश जिसमें प्यार भी है, शरारत भी और इंतजार भी, क्योंकि ये नगमा है ऐसा ही नगमा जो वक्त की नजाकत को जानता है, पहचानता है। जब पर्दे के पीछे छुपे चेहरे को देखने की बेकरारी, मोहब्बत की खामोशी और मोहब्बत को और भी हसीन बना देने वाला ये बेहद खूबसूरत गीत जब आप सुनते हैं तो सीधे दिल पर दस्तक देती हुई ये आवाज बहुत दूर आपको लेकर जाती है मोहब्बत की उस गहराई की तरफ।

फिल्म एक फूल दो मालिका ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी को चाहने का नाम नहीं, मोहब्बत तो वो यकीन है जिसमें दो दिल एक दूसरे से बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान में अपना सुकून मिल जाता है, कभी किसी की आवाज़ सुनते ही दिल कह उठता है हाँ यही वो शख्स है जिसके साथ हर ख्वाब मुकम्मल सा लगता है। प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास शायद यही है कि कोई आपका हो और आपको पूरे दिल से अपना माने। आज के इस बेहद खूबसूरत सफर पर आइए याद करते हैं 1969 की फिल्म इंतकाम का वो सदाबहार नगमा जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी दिलकश आवाज़ों से अमर कर दिया। एक ऐसा गीत जिसमें है वफा का वादा, अपनापन और दो दिलों का वो इजहार जिसमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, किसी खास शख्स को याद कीजिए और महसूस कीजिए उस रिश्ते की गर्माहट जहां दिल कहता है हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। और रात के इस सफर में आपका हमराही हूं मैं आपके साथ, और आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत और संगीत के सफर पर, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, इजहार

वफा है और आपके दिल की बातें भी। और आज की इस हमराही में आपको हमारे लाए गए नगमे कैसे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम, आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसी लिए तरीका बहुत ही आसान है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें मेल कर सकते हैं वो है fmgoldeirdaily@gmail.com। इट्स fmgoldeirdaily@gmail.com। तो देर न करें और आप अपने पैगाम हम तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, कभी कभी पहली मुलाकात में ही कोई चेहरा दिल में उतर जाता है और फिर दिल में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर यह खूबसूरत अजनबी किसके लिए है, किसका है। मोहब्बत की शुरुआत भी कितनी मासूम होती है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा इंतज़ार और सामने वाले के बारे में जानने की एक प्यारी सी बेकरारी। आज के इस सफ़र में, आज के इस हमराही में 1967 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म मिलन का वो सदाबहार नगमा, जिसे मुकेश और लता मंगेशकर जी की दिलकश आवाज़ों ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया। एक ऐसा गीत जिसमें है सवाल भी, जिज्ञासा भी और उस अनकही मोहब्बत की हल्की सी आहट भी जो शायद दिल में दस्तक दे चुकी है। तो ज़रा सोचिए, अगर आज आपके सामने कोई ऐसा चेहरा आ जाए जिसे देखकर दिल ठहर जाए, तो क्या आप भी मुस्कुराकर पूछेंगे वही जो इस नगमे के ज़रिए पूछा गया है। और कुछ सवाल कुछ एक दास्तान इश्क की शुरुआत बन जाते हैं। किसी को चाहने से पहले उसका नाम जानना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी दिल नाम से पहले अपना रिश्ता चुन लेता है जिसका कोई नाम नहीं होता। इसी मासूम मोहब्बत और खूबसूरत एहसास के साथ हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी में।

बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मिलन से लता जी और मुकेश की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत हमेशा गंभीर नहीं होती, कभी कभी इसमें थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मुस्कान और बहुत सारा खूबसूरत एहसास भी होता है। किसी को पहली बार देखकर दिल का यूं धड़कना, उसकी एक मुस्कान पर अपना दिन खुशनुमा बना लेना और रात को अंधेरे में सितारों को तकते हुए रहना और उसको महसूस करना और फिर बिना कुछ कहे बस उसे देखते रहना ख्यालों में, यही तो है वो मासूम सा इश्क जो दिल को बहुत कुछ कह जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसा शख्स है जिसकी मुस्कान आपका दिल चुरा ले, जिसकी जुल्फे देखकर नजरें ठहर जाती हैं उन पर और जिसके सामने आते ही दिल कुछ कहने को बेताब हो जाता है, तो यकीन मानिए ये नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कितनी अजीब सी बात है ना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं लेकिन उन पलों की याद बरसों तक हमारे साथ रह जाती हैं। एक मुस्कान, एक नज़र, एक मुलाकात और दिल में बस जाती है एक छोटी सी दास्तान। शायद इसी को कहते हैं बिना कहे किसी को अपना बना लेना, अपना मान लेना या अपना हो जाना। तो उस खास शख्स को याद कीजिए और इस सदाबहार नगमे के साथ अपने इस सफ़र को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। फिल्म तीसरी मंजिल का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही में।

फिल्म तीसरी कसम का तीसरी मंजिल का ये बेहद खूबसूरत नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही के इस दिलकश महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, रिश्तों में रूठना भी कितना प्यारा होता है ना। जब सामने वाला नाराज हो तो दिल बेचैन रहता है, और ये तभी होता है जब कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है, लेकिन उसी नाराजगी में छुपी होती है ढेर सारी मोहब्बत। कभी किसी अपने की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, कभी उस रिश्ते को समझा जाती है जो लफ्जों से बयान नहीं किए जाते, कभी उसकी एक छोटी सी नाराजगी हमें एहसास दिलाती है कि वो हमारे लिए कितना खास है। प्यार में हर बात का जवाब लफ्जों से नहीं दिया जाता, कभी एक मुस्कान ही काफी होती है, कभी एक नजर भी, और कभी बस इतना कहना, अच्छा नाराज हो तो हो लेकिन मुझसे दूर मत जाना। और अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी प्यार में मनाना भी जरूरी नहीं होता, बस पास रहना जरूरी होता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में नाराजगी कुछ देर की होती है लेकिन वफा हमेशा की। तो अगर आज कोई आपका अपना आपसे रूठा है तो शायद उसे मनाने से पहले बस इतना कह दीजिए, तुम नाराज भले ही रहो मगर मेरे दिल से कभी दूर मत जाना। ऐसे ही जज्बे के साथ अगले नगमे की तरफ चलते हैं, और यह नगमा है 1961 की फिल्म आस का पंछी से, जिसे बेहद खूबसूरत आवाजों से सजाया है मुकेश साहब और लता जी ने।

0: मुकेश साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 4:10 पर हम रहेंगे लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आदाब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वो चेन्नई में नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट, ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन और PhD प्रोग्राम के लिए ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। एक्सपर्ट एक सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि प्रोविजनल आंसर की उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, "Over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights."
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
3: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examination. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलोस आदाब और आज के इस सफर का आगाज करेंगे एक ऐसे बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ जो हम सबके

कहते हैं वतन ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वतन वो मिट्टी है जिसमें हमारी यादें हैं, वो हवा है जिसमें हमारी सांसें हैं, और वो तिरंगा है जिसमें करोड़ों दिलों की उम्मीदें बसती हैं। हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि कोई जवान सरहद पर जाग रहा होता है। हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं क्योंकि किसी ने अपने सपनों से पहले वतन को चुना है। उसके लिए फर्ज सबसे पहले है और देश सबसे ऊपर। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें, एक दूसरे के साथ साथ देकर करें, अपने देश की इज्जत करें और हर दिन भारत को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन एक चमकता हुआ सितारा की तरह पूरी दुनिया में रोशन होगा। सरहद पर खड़ा जवान हो, खेत में मेहनत करता किसान हो, कक्षा में बच्चों को पढ़ाता शिक्षक हो, या अपने काम से देश को आगे बढ़ाता हर नागरिक, हर इंसान, इस वतन की ताकत हम हैं, इस देश की ताकत हम हैं, इस मुल्क की ताकत हम सभी हैं। आइए इसी जज्बे के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM कूल चैनल 100.1 MHz पर।

जी हाँ, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। हम अच्छा करेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, हम अच्छा करेंगे तो हमारा मुल्क सितारों की तरह आसमान में चमकेगा, पूरी दुनिया में चमकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क, हमारा ये वतन यूं ही हमेशा तरक्की करता रहे। अरुणिमा की इस महफिल को अब आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अपने इस सफर की तरफ। दोस्तों, जिंदगी भी एक बाग की तरह है, कभी यहाँ फूल खिलते हैं, कभी मौसम बदल जाता है और कभी कोई खुशबूदार याद हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों

के इंतजार में रहते हैं। लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती तो उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, एक मुस्कान में, किसी अपने की आवाज में, बारिश की पहली बूंद में, या फिर किसी पुराने गीत के धुन में। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, फिल्म शर्मेली से। इन लफ्जों में सिर्फ फूलों की बात नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जैसे हम सब की जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल वैसे ही ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करना ज़रूरी है। आज अगर कोई परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा, आज अगर आंखों में आंसू है तो कल चेहरे पर मुस्कान भी होगी। कभी किसी पुराने गीत को सुनकर अचानक कोई पुरानी याद लौट आती है, कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई अधूरी सी दास्तान फिर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो फिर समझें कि हमारा वक्त बदल रहा है। शायद यही संगीत की खासियत भी है, ये बीते हुए कल को आज के पल में फिर से जिंदा कर देती है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई फूल जरूर खिलता है, बस उसे देखने के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद और आंखों में थोड़ा सा ख्वाब होना बेहद जरूरी है।

खिलते हैं गुलियाँ मिलके बिछड़ने को। बेहद खूबसूरत यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में शर्मीली फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत एहसास क्या है? शायद वो सुकून जो किसी ख़ास इंसान के पास होने से मिलता है। कभी कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में यूं आता है कि उसकी एक मुस्कान दिन बना देती है, उसकी आवाज़ दिल को सुकून देती है और उसकी मौजूदगी हर फिक्र को दूर कर देती है। फिल्म मेरे जीवन साथी का एक बेहद खूबसूरत नगमा किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, ये सदाबहार नगमा भी ऐसे ही प्यार की दास्तान है जहां दिल अपने हम सफ़र से बस इतना कहना चाहता है कि तुम हो तो सब कुछ है। ये सिर्फ एक पुकार नहीं, एक दिल की बात नहीं, बल्कि उस रिश्ते का एहसास है जहां प्यार में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनापन और वफा है। तो आइए इस गीत को उस शख्स के नाम कीजिए जिसके बिना आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रातें अधूरी हो और जिसके साथ हर पल खूबसूरत लगने लगे। इसी नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं और अरुणिमा के सफर को आगे बढ़ाते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:36 और 10 सेकंड और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। परवीन शाकिर कहती हैं, पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद, अच्छे घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। कभी कभी जिंदगी में कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी छुपी रहती है। शायद यही है पूरा दुख और आधा चांद। एक ऐसा एहसास जहां आसमान में चांद तो पूरा नहीं मगर रात की तन्हाई पूरी होती है।

हम अपनी परेशानियां अक्सर दुनिया से छुपा लेते हैं, लेकिन रात की खामोशी में वही दर्द फिर लौट आता है। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी दास्तान, कोई अपना जो अब साथ नहीं, दिल को फिर से उदास कर जाता है। मगर याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर दर्द हमेशा नहीं रहता, और कभी कभी अधूरा चांद भी हमें उम्मीद देता है कि अगली रात शायद कुछ और मुकम्मल होगी। इसी एहसास, इसी उम्मीद के साथ हम भी अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और अरुणिमा के भी इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज में ये बेहद खूबसूरत कलाम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, जिंदगी एक रास्ता है, कभी आसान कभी मुश्किल, कभी मंजिल पास दिखाई देती है तो कभी रास्ते में इतनी रुकावटें आती हैं कि लगता है शायद अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखें और यकीन भी रखें, जीत उन्हीं की होती है जो चलते चलते बस बढ़ते जाते हैं, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो धीरे ही सही कदम बढ़ाते रहते हैं। हारना बुरा नहीं है, हार के बाद रुक जाना बुरा है। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी कीजिए, गिरे संभले और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि हिम्मत वो ताकत है जो मुश्किल वक्त में भी दिल को उम्मीद देती है। किशोर कुमार साहब, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ों में एक ऐसा ही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ये पैगाम देता है कि मेहनत और हौसले से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। तो अगर आज रास्ता कठिन है, घबराइए मत, वो आसान भी होगा। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, बस चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए, क्योंकि भाग्य रास्ता नहीं बनाता, आपके कदम रास्ते बनाते हैं और भाग्य आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:55 और 2 सेकेंड। महफिल है अरुणिमा की। कहते हैं कभी कभी किसी की आंखों में ऐसा क्या दिख जाता है कि दिल अचानक खामोश हो जाता है, ना कोई बात ना कोई वादा, बस एक नज़र, और दिल को लगता है जैसे सामने वाला बहुत कुछ कह गया हो। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, ये हमेशा लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, कभी एक मुस्कान, कभी एक नज़र और कभी आंखों की खामोशी ही दिल का इजहार बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में आपके लिए है।

किशोर कुमार और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए अरुणिमा से इजाज़त। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा ठीक 5:10 पर लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का भी आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रूपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं DTC और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये सुविधा पहले कल खत्म होनी थी और आज से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था। अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने का मौका देने के लिए सरकार ने कागजी टिकट की अवधि बढ़ाई है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। KL राहुल 77 रन पर रिटायर हुए थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, इस भोर सुहानी के सफ़र का आगाज़ करते हैं एक ऐसे देशभक्ति वाले गीत के साथ जिसके लिए हम सब अपने देश के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और वतन की राह में वतन का हर नौजवान शहीद होने को तैयार है। और शायद यही वो जज्बा था जिसने हमें आज़ादी दिलाई 15 अगस्त 1947 को, हमारे उन अमर सपूतों को, उन बलिदानियों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो जिसकी वजह से जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद कराया, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम भी यही प्रण लेते हैं कि

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में नगमा था फिल्म शहीद से, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और यही वो नगमा है जो हम सब में वो जज्बा पैदा करता है कि वतन की राह में हमें हमेशा तैयार रहना है, कुर्बान होने के लिए, अपने वतन के लिए सब कुछ करने के लिए, अपने वतन के हिफाजत के लिए, अपने वतन को रोशन करने के लिए, दुनिया में उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, यानी भोर सुहानी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी में हम एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए जज्बे के साथ आज इस सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आगाज़ किया है देशभक्ति के उस गीत के साथ जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें सब कुछ अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क के लिए करना है। लेकिन ये धरती, ये आसमां, ये ज़मीन, सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ, उस खुदा का दिया हुआ है जिसने इस दुनिया को बनाया और जिस पर हम सबको यकीन भी है। और इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज़ उसी ईश्वर, उसी खुदा के नाम से करते हैं जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस सरजमीन पर भेजा और इंसान को सबसे बेहतर बनाया। तो आइए हम भी उसी की याद कर, उनको ही याद करते हुए, उस ईश्वर को, उस खुदा को याद करते हुए आज के इस सफ़र का और इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, यानी भोर सुहानी के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा, जिसका दिया हुआ ये सब कुछ है, ये ज़मीन, ये आसमान, इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल।

0: करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:27 और 48 सेकेंड। महफिल सजी है भोर सुहानी की, जिसमें हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई, जिंदगी में किस तरीके से अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से तमाम परेशानियों से बचने की कोशिश करें और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में हर दिन हमें बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलता है। कुछ बातें दिल को खुश करती हैं तो कुछ बातें मन को परेशान भी कर देती हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे हाथ में एक चीज़ हमेशा रहती है और वो क्या है, वो है हम किस बात को अपने दिल में जगह दें और किसको नहीं दें। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, सिर्फ एक सीख नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी जीने का एक खूबसूरत रास्ता है। दूसरों की बुराई सुनकर अपना सुकून क्यों खोना, किसी की कमी देखकर अपने दिल में नफरत क्यों भरना। बेहतर है कि हम अच्छाई पर ध्यान दें, अच्छी बातें सुनें और अपने आसपास मोहब्बत और इंसानियत फैलाएं। याद रखिए, दुनिया को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अपनी सोच को बदलना ज़रूर हमारे हाथ में होता है। हर सुबह खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज मैं नकारात्मकता नहीं उम्मीद चुनूंगा, नफरत नहीं प्यार बांटूंगा, शिकायत नहीं शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि साफ नजर, साफ सोच और अच्छा दिल, यही असल दौलत है। जिंदगी को बेहतर बनाइए, शुरुआत अपनी सोच से कीजिए इस नगमे की तरह।
1: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,